एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 16 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5 बजकर

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: Jules.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर की डिजाइन और निर्माण तंत्र को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
2: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमियों की भी क्षमता को मजबूत करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते, सुरक्षा तथा रक्षा साझेदारी और गतिशीलता ढांचे द्वारा समर्थित भागीदारी की मजबूत गति को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, रक्षा सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में परस्पर आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24,000 से 25,000 रुपए प्रति सीट था, अब ये घटकर 12,000 से 15,000 रुपए हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत और विदेशों के प्रमुख कपड़ा निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पवेलियन का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद

0: रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की घोषणा की है। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज उड़ीसा के पुरी में शुरू हो रही है। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन श्री गुंडेचा मंदिर में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है। फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। वहीं अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 25वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिला दी। 90वें मिनट में लुटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन ये संसार परिवर्तनशील है। यहाँ हर वस्तु, हर परिस्थिति और हर संबंध समय के साथ बदलता रहता है। इसीलिए जब हम केवल बाहरी चीजों में सुख खोजते हैं तो अक्सर निराश होते हैं। परंतु जब मन शुभ विचारों, अच्छे और सच्चे कर्मों तथा ईश्वर के समर्पण में स्थिर होने लगता है, तब जीवन का बोझ हल्का महसूस होने लगता है। धीरे धीरे इच्छाओं का शोर शांत होता है, मोह के बंधन ढीले पड़ते हैं और भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। यही आंतरिक जागृति मनुष्यों को बंधनों से मुक्त होने की दिशा दिखाती है और जीवन को उसके वास्तविक उद्देश्य से जोड़ देती है। इस भक्ति में चिंतन के बाद आइए शुरुआत करें भक्ति संगीत की। कार्यक्रम वंदना में इस भजन के साथ

जिस मनुष्य ने नश्वर और शाश्वत का अंतर समझ लिया, उसके लिए जीवन भी एक यात्रा बन जाता है और इस संसार से विदाई भी एक नई यात्रा का आरंभ।

जीवन रूपी इस सागर में लहरें कभी शांत होती हैं तो कभी उफान पर। जब मन हर परिस्थिति में प्रार्थना और विश्वास का हाथ थामे रखता है, तब वह डगमग नहीं होता, बल्कि और अधिक दृढ़ होकर आगे बढ़ता है।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना की ये थी अंतिम प्रस्तुति। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। अब सुनिए श्री रामचरित मानस से एक और भक्तिमय प्रस्तुति, मानस गायन भाग 149।

रानी कैकई ने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया है, ये सुनकर अयोध्या के महलों में विषाद का वातावरण छा गया है। किंतु श्री राम प्रसन्न हैं, उनका चित्त उल्लसित है। सब भाइयों को छोड़कर पिता ने उनका ही राजतिलक करने का निश्चय किया था, इस कारण जो विषाद उनके मन में उत्पन्न हुआ था वो अब मिट गया है। वो प्रसन्न मन माता कौशल्या के भवन में पहुंचे। श्री राम ने हाथ जोड़कर माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने गले लगाकर उन पर वस्त्राभूषण न्योछावर किए। वो उस शुभ लग्न की प्रतीक्षा में हैं जब राम का राज तिलक होगा। किंतु पुत्र के मुंह से ये सुनकर कि पिता ने उन्हें वन का राज्य दिया है और वो वन यात्रा के लिए माता का मंगलमय आशीर्वाद लेने आए हैं, माता कौशल्या के हृदय में जैसे वाण चुभ गया, जिसकी चुभन से वो तड़प उठी। पुत्र के वचन अत्यंत कोमल और शीतल थे, किंतु उन्हें सुनकर वो वैसे ही सहम कर सूख गईं, जैसे बरसात का पानी पड़ते ही जवासा सूख जाता है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान से भक्तिमय पाठ मानस गान। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 6:50 हुए हैं सुबह के। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सात बजकर 10 मिनट पर रोजाना श्रोता सुना करते हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। 7:40 पर सुनिएगा हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम गाने सुहाने। 9 बजे कार्यक्रम गीतांजलि लेकर हाजिर होंगे। आज का ये कार्यक्रम सजीव फोन इन होगा। श्रोता इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। 01892224391 ये स्टूडियोज का नंबर रहेगा। कार्यक्रम आप सुनेंगे 9 बजे से 10 बजे तक। और इसी बीच 9:20 से प्रादेशिक समाचार सुने जा सकते हैं, जिन्हें आकाशवाणी शिमला से रिले किया जाएगा। गीतों का कारवा कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 10 बजे। 10:30 पर हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम सुनिएगा पहाड़ों के सुर। 11 बजे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 11:05 पर आज आप सुनेंगे पंजाबी गीतों का कार्यक्रम महक पंजाब दी। 11:30 का समय रहता है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग के प्रसारण का। 12 बजे सैनिकों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 12:30 पर आज बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम मिंजरा। दोपहर 1 बजे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। 1:10 से विविध भारती के कार्यक्रमों का लुत्फ आप उठाएंगे। 3 बजे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं। शाम 5 बजे तक विविध भारती के कार्यक्रमों का प्रसारण हमारे केंद्र से रिले किया जाएगा आकाशवाणी मुंबई से। शाम 5 बजे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुने जा सकते हैं। 5:10 पर आज फिल्मों से कुछ भजन सुनवाए जाएंगे। 5:30 पर युवा साथी कार्यक्रम सुनेंगे युवा मंच। और कार्यक्रम में आज बात होगी रोजगार समाचारों की, और साथ ही जानकारी दी जाएगी विज्ञान जगत से जुड़े किसी विषय पर। 6 बजे आकाशवाणी शिमला से आप सुन सकते हैं प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन। 6:05 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। कार्यक्रम होगा सुरमई सांझ। मौजा गराइंदियां ये कार्यक्रम शाम 6:30 पर प्रसारित किया जाएगा। 7 बजे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। 7:10 पर किसान बागवान भाई बहनों के लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम किसान वाणी। शाम 7:42 पर एक बार फिर आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो लिए चलेंगे आपको प्रादेशिक समाचारों के लिए। 8 बजे मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस प्रसारित किया जाएगा। 8:15 पर भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर आधारित रेडियो रिपोर्ट आप सुनेंगे, जिसे आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे। 8:30 पर देशगान सुनवाए जाएंगे। 8:45 पर समाचार संध्या। 9 बजे News@9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 9:15 पर एक ही कलाकार में अभिनेता अभिनेत्री क्रम में आज आप सुनेंगे संजीव कुमार द्वारा अभिनीत फिल्मों से गीत। रात 9:30 पर

लुत्फ उठाइएगा फिल्मी और गैर फिल्मी गजलों के कार्यक्रम रंगे गजल का, और 10 बजे आज हिमाचली गीत सुनवाए जाएंगे। 10:30 पर लुत्फ उठाइएगा पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। और सभा के अंत में समाचार आप सुन सकते हैं 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। ये समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। श्रोताओं, ये थी रूपरेखा हमारी केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह की 6:55 होने को है। कुछ ही देर में पहले संस्कृत में समाचार, 7 बजे हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे।

0: विश्वविख्याता पुरी रथयात्रा अद्य ओडिशा राज्यस्य पुरी नगरे भगवतः जगन्नाथस्य तस्य ज्येष्ठ भ्रातुः बलभद्रस्य अनुजायाश्च देव्याः सुभद्रायाः सह आरभ्यते। अस्याम वार्षिक रथयात्रायां जगन्नाथः भगवान् स्वभ्रात्रा भगिन्या च सह रथेषु समारोह्य भक्तेभ्यः दर्शनं दास्यति। फीफा विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धायाः द्वितीय उपांत्य चक्रे अर्जेंटीना दलम अमेरिका देशस्य अटलांटा क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम 2-1 इत्यंकांतरालेन पराजित्य निर्णायक चक्रे प्रवेशम अकरोत्। जुलाई मासस्य 29 दिनांके निर्णायक चक्रे अर्जेंटीना दलम स्पेन दलम सम्मुखी करिष्यति। भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये एक दिवसीय श्रृंखलायाः द्वितीया स्पर्धा अद्य कार्डिफ नगरस्य सोफिया गार्डन्स क्रीडांगणे भविष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर की डिजाइन और विनिर्माण के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के अंतर्गत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है।
2: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की क्षमता मजबूत करेगा। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा, नवाचार और प्रौद्योगिकी, संपर्क, रक्षा, सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग और प्रगाढ़ करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रसेल्स में कल आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24,000 से 25,000 रुपए प्रति सीट था, लेकिन अब ये घटकर 12,000 से 15,000 रुपए हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। श्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारत टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री यादव भारत और विदेशों के प्रमुख वस्त्र निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से बातचीत करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पेविलियन का भी अवलोकन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक से भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को मजबूत गति मिलेगी। उन्होंने ब्रसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा की जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद की एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,770 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं

का शुभारंभ करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर हमले शुरू कर दिए हैं। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज ओडिशा के पुरी में शुरू हो रही है। यात्रा का समापन श्री गुंडिचा मंदिर में होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। रविवार को फाइनल में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुबह सुहानी।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम सुबह सुहानी में। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। भागती दौड़ती इस जिंदगी में अगर दिन की शुरुआत कुछ अच्छे विचारों, कुछ दिलचस्प जानकारियों और खूबसूरत से गीतों के साथ हो जाए तो पूरा दिन थोड़ा और आसान, थोड़ा और खुशनुमा लगने लगता है। बस यही कोशिश रहती है हमारी भी, और इसी कोशिश पर थोड़ा खरा उतरने के लिए हम हाजिर हो गए हैं आज का कार्यक्रम सुबह सुहानी लेकर। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार के साथ। ये सुविचार है अब्राहम लिंकन का, मोस्ट पीपल आर अबाउट एज हैप्पी एज दे मेक अप देयर माइंड्स टू बी, यानी ज्यादातर लोग उतने ही खुश रहते हैं जितना वो अपने दिमाग में तय कर लेते हैं। जी हाँ श्रोताओं, खुशी हमेशा परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारी सोच और हमारे नज़रिए पर भी निर्भर करती है। बाहरी दुनिया में चाहे जो भी उतार चढ़ाव चल रहे हों, अगर हम अपने मन में खुश रहने का पक्का फैसला कर लें तो कोई भी परिस्थिति हमें लंबे समय तक दुखी नहीं रख सकती। इसलिए परिस्थितियों से पहले अपने मन को सकारात्मक बनाइए, पॉजिटिव बनाइए, क्योंकि खुश रहने का निर्णय एक मानसिक चुनाव है जो कि पूरी तरह से हमारे हाथ में है। जी बिल्कुल, खुश रहना चाहिए सभी को, और आपको भी खुश रखने की हम कोशिश करते हैं इस गीत के साथ।

गीत के बाद एक बार फिर स्वागत सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सुबह सुहानी में। जी श्रोताओं, गीत संगीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इससे पहले आज बात करते हैं कुछ ऐसे किस्सों की जिन्होंने 16 जुलाई की इस तारीख को खास बना दिया। बात आज के इतिहास की। सबसे पहले महत्वपूर्ण घटनाएं। साल 1661 में स्वीडन के स्टॉकहोम बैंक ने यूरोप में पहली बार आधिकारिक कागजी बैंक नोट जारी किए। ये आधुनिक बैंकिंग इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये विधेयक जो है वो 16 जुलाई यानी आज ही के दिन साल 1856 को गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था, और 26 जुलाई साल 1856 को पूरे भारत में इस अधिनियम को लागू किया गया। इस ऐतिहासिक सामाजिक सुधार कानून के लिए महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयास किए थे। बात करें साल 1945 की, तो इस साल में 16 जुलाई के दिन अमेरिका के न्यू मैक्सिको में ट्रिनिटी टेस्ट के नाम से दुनिया का पहला सफल परमाणु परीक्षण किया गया था, और इसके साथ ही विश्व में परमाणु युग की शुरुआत हुई थी। 16 जुलाई साल 1969 को नासा ने ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन को फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से विशाल सैटर्न बी रॉकेट के जरिए सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य पहली बार इंसानों को चंद्रमा की सतह पर उतारना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना था। अंतरिक्षयान में 3 अंतरिक्ष यात्री, मिशन कमांडर नील आर्मस्ट्रांग, लूनर मॉड्यूल पायलट बज एल्ड्रिन और कमांडर मॉड्यूल पायलट माइकल कॉन्सेल सवार थे। धूमकेतु शूमेकर लेवी 9 के टुकड़े आज के दिन साल 1992 को बृहस्पति ग्रह के बेहद करीब से गुजरने के बाद कई टुकड़ों में टूट गए थे। बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ने इसे मोतियों की माला जैसी संरचना में बदल दिया था। इसके बाद ये सभी टुकड़े एक लंबी यात्रा के बाद 16 से 22 जुलाई तक साल 1994 के बीच बृहस्पति के वायुमंडल से टकरा गए। इसे इतिहास की पहली ऐसी घटना थी ये जिसने वैज्ञानिकों को सौर मंडल के 2 खगोलीय पिंडों की टक्कर को पहली बार भविष्यवाणी करते साक्षात देखा था। 16 जुलाई के दिन जन्मी खास हस्तियों की बात करें तो भारत की प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसिफ अली, आज ही के दिन इनका जन्म हुआ साल 1909 में। उन्हें साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालीटा टैंक मैदान में तिरंगा लहराने के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है। उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया था। जगदीश चंद्र माथुर ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार और लेखक थे। आज ही के दिन इनका जन्म हुआ साल 1917 में। वे अपने नाटकों और रेडियो नाटकों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। माथुर ने ग्रामीण जीवन और समाज के विविध पक्षों में अपनी लेखनी से उन पक्षों को उजागर किया। उनका नाटक कोणार्क काफी प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने आकाशवाणी में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और भारतीय रंगमंच के विकास में योगदान दिया।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला और प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी आप हमें सुन रहे हैं। आज के इतिहास की बात हो रही है और आज के दिन जन्मी खास हस्तियों के बारे में जानकारी साझा हम कर रहे हैं। साल 1923 में आज ही के दिन जन्म हुआ भूतपूर्व भारतीय थल सेना प्रमुख KV कृष्ण राव का। ओडिशा की प्रसिद्ध नाटककार, पटकथा लेखक और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता विजय मिश्र साल 1936 में 16 जुलाई के दिन जन्मे। श्रोताओं, धनराज पिल्ले भारत के फील्ड हॉकी खिलाड़ी, इतिहास के सबसे तेज और कुशल खिलाड़ियों में इन्हें माना जाता है। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ साल 1968 में और पुणे महाराष्ट्र में ये जन्मे। उन्होंने साल 1989 में भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए खेलना शुरू किया और करीब 15 साल तक हॉकी के लिए खेले और हॉकी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। धनराज अपनी तेज ड्रिबलिंग, आक्रामक खेल शैली और मैदान पर निर्भीक नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने 4 ओलंपिक, 4 हॉकी वर्ल्ड कप और कई एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनकी कप्तानी में भारत ने साल 1998 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न और पद्मश्री जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आज भी वो युवाओं को हॉकी के लिए प्रेरित करते हैं और खेल को लोकप्रिय बनाने में सक्रिय भूमिका अभी भी निभा रहे हैं। बॉलीवुड की शीर्ष और बेहद लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक कटरीना कैफ, आज ही के दिन इनका जन्म हुआ साल 1983 में ये जन्मी हैं। 16 जुलाई के दिन इन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में

बॉलीवुड को दी। 16 जुलाई को जिन खास हस्तियों ने इस दुनिया को अलविदा कहा, उनमें भारत के सबसे प्रतिष्ठित फोटो पत्रकारों में से एक दानिश सिद्दीकी साल 1921 में अफगानिस्तान के स्पिन बोल्ड क्षेत्र में रिपोर्टिंग के दौरान इनका निधन हुआ। वे 2018 के पुलित्जर पुरस्कार विजेता थे और उनकी तस्वीरों में रोहिंग्या संकट, कोविड-19 महामारी और कई वैश्विक घटनाओं को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से रखा। 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ अभिनेत्री सुरेखा सिकरी, आज ही के दिन इनका निधन हुआ। 75 वर्ष की आयु में इन्होंने इस नश्वर संसार को अलविदा कहा। उन्होंने बालिका वधू, तमस, मम्मू और बधाई हो जैसी यादगार कृतियों में भारतीय सिनेमा और टेलीविजन में अपनी अमिट पहचान बनाई। ये थी श्रोताओं आज के इतिहास की जानकारी। उम्मीद है आज की तारीख से जुड़ी ये बातें आपको कुछ नया जरूर सिखाकर गई होंगी। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और वक्त एक बार फिर गीत संगीत का।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
1: श्रोताओ, इस समय आप बने हुए हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। कोई भी खास

0: मनाने का उद्देश्य सिर्फ औपचारिकता नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य होता है, लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना, जागरूकता बढ़ाना और समाज को बेहतर दिशा देना। तो चलिए जानते हैं 16 जुलाई को मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिनों के बारे में। श्रोताओं, जरा सोचिए, आपका फोन आपकी जरूरत से पहले ही समझ जाए, गाड़ी बिना ड्राइवर के मंजिल तक पहुंच जाए और एक सवाल पूछते ही पल भर में जवाब मिल जाए, तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का कमाल है। इसी बदलाव का जश्न मनाने के लिए हर साल आज के दिन को यानी 16 जुलाई को कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन एआई की उपलब्धियों, संभावनाओं और जिम्मेदार उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश देता है। आज एआई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बैंकिंग, परिवहन और संचार जैसे अनेक क्षेत्रों में काम को आसान और तेज बना रहा है। भविष्य की इस तकनीक का लाभ तभी सार्थक होगा जब इसका उपयोग सुरक्षित, नैतिक और मानव हित को ध्यान में रखकर किया जाए। श्रोताओं, डर और सच के बीच अक्सर सिर्फ जानकारी का फासला होता है और सांप शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बहुत से लोग उन्हें देखकर ही घबरा जाते हैं, लेकिन अधिकांश सांप इंसानों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। आज का दिन यानी 16 जुलाई का दिन विश्व सर्प दिवस के उद्देश्य से मनाया जाता है और इसका उद्देश्य सांपों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, अंधविश्वास और गलत धारणाओं को दूर करना तथा उनके संरक्षण का संदेश देना है। सांप पर्यावरण की खाद्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा है और खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों और जीवों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसलिए प्रकृति के इस अनमोल प्रहरी को समझना और सुरक्षित रखना हम सब की जिम्मेदारी है। श्रोताओं, जगन्नाथ रथ यात्रा भारत के सबसे प्राचीन और भव्य धार्मिक उत्सवों में से एक है। वर्ष 2026 यानी इस साल की ये रथ यात्रा आज से प्रारंभ हो रही है और ये उत्सव लगभग 9 दिनों तक चलेगा। 24 जुलाई को भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की बहुधा यात्रा यानी वापसी यात्रा निकाली जाएगी, जबकि 27 जुलाई को नीलाद्री विजय के साथ भगवान पुनः श्री मंदिर में विराजमान होंगे। ओडिशा के पुरी में निकलने वाली ये एक विश्व विख्यात रथ यात्रा आस्था, सेवा, समानता और भारतीय सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत प्रतीक है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भगवान के रथ को खींचकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जी श्रोताओं, जानकारियों पर अब थोड़ी देर के लिए विराम लगाते हैं, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे, उसके बाद एक गीत श्रोताओं को और सुनवाएंगे।
1: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।

श्रोताओं, कार्यक्रम सुबह सुहानी आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं। अब आपको जानकारी देते हैं आज की मुख्य खबरों की। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला परिसर को आज से आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया कि 80वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों और सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है, जो हर साल की तरह इस बार भी लागू रहेगा। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापार, आर्थिक और व्यापार समझौता और सोशल सिक्योरिटी पैक्ट पूरी तरह से लागू हो गया है। फिक्की और नेस्कॉम ने इसे दोनों देशों के व्यापार और तकनीकी निवेश के लिए एक मील का पत्थर बताया है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और व्यापारिक जहाजों पर हमलों के बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने होर्मुज डलडमरू मध्य के रास्ते सुरक्षित और निर्बाध वाणिज्यिक आवाजाही की अपील दोहराई है। त्रिपुरा के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी है और छात्र सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित जिलों के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। बात अब मौसम की। भारत यानी देश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत, उत्तराखंड और देश के अन्य राज्यों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। प्रदेश के मौसम की बात करें तो मॉनसून का असर यहां भी जारी है। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। बात करें धर्मशाला और उसके आसपास के इलाकों के मौसम के बारे में तो यहां के मौसम में अधिकांश घने बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। आने वाले दिनों में गरज के साथ बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। जी हाँ श्रोताओं, बारिश की ये बूंदें सुकून भी लाती हैं और जिम्मेदारी भी। घर से निकले तो छाता और रेनकोट साथ रखें। फिसलन वाली जगहों पर जाने से परहेज करें। तेज बहाव और नदी नालों के पास जाने का परहेज रखें और उनसे उचित दूरी बनाए रखें। और चलते चलते आनंद लें इस गीत का।

0: श्रोतो, ये था आज का कार्यक्रम सुबह सुहानी। कार्यक्रम आपने सुना अपनी होस्ट एंड दोस्त नीलम के साथ। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जतिंदर पाल सिंह।
1: सुबह सुहानी।

0: सुबह सुहानी।
1: जी आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है। और अब वक्त है हिमाचली लोकगीतों के कार्यक्रम शुभ प्याग का। ये लोकगीत आपको सबसे पहले सुनवा रहे हैं, बलदेव सिंह और साथियों ने इसे गाया है। ये माता की भेंट है, लीजिए सुनिए।

0: आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ ब्याग। अगला गीत इस ब्रेक के बाद।
1: ड्राइव होम योर फेवरेट नेक्सा कार विद एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स।
2: एक्सपीरियंस ग्रैंड विटारा वेयर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मीट्स प्रीमियम कंफर्ट एंड सेफ्टी। नाउ एट एन इफेक्टिव प्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 9.52 लाख रुपीज।
1: यस, रुपीज 9.52 लाख। ऑफर वैलिड टिल 31st July।
2: ओन द स्टाइल आइकॉन एट एन EMI ऑफ जस्ट रुपीज 899 पर मंथ।
1: एक्सपीरियंस लग्जरी विद अ पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 360-degree view camera, heads-up display, and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available.
1: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
0: Nexa. श्रोताओं, कार्यक्रम शुभ ब्याह की अंतिम पेशकश ये लोकगीत दसौदा देवी के गाया।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला। सुबह के 8 बजने को है कुछ ही देर में पहले समाचार प्रभात। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आप सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी, बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
4: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
3: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया स्वरूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें 4 बड़े सुधार किए हैं।
5: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देश भर में शुरू हो रही है।

0: चल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगत के नाथ कहे जाने वाले श्री जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित श्री गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। मान्यता है कि ये मंदिर भगवान की मौसी का घर है, जहां तीनों देवता 9 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद बहुधा यात्रा के साथ वे दोबारा मंदिर लौटते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत पाहंडी अनुष्ठान से होती है। इसमें मंत्रोच्चार, भजन कीर्तन और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच तीनों विग्रहों को रथों पर विराजमान कराया जाता है। इसके बाद लाखों श्रद्धालु रस्सियों से रथ खींचते हैं, जिसे अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। भगवान के इस नगर भ्रमण को भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देने का प्रतीक माना जाता है।
1: लीला चलवा रे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
2: ओडिशा के पुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह दिखाई दे रहा है।
3: सुबह की पहली किरणों के साथ पुरी का पवित्र बड़दंड जगमगा उठा है और तीर्थयात्रियों के इस शहर में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन अपनी सालाना यात्रा पर श्री गुंडीचा मंदिर जाएंगे। पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव, 3 शानदार ढंग से सजाया गया रथ, नंदी घोष, ताड़ध्वज और देवविदालन पर छेरा पहरा की रस्म निभाएंगे। फिर भक्त जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच इन रथों को ग्रैंड रोड पर खींचना शुरू करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
2: हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात के अहमदाबाद में भी रथ यात्रा धार्मिक उत्साह के साथ निकाली जा रही है।
4: सज रहा है रथ प्रभु का चंद्रमासा चेहरा।
5: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन अवसर पर सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं वार्षिक रथ यात्रा धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ निकाली जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जमालपुर स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में सुबह मंगला आरती में भाग लेकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से रथों का मार्ग साफ करने की प्रतीकात्मक रस्म पहिन विधि संपन्न कर रथ यात्रा को रवाना किया। रथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: रांची से हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में भी रथ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं।
6: राजधानी रांची के ऐतिहासिक धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। दोपहर में विग्रहों के रथारूढ़ होने के बाद शाम 5:01 पर महाप्रभु का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। इधर हजारीबाग में इस्कॉन द्वारा IIT के विशेषज्ञों की मदद से 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक वाले रथ पर भगवान विराजमान होंगे, जहां कोलकाता की टीम विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केरलम का सबरीमला मंदिर आज से

0: मासिक पूजा के लिए खुलेगा। मंदिर में आज शाम से लेकर 21 जुलाई तक दर्शन किए जा सकेंगे। भीड़ भाड़ से बचने के लिए यह तीर्थयात्रियों को केवल वर्चुअल कतार प्रणाली के माध्यम से ही प्रवेश मिलेगा। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सवेरे एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गईं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत सहित इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बहुत प्रमुख खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली तेल टैंकर को रोक दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमरीका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं दुर्गा प्रसाद।
1: अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल मुकाबले में अब रविवार देर रात अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलवा दी। 90वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलवाई। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप जीता था। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंगम में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा।
0: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर आज अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में, सिक्किम और उत्तराखंड में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है चिप और रिएक्टर के लिए खजाना खोला। नवभारत टाइम्स के अनुसार चिप का हब बनेगा भारत, सेमीकॉन के दूसरे चरण को मिली कैबिनेट की मंजूरी। जनसत्ता की सुर्खी है सेमीकंडक्टर और मोबाइल के लिए 1,90,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर। दैनिक जागरण ने आयात घटाने की चुनौती शीर्षक से संपादकीय में दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक फैसलों में अधिकांश के केंद्र में देश की आर्थिक स्थिति को बल प्रदान करना रहा है। ये फैसले रेखांकित करते हैं कि सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है, आयात घटाना और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहती है। पंजाब केसरी के अनुसार भारत ब्रिटेन में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों और एमएसएमई को मिलेगा लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा समझौते से 99% निर्यात शुल्क मुक्त को हो जाएगा। लोकसत्ता के अनुसार यूके की विस्की, कारें और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब भारत में मिलेंगे सस्ते। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लेख देते हुए लिखा है जगन्नाथ है महाप्रभु, उनका प्रसाद महाप्रसाद। जगन्नाथ पुरी में पूरे वर्ष भक्त मंदिर में आकर महाप्रभु के दर्शन करते हैं और वर्ष में एक बार महाप्रभु बाहर आते हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है जीन से ग्रीन क्रांति, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। हेरिटेज और पर्वतीय रेल मार्गों पर चरणबद्ध रूप से चलेंगी 35 हाइड्रोजन रेलगाड़ियां। अमर उजाला का शीर्षक है अमरीकी हमलों में 7 ईरानी सैनिकों की मौत, 300 से ज्यादा घायल। अमरीका की होर्मोज में सख्त नाकेबंदी, ईरान ने खाड़ी देशों में दागे मिसाइल और ड्रोन। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है एआई की मदद से हरियाणा में मिले 25,666 नए टीबी मरीज, टीबी मुक्त हरियाणा में 100 दिन के दौरान 4,73,000 लोगों की हुई जांच।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में

0: The combination of style, technology and safety.
1: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
0: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 5.59 lakh. Yes, Rs. 5.59 lakh. Valid till 31st July only.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the bold Baleno today. TNC apply.
2: Nexa.
3: गाने सुहाने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला से 103.4 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। दोस्तों, कोई भी गीत कानों तक तो पहुंच जाता है, लेकिन कोशिश कीजिए उस गीत में डूब जाइए और मन करे तो साथ में थोड़ा झूम भी लीजिए, फिर देखिएगा मजा जो है वो दोगुना ना हो जाए तो कहिएगा।

0: प्रोग्राम है गाने सुहाने और प्रोग्राम में वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का।
1: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
2: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों

0: जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
1: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
2: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 EMI। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 EMI के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
3: प्रोग्राम गाने सुहाने में एक बार सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत। आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। दोस्तों, अगर रेडियो पर आपका पसंदीदा गीत अचानक बज जाए तो खुशी का उस कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। अगला गीत जो हम आपके लिए प्ले करने जा रहे हैं, कहीं ये वही गीत तो नहीं?
4: Valentine's Day.

Jesus, love is wrong. All I know is you and me are tied. Love is

0: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
1: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
2: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
3: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
2: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
3: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
2: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 5.59 lakh. Yes, Rs. 5.59 lakh. Valid till 31st July only.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
1: Nexa.
4: आकाशवाणी धर्मशाला आपने ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी आप हमें सुन रहे हैं। दोस्तों कुछ धुनें कानों में नहीं सीधे मूड पर उतर जाती हैं और अब देखते हैं हम कि हमारा अगला जो ये ट्रैक है वो आपके मूड को कितना अपग्रेड करता है।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 EMI। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 EMI के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
4: जी, आकाशवाणी धर्मशाला से आप जुड़े हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने सुहाने। जी, कोशिश की हमने पिछले गीत के साथ आपके मूड को अपग्रेड करने की, और अगर कोई कसर रह गई है तो अगला गीत पेश है आपके लिए। और हम कह देते हैं कि इस गीत के साथ आपका मूड जो है वो और भी रिफ्रेश हो जाएगा, ये हमें लगता है।

जी हाँ दोस्तों, अच्छे गीत जो होते हैं वो कभी भी आउटडेटेड नहीं होते। और बात करें अगर डांस नंबर्स की, तो भाई डांस नंबर तो कभी भी पुराने नहीं होते, हर पल नए से लगते हैं। और मन करता है बस अब थिरक लिया जाए, झूम लिया जाए।

जी वेलकम प्रोग्राम गीतांजलि में सभी सुनने वालों का। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, सुप्रभात। सुबह के 9 बज चुके हैं। अब शुरू होने जा रहा है प्रोग्राम गीतांजलि का ये सुहाना सफर, जहां सीट बेल्ट बांधने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का ये सफर सड़क पर नहीं बल्कि यादों, मुस्कानों और शानदार गीतों के साथ दिल के रास्ते पर तय होगा। आज के सफर में मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त नीलम, जिसकी बातें नहीं होती कम, लेकिन लेकिन लेकिन आज हम बातें करने का मौका आपको देंगे। जी हाँ, आज का गीतांजलि प्रोग्राम लाइव फोन इन है, तो हो जाइए तैयार हम सिंह बतियाने के लिए। 01892224391 ये स्टूडियोज का नंबर है। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, लेकिन दिल, जी हाँ, ये दिल जो है वो कभी कभी पीछे बीते हुए कुछ लम्हे हैं उनमें जाना चाहता है। किसी पुरानी फोटो को देखकर, किसी गीत को सुनकर या किसी खुशबू के साथ अचानक कोई याद लौट आती है। आज सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई बटन होता जिसे हम रिवाइंड बटन कहते, अगर वो बटन होता तो आपके बीते वक्त का कोई 5 मिनट का समय आपको दोबारा जीने का मौका मिलता, तो वो कौन से 5 मिनट होते जो आप चुनते? स्कूल का पहला दिन, पहली तनख्वाह, माँ के हाथ का आखिरी निवाला, किसी अपने की हंसी, या फिर वो 5 मिनट जिन्हें आपने उस वक्त बिल्कुल साधारण सा समझा, लेकिन आज सबसे ज्यादा याद आते हैं आपको वो 5 मिनट। तो फोन उठाइए, नंबर मिलाइए, अपनी बात हम संग साझा कीजिए। 01892224391 ये हमारे स्टूडियोज का नंबर।

0: हेलो, हाँ जी, कार्यक्रम गीतांजलि में वेलकम, कौन बोल रहे हैं? जी, ये फोन कॉल कट गया है। जी श्रोता, हमें फोन कर सकते हैं 01892224391, ये स्टूडियोज का नंबर है। और अगर आपकी जिंदगी में रिवाइंड बटन होता तो कौन से ऐसे 5 मिनट हैं जिन्हें आप रिवाइंड करके दोबारा जीना चाहते? जी, प्रोग्राम में हमारे साथ एक श्रोता जुड़ने की कोशिश में है, आइए जानते हैं बात हो पाती है या नहीं। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं?
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम बताएं।
1: मेरा नाम वर्षा मेहदी।
0: जी, नाम एक बार फिर से दोहरा देंगे।
1: मेरा नाम अमर सिंह है जी।
0: जी अमर सिंह जी, जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: उत्तराखंड में
0: जी,
1: तो वहाँ ब्राह्मण लोग थे, ठाकुर लोग थे, ब्राह्मणों में त्योहारी होते हैं
0: जी। अमर सिंह जी, आपको रोकना चाहेंगे। हमारा आज एक विषय है जिस पर हम हल्की फुल्की सी बातचीत कर रहे हैं। अगर आपकी जिंदगी में रिवाइंड बटन होता, पीछे जाने का ऑप्शन आपको मिलता, तो आपकी जिंदगी के कौन से 5 मिनट हैं जिन्हें आप दोबारा जीना चाहोगे?
1: दोबारा जीना चाहिए
0: जी, 5 मिनट कोई आपको लगता है कि काश उस समय मैंने ऐसा किया होता, कुछ मलाल दिल में हो किसी टाइम को लेकर?
1: मेरे को मलाल कोई नहीं जिंदगी में जी, क्यों कि मैं 10 पास करा हूँ
0: जी,
1: और वन सुरक्षा गार्ड की नौकरी मिली, आप फॉरेस्टर रिटायरमेंट हूँ, अब क्या पीछे को जाऊंगा
0: जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा आपसे बात करके, कॉल आपने किया। जी श्रोताओं, हम ऐसे ही आज हंसी मजाक के मूड में हैं और एक बड़ा हल्का फुल्का सा विषय हमने चुना है कि अगर आपकी जिंदगी में आपको रिवाइंड बटन वाला मौका मिलता है और 5 मिनट दोबारा जीने का मौका मिलता है, तो कौन से 5 मिनट है अपनी जिंदगी के जो आप दोबारा जीना चाहेंगे? जी हाँ, इस विषय पर आप हमसे बात कर सकते हैं और फोन नंबर है 01892, ये हमारा कोड नंबर है, और 22431 ये स्टूडियोज का नंबर है। फोन मिलाइए, हमसे बात कीजिए। हेलो
2: हेलो
0: जी, नमस्ते, कार्यक्रम में स्वागत, नाम बताएं।
2: हाँ जी मैम, नमस्कार जी, मैं तो शारदा बात कर रही हूँ बैजनाथ से।
0: जी शारदा जी, कैसी हैं?
2: हाँ जी मैम, बहुत बढ़िया हूँ, अच्छी हूँ
0: जी। कैसा मौसम?

0: मैं आपके वहां।
1: मैम बहुत सारी धूप खिली है, 3 4 दिन हो गए, धूप ही धूप है और बारिश तो है ही नहीं।
0: जी, शिव भूमि में आप रहती हैं, क्या कहना चाहती
1: हाँ
0: हैं आज
1: सही
0: के
1: है।
0: विषय पर?
1: हाँ जी मैम, आपने कहा ना कि आपके पास रिमांड बटन होता तो आप
0: जी
1: कैसे जीते। हाँ तो मैंने सोचा है कि, सोचा नहीं है, सही में
0: जी
1: अपने माँ के हाथों से अपनी चोटियां बनवाती हूँ स्कूल टाइम की।
0: जी बहुत अच्छी आपकी याद है ये, और हर कोई
1: हाँ जी
0: चाहता
1: मैम,
0: है कि हम बचपन में उस दौर में चले जाएं जहां माँ का लाड प्यार हमें मिलता और ज्यादा।
1: हाँ जी मैम, मेरी माँ दुनिया में नहीं है ना, तभी तो क्या है, ये जरूरत तो पड़ गई इस बात की मुझे।
0: जी अच्छी बात है, और प्रकृति का नियम है, जो आया है वो जाएगा, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हम ताउम्र नहीं भूल पाते, और माँ बाप का रिश्ता ऐसा ही रिश्ता है।
1: हाँ जी मैम, हाँ जी
0: जी
1: मैम, धन्यवाद
0: जी
1: मैम।
0: शारदा जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने अपनी बातें हमारे साथ साझा की। प्रोग्राम में हम फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक ले रहे हैं और बाकी श्रोताओं से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।

0: प्रोग्राम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते जी, कार्यक्रम गीतांजलि में स्वागत।
1: जी प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: जी प्रेम सिंह जी, आज का विषय सुना आपने?
1: हाँ जी बिल्कुल, पीछे 5 मिनट जाना है मुझे।
0: जी तो कौन से पल है 5 मिनट के जो दोबारा जीना चाहते हैं?
1: जी बताना चाहूँगा, मैं IPS की एग्जाम देने गया था
0: जी।
1: तो मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगा, वहाँ पे बहुत सारे दोस्त भी मिले मुझे
0: जी,
1: और उन दोस्तों से कई काफी बातें भी हुई मेरी
0: जी।
1: फिर क्या हुआ कि सब दोस्त अलग अलग निकल गए, पता ही भी नहीं चला कि कौन से दोस्त कहाँ है
0: जी।
1: जी हाँ, तो बस मैं अगर ऐसा होता है तो मैं 5 मिनट पीछे जाके उन सारे दोस्तों से मिलके उनके कॉन्टेक्ट नंबर लेके उनके साथ जीना चाहता था।
0: जी बहुत अच्छी बात आपने शेयर की हमारे साथ, हम उम्मीद करेंगे कि आपके वो दोस्त कहीं ना कहीं किसी न किसी जरिए से आपके साथ दोबारा मिले। आज आपने कॉल किया, बेहद शुक्रिया
1: जी। थैंक यू सो मच, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा
0: जी। हमें भी बहुत अच्छा लगा जी। दोस्तों कितनी मज़ेदार बात है ना, जब हम किसी पुरानी याद के बारे में सोचते हैं तो दिल खुश हो जाता है। जब हम 5 मिनट कहते हैं तो घड़ी के हिसाब से वो बहुत कम लगते हैं, लेकिन दिल के हिसाब से अगर देखा जाए तो कई बार वही 5 मिनट ज़िंदगी में एक बहुत बेहतरीन जगह ले लेते हैं, ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन जाते हैं।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते जी। मैं ज्योत्सना पठानिया पठानकोट से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ साल पहले, 10-15 साल पहले, जब
0: जी
1: गूगल के पास ट्रांसलेटर नहीं था ये फीचर,
0: जी
1: तो
0: जी जी
1: मैं अचानक अपने पड़ोसी के घर में गई, तो वहाँ दो पंजाबी स्पीकिंग, एक रशियन स्पीकिंग और एक प्रेसेंट इंग्लिश स्पीकिंग
0: जी
1: बैठे हुए थे,
0: जी जी
1: और उनके बीच में एक डिवाइस था। वो वर्ड मीनिंग कर रहे थे, चारों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। उनके जो बच्चे हैं वो रशिया में मेडिकल करने गए थे।
0: जी
1: मेरे को, क्योंकि पंजाबी, इंग्लिश और रशियन तीनों आती थी,
0: जी
1: तो मैंने उनको हेल्प किया एक
0: हाँ
1: दूसरे
0: हाँ
1: से कम्युनिकेट करने के लिए। तो वो जो मेरा खुद का जो लो सेल्फ एस्टीम था, क्योंकि मैं एक बैकवर्ड एरिया में रह रही थी और
0: जी
1: मैं जॉब नहीं कर रही थी, और मैं एमेच्योर हूँ, मतलब मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ,
0: जी जी जी
1: लेकिन मेरे को आता था, तो मैं उनको हेल्प कर पाई। आज वो लोग अपने विंग्स पर लाकर सब अपने अपने बहुत अच्छे सक्सेसफुल हैं, और गूगल अब तो बहुत ज्यादा ट्रांसलेटर्स दे रहा है, तो अब इतना ज्यादा लैंग्वेज सीखने की जरूरत भी नहीं है।
0: जी बिल्कुल, आपने अपनी ज़िंदगी के 5 मिनट है वो रिवाइंड किए और आपने उन दिनों को फिर से याद किया। आज आपने हमारे साथ इस टॉपिक पे बात की ज्योत्सना जी, हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल के लिए।
1: थैंक यू जी, थैंक
0: जी
1: यू।
0: जी श्रोताओं, हम सबकी ज़िंदगी में एक ऐसी एक याद ज़रूर होती है जिसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन दोबारा महसूस करने की सबकी इच्छा रहती है। तो ऐसा ही आज हमारा टॉपिक है, अगर ज़िंदगी में आपको रिवाइंड बटन वाला मौका मिले तो कौन से 5 मिनट हैं जिन्हें आप दोबारा जीना चाहते हैं। और आप हमें कॉल कर सकते हैं 01892224391, ये स्टूडियोज़ का नंबर है, फ़ोन कीजिए, आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज़ में जुड़ जाइए। हेलो
2: हेलो, अड़ी नमस्कार।
0: जी,
2: मैं राकेश
0: नमस्ते
1: गुप्ता
0: जी।
2: दानी से बोल
0: जी
2: रहा हूँ।
0: राकेश जी,
2: मेरा
0: कहिए क्या कहेंगे।
2: मेरे जी मेरे को तो पुराने दिन में, बहन जब छोटे थे ना जी,
0: जी
2: तो 5 रुपए घर से मिलते थे और मेले के लिए जाते थे ना जी।
0: जी जी
2: तो मेले में हर हर उसका एंजॉय करना, झूला भी झूलना, खाना भी, खाने के लिए जो होना वो भी खा लेना,
0: जी
2: लच्छे लुच्छे मिलते थे वो भी खा लेना, उसके बाद भी थोड़े बहुत पैसे बच जाते थे।
0: जी
2: तो

0: बचपन जो है उसे हमेशा जिंदा रखना चाहिए। तो अगर कभी भी ऐसे मौका मिले तो दोस्तों के साथ उस वक्त को एक बार फिर से एंजॉय कीजिए।
1: मैडम जी, ऐसे होता है ना जी मैडम,
0: जी
1: जिंदगी का जीने का ना, हम जब पुरानी बातें याद करते हैं ना तब आदमी जीता है।
0: जी
1: कभी
0: बिल्कुल
1: भी देख ले, यानी पुरानी बात तो याद करके आदमी को जीने का ज्यादा आनंद आता है। नहीं
0: जी
1: कभी
0: जी
1: पता नहीं
0: जी
1: आना क्या होगा क्या नहीं होगा, तो पुराना समय जो हम याद करते हैं ना, कोई भी है वो
0: जी
1: पुराना
0: बिल्कुल
1: समय याद करता है, हमारे समय ये था वो था, तो ज्यादा आनंद आता है मैडम जी।
0: जी बिल्कुल सही
1: तो
0: कहा जी राकेश जी, बहुत
1: मैडम
0: अच्छी बातें आपने हमारे साथ शेयर की
1: धन्यवाद मैडम
0: जी,
1: जी, बहुत
0: कॉल
1: बहुत
0: करने के लिए
1: धन्यवाद
0: बेहद
1: आपका।
0: शुक्रिया जी। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि जब हम पुरानी यादें याद करते हैं वही जिंदगी का असली मकसद है, क्योंकि आजकल जिस दौर से हम गुजर रहे हैं बस दिमाग में हर टाइम टेंशन, कुछ ना कुछ स्ट्रेस चला रहता है, और जीना जो है असल मायने में वो हम भूल जाते हैं। तो जब भी जिंदगी खुलकर जीने का मौका मिले तो उस मौके को हाथ से बिल्कुल मत गंवाइए, उसे जी भर के जी लीजिए ताकि जिंदगी में कोई भी पछतावा ना रह जाए।
2: To hell, the dance of the new millennium.
0: प्रोग्राम गीतांजलि, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। जिंदगी में रिवाइंड बटन का मौका अगर आपको मिले तो कौन से ऐसे 5 मिनट हैं, कौन से ऐसे वो 5 मिनट का समय है जो आप दोबारा जीना चाहते हैं, हम संग अपनी बातें अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। 01892-2243 ये है स्टूडियोज का नंबर। अगले कॉलर से हम बात करेंगे लेकिन फिलहाल आकाशवाणी शिमला जाने का वक्त है। प्रादेशिक समाचारों के लिए कुछ ही समय में हम आपको आकाशवाणी शिमला के स्टूडियोज लिए चलेंगे।

0: आकाशवाणी के साथ जुड़िए और अपने उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाओं से जुड़े अपने कारोबार के बारे में सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
1: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलो हर्ट्ज और एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 9:20 होने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी की डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुने जा सकते हैं।
5: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
6: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
5: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
6: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
5: जानकारी लें, अधिकार जाने।
6: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
5: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र को और मजबूती देने के लिए लगातार कर रही है कार्य। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने संगठनात्मक गतिविधियों को और अधिक प्रभावी व सशक्त बनाने के लिए 17 संगठनात्मक जिलों के लिए जिला प्रभारी व सह प्रभारियों की नियुक्ति की। शिमला जिला के रामपुर उपमंडल में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस दुर्घटनाग्रस्त, 2 की मौत, 22 यात्री घायल और

0: कांगड़ा जिला के धर्मशाला वन मंडल में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना पर्यावरण संरक्षण के साथ ग्रामीणों के लिए रोजगार का भी बन रही बेहतर जरिया। और अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने शिक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया है और इसी का परिणाम है कि हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय प्रवास के दौरान उन्होंने कहा कि गत 3.5 वर्षों में इस विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा की मजबूती के लिए 20 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अपने प्रवास के दौरान शिक्षा मंत्री ने क्षेत्र में 2 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास भी किए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने संगठनात्मक गतिविधियों को और अधिक प्रभावी और सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य के 17 संगठनात्मक जिलों के लिए जिला प्रभारियों व सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। राजीव बिंदल ने कहा कि जिला प्रभारी व सह प्रभारी संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करने, संगठनात्मक कार्यक्रमों को गति देने व बूथ स्तर तक पार्टी को और अधिक सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि आगामी संगठनात्मक अभियानों और जनसंपर्क कार्यक्रमों को सफल बनाने में इन सभी पदाधिकारियों का अनुभव व सक्रियता संगठन के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगी। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज ओडिशा के पुरी में शुरू हो रही है। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन रथों में विराजमान होकर श्रद्धालुओं को दर्शन देते हुए श्री गुंडिचा मंदिर जाते हैं, जिसे भगवान जगन्नाथ के मामा का निवास स्थान माना जाता है। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन श्री गुंडिचा मंदिर में होगा। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा 9 दिनों तक गुंडिचा मंदिर में ठहरते हैं। यात्रा पूरी करने के बाद उन्हीं रथों पर श्री मंदिर लौटते हैं, जिसे बहुधा यात्रा या वापसी रथ यात्रा कहा जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ यात्रा के पर लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत कुल्लू जिला में एक दिवसीय प्रशिक्षण व उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला महिला व बाल विकास विभाग के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों सहित ICDS पर्यवेक्षक, ब्लॉक समन्वयक सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जिला कार्यक्रम अधिकारी कुंदन लाल ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को योजना के प्रावधानों, पात्रता मानदंड सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने सभी फील्ड कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में पात्र गर्भवती व धात्री महिलाओं तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाकर समयबद्ध इनका पंजीकरण सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित न रहें। शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के रामपुर खड़ाहन कोटाधार खौलीघाट सड़क मार्ग पर कल साय हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 अन्य यात्री घायल हुए हैं। सूचना के अनुसार सभी घायल यात्रियों का उपचार क्षेत्र के खनेरी अस्पताल में चल रहा है। शिमला जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि प्रशासन द्वारा मृतकों के परिजनों को 20,000 रुपए की फौरी राहत राशि जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्राकृतिक आपदा के समय राहत और बचाव कार्य के उद्देश्य से हमीरपुर जिले के बिजड़ी में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वाधान में पंचायत के स्वैच्छिक स्वयंसेवियों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में 50 वर्ष से कम आयु के स्वयंसेवियों ने भाग लिया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
1: जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से पंचायत समिति हॉल बिजड़ी में आपदा प्रबंधन परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। परीक्षण के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्य करने के व्यवहारिक तरीके सिखाए गए। ये परीक्षण पूरे विकास खंड में 7 चरणों में आयोजित किया गया। प्रत्येक चरण में 7 पंचायतों के 35 स्वयंसेवियों को परीक्षण दिया गया। परीक्षण में पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं विशेषज्ञ स्वयंसेवियों को आपदा की स्थिति में राहत, बचाव एवं प्राथमिक उपचार संबंधित जानकारी दी गई। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर विनोद ठाकुर ने बताया कि स्वयंसेवियों में परीक्षण को लेकर काफी उत्साह दिखा। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ग्रामीणों को रोजगार

0: जोड़ने की दिशा में वे प्रभावी पहल बनकर उभर रही है। योजना का लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रदेश के वन आवरण को 28% से बढ़ाकर 30% करना है। कांगड़ा जिला के धर्मशाला वन मंडल में इस योजना के तहत विभिन्न समूहों के लोग भी बेहतर कार्य कर रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
1: धर्मशाला वन मंडल में पिछले वर्ष लगभग 28 हेक्टेयर क्षेत्र में 22,000 पौधे लगाए गए। इस वर्ष 17 महिला मंडलों, 6 युवक मंडलों और 5 स्वयं सहायता समूहों को अभियान से जोड़ा गया है। हरड, बेहड़ा, आंवला सहित स्थानीय प्रजातियों के पौधों को प्राथमिकता दी जा रही है। धर्मशाला के निकट घुरकड़ी की ओम नमो नारायण स्वयं सहायता समूह ने लगभग 2 हेक्टेयर क्षेत्र से लेंटाना हटाकर 1600 से अधिक पौधे लगाए और उनका सफल संरक्षण किया। समूह की इस पहल ने साबित किया है कि जन भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण के साथ ग्रामीण आजीविका को भी नई मजबूती मिल सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के मद्देनजर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ये आदेश जारी किया है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस से पहले हर साल ऐसे आदेश जारी किए जाते हैं। 15 अगस्त को केवल सरकार द्वारा जारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने और समारोह में शामिल होने की अनुमति होगी। युवा पीढ़ी को नशे की बढ़ती सक्रियता से बचाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में चिट्टा मुक्त अभियान चलाया गया है। इसके तहत विभिन्न शिक्षण संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम के जरिए विद्यार्थियों व अन्य लोगों को इसके दुष्परिणामों से जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में कुल्लू जिला के बाशिंग स्कूल में भी नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
2: कुल्लू के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाशिंग में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 200 विद्यार्थियों और शिक्षकों ने भाग लिया। इस अवसर पर एसपी कुल्लू मदनलाल कौशल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने छात्रों से नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि अगर कोई उन्हें नशे के प्रति प्रलोभन देने की कोशिश करे तो तुरंत उसकी सूचना अपने अध्यापकों, परिवारजनों व पुलिस को दें। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 112 पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है तथा शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाता है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण ने तकनीकी आधार पर नहीं रोका जा सकता ओपीएस का लाभ शीर्षक से लिखा है। हिमाचल हाईकोर्ट ने एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा। अमर उजाला ने प्रदेश हाईकोर्ट के हवाले से लिखा है, कानूनन स्थापित यूनिवर्सिटी की डिग्री को सरकारी मंजूरी जरूरी नहीं। अतिक्रमण मामलों में राहत की नीति लाएगी हिमाचल सरकार, शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने खबर को प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है, गरीब व भूमिहीन लोगों के अतिक्रमण के मामलों में रियायत को बनाएंगे नीति। मौसम से जुड़ी खबर को दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है, 10 साल में सबसे सुस्त मॉनसून जुलाई का, आधा माह बीता इस बार आधी बारिश भी नहीं हुई, 15 दिनों में 125 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र को और मजबूती देने के लिए लगातार कर रही है कार्य। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने संगठनात्मक गतिविधियों को और अधिक प्रभावी व सशक्त बनाने के लिए 17 संगठनात्मक जिलों के लिए जिला प्रभारी व सह प्रभारियों की नियुक्ति की। शिमला जिला के रामपुर उपमंडल में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस दुर्घटनाग्रस्त, 2 की मौत, 22 यात्री घायल। और कांगड़ा जिला के धर्मशाला वन मंडल में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना पर्यावरण संरक्षण के साथ ग्रामीणों के लिए रोजगार का भी बन रही बेहतर जरिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
3: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
4: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
5: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
4: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।
6: हेलो 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला और प्रोग्राम गीतांजलि में एक बार सभी श्रोताओं का फिर स्वागत। आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, जिंदगी में अगर आपको रिवाइंड बटन मिले तो कौन से 5 मिनट हैं आपकी जिंदगी के जिन्हें आप दोबारा जीना चाहेंगे या उन 5 मिनट के लम्हों में दोबारा जाना चाहोगे। जी, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 01892224391, ये है स्टूडियोज का नंबर, फ़ोन कीजिए और हमसे अपनी बात साझा कीजिए। हेलो।
7: हेलो, नमस्कार मैम।
6: जी नमस्ते जी, बहुत प्यारी सी मीठी सी आवाज़ है, नाम बताएं।
7: मीनाक्षी बोल रही मैम, सुलोटी से।
6: जी मीनाक्षी जी, क्या कहना चाहती हैं आज के टॉपिक के बारे में?
7: मैम, आज के टॉपिक के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि मैं ना अपने लाइफ में, मतलब अगर वापस जाना चाहूँ तो सबसे पहले मैं अपनी कॉलेज लाइफ में जाऊँगी मैम।
6: जी, कोई खास बात उस समय की जो आपको लगता है कि उस टाइम में जाना क्यों जरूरी है?
7: मैम, वो जो पल है ना, वो वापिस नहीं आ सकते। अभी जो दौर चला हुआ है ना मैम, टेंशन का ही चला हुआ है।
6: जी बिल्कुल।
7: हाँ जी, वो जो टाइम होता है, वो जो एज होती है ना, वो बिल्कुल फ्रीली होती है, फ्रीली माइंडेड होता है, मतलब कोई टेंशन नहीं है उस टाइम की हमें, ना खाने की, ना पीने की, ना पैसे की, कुछ भी नहीं।
6: बिल्कुल, बेफिक्री के साथ जीते हैं बिल्कुल हम उस समय।
7: और ये रहता है कि सुबह जाएंगे, इकट्ठे होंगे, बस गप्पे सप्पे हैं और थोड़ी सा।
6: जी मतलब आप गप शप मिस कर रही हैं अपनी सखी सहेलियों के साथ।
7: क्योंकि अब टाइम ऐसा आ चुका है ना मैम कि फोन है, एक फोन है बस, मतलब अगर अकेला बंदा तो वो पूरा दिन भर अकेला ही रहेगा।
6: जी बिल्कुल। एक छोटी सी आपको सजेशन देना चाहेंगे, जिंदगी बहुत छोटी है और जिस तरीके से मैं बोलूंगी शायद ये लेक्चर लगे, भाषण सा लगे, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो अपने पुराने दोस्तों के साथ, चाहे एक सखी सहेली है, दो हैं, मिलिए और थोड़ा सा टाइम जरूर स्पेंड कीजिए, क्योंकि पता नहीं कब हम इस जहां को रुखसत कह जाएं तो मन में कोई मलाल रह जाए उससे पहले।
7: जी पर ये तो है, मिलता कोई नहीं है अब मैम।
6: कोशिश कीजिए, आजकल तो हमारे पास बहुत से प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, उसके जरिए आप
7: तो
6: अपने पुराने,
7: हम जैसे चाहते कि आमने सामने बैठे हो।
6: जी अगर आप उस पर मिलती हैं, फेसबुक पे मानिए कोई फ्रेंड मिलता है तो मैसेंजर से बात कीजिए, नंबर एक्सचेंज कीजिए और हम उम्मीद करेंगे, भगवान से ये भी प्रे करेंगे कि आपकी जो पुरानी सहेलियां हैं वो आपको मिलें और आप अपने कॉलेज के दिन जो है वो दोबारा जी पाएं। आज आपने कॉल किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं 01892224391, ये है हमारे स्टूडियोज़ का नंबर और रिमाइंड बटन आज आपको हम दे रहे हैं और रिमाइंड बटन हम आपको देंगे, लेकिन अब फ़िलहाल प्रोग्राम में वक्त है गीत संगीत का, एक प्यारा सा गीत आपको सुनवाते हैं, उसके बाद बाकी की बातें करेंगे।

0: जी बिल्कुल, हमारे लिसनर्स के जैसा तो कोई भी नहीं है। हेलो
1: हेलो
0: जी, प्रोग्राम गीतांजलि में स्वागत है, नाम बताएं।
1: धन्यवाद, मैं पंकज ग्लोरिया बोल रहा हूँ जी।
0: जी पंकज जी, कहाँ से?
1: मैं रैप गांव से बोल रहा हूँ जी।
0: जी आज का विषय आपने सुना?
1: हाँ जी, हाँ जी मैम।
0: क्या कहना चाहते हैं?
1: मैडम बहुत अच्छा विषय है, हर कोई अपने बचपन में जाना चाहता है, ये तो तय है, लेकिन जाया नहीं जा सकता, ये भी एक आयरनी है।
0: जी बिल्कुल,
1: क्योंकि समय जो होता है ना वो पीछे नहीं मुड़ता है।
0: जी बिल्कुल,
1: हमेशा आगे जाता है, तो हम यादों में अपने बचपन में जा सकते हैं।
0: जी
1: तो अच्छा विषय है, और जैसा अगर मेरे बारे में बोला जाए तो मैं तो अपने स्कूल के दिनों में वापस जाता हूँ
0: जी। कोई खास किस्सा या कोई खास पल?
1: हाँ मैडम, किस्सा तो हम ये बोल सकते हैं कि बचपन में क्या होता था ना, अब तो हम बड़े हैं तो हमें जैसे कोई चीज खरीदनी है, कुछ खाना है, तो हमें पूछना नहीं पड़ता है, या मतलब पैसे लेने नहीं पड़ते हैं।
0: जी, जी।
1: लेकिन बचपन में ऐसा होता था ना कि जैसे दिन का हमें पिछले दिन से ही जुगाड़ लगाना पड़ता था कि जैसे कैसे करके हमारे पास 5-10 रुपए हों और हम कुछ अगले दिन का प्लान बना पाएं।
0: जी बिल्कुल।
1: तो जैसे हमारी ना स्कूल बस आती थी, मैं अपना इंसिडेंट सुनाता हूँ।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: तो उस स्कूल बस से हमें जैसे छुट्टी होती थी, तो मेरे एक मतलब मेरे फ्रेंड थे, तो हमारा रहता था कि हम गन्ने का जूस पिएंगे।
0: जी।
1: तो मतलब हमने दिन में मतलब उन पैसों को बचा के इसलिए रखना कि एक गिलास गन्ने का जूस हमें गर्मियों में मतलब पीने का बड़ा था, तो हमारा वो ही पूरा ध्यान ही उसमें रहता था कि कब उतरेंगे, फिर हमें वहां जाना है। वहां पे भी हमने टेक्निक लगा के रखी थी कि अगर मतलब आई मुझे लगता 5 रुपए का गिलास आता था और भरा हुआ, और जो 2 रुपए का था उसको आधा देते थे, तो वो क्या होता था, जो गन्ने के जूस वाला होता था ना, वो हम 2 का लेते थे और वो थोड़ा ज्यादा भर जाता था, फिर हमारे पास 2 और अब

0: एक और आधा दे दो, तो और आधा दे दो मींस कि वो हमें ज्यादा मिल जाता था पीने को। तो मैं जब भी कभी भी गन्ने की किसी उसके आगे से निकलू ना ठेले से, तो
1: जी
0: मुझे वो मेरा बचपन याद आ जाता है कि कैसे हम मतलब ऐसे टेक्निक लगाते थे कि हमें मतलब होता तो वो क्या था एक मतलब अब तो बड़ी छोटी सी चीज लगती होगी
1: जी
0: शायद
1: जी जी
0: बच्चों को
1: बिल्कुल
0: कि हर चीज मतलब और जैसी है ना, कुछ
1: जी
0: चिप्स हैं
1: बिल्कुल
0: कुरकुरे, लेकिन हमारे लिए वही बहुत कुछ होता
1: जी,
0: था।
1: बहुत अच्छी सी, बहुत मीठी सी और बहुत हेल्दी सी याद है आपकी। गन्ने
0: हाँ
1: का
0: जी
1: जूस पीने में भी हेल्दी होता है, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, कॉल किया आपने, शुक्रिया
0: थैंक यू मैम,
1: जी।
0: थैंक
1: आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 01892-224391, ये है स्टूडियोज़ का नंबर। और रिवाइंड बटन अगर आपको दिया जाए तो आप अपनी ज़िंदगी के कौन से ऐसे पल हैं जिन्हें दोबारा जीना चाहते हैं, इस बारे में हमसे बात कर सकते हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
2: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
3: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
2: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
3: And now, it's yours at an effective price of just rupees 6.70 lakh.
2: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
2: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
4: Nexa.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: दोस्तों, कुछ लम्हे जेब में रखे सिक्कों जैसे होते हैं, रोज इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन जब भी हाथ लगता है तो उनकी खनक बहुत प्यारी सी सुनाई देती है। ऐसे ही लम्हे हैं जिंदगी के, जिनके बारे में आज बात कर रहे हैं हम। रिवाइंड बटन अगर आपको मिले तो कौन सा ऐसा लम्हा है, कौन से ऐसे लम्हे हैं जिंदगी के जिन्हें आप दोबारा जीना चाहेंगे? हेलो,
1: हाँ जी नमस्ते।
0: जी नमस्ते जी, नाम बताएं।
1: जी योगेश जांगड़े बेमे तरह छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: जी योगेश जी, क्या कहेंगे आज के टॉपिक के बारे में?
1: जी अब बचपन की तो बहुत सारी यादें हैं। बचपन उस समय ना मोबाइल था ना।
0: जी योगेश जी, एक बीच में रोकना चाहूंगी, जरूरी नहीं है कि हम बचपन में ही लौटें। आपको लगता है कि आपके किसी भी, आज से लेकर पिछले किसी भी समय की कोई याद है जहां आप वापस जाना चाहते हैं, आप साझा कर सकते हैं?
1: वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बचपन जो होता है वो गाने में भी कहा गया है कि बचपन हर गम से बेगाना होता है। तो बचपन को ही याद करना चाहेंगे। जब छोटे थे तो नाव चलाना और तालाब में तैरने चले जाना, मतलब एक नटखट सा जीवन जहाँ ना कोई परेशानी, ना कोई बेचैनी, ना किसी तरह का दबाव, एक थोड़ा सा खुला मंच था। हालांकि माँ बाप से डांटे भी पड़ती थी, दादा दादी से, लेकिन जो बचपन का पल है वो सबसे ज्यादा लौटने का तो मन वह होता है।
0: जी बिल्कुल, वो डांट याद कहाँ रहती है, वो भूल जाती है।
1: जी
0: बिल्कुल। और आपने हमसे बात की आज और इस टॉपिक पर अपने विचार रखे, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल के लिए।
1: धन्यवाद। और खेतों में आपके प्रोग्राम को सुन रहे हैं।
0: जी बहुत बढ़िया, यूं ही अपना काम करते रहिए और आकाशवाणी धर्मशाला के साथ बने रहिए।
1: जी
0: आप भी हमें फोन कर सकते हैं 01892224391, ये है स्टूडियोज का नंबर। और रिवाइंड बटन आज आपको दिया है हमने। हेलो हेलो जी। जी फोन मिलाकर लगता है ये उस दौर में चले गए, जिस दौर को, जिस समय को ये दोबारा शायद जीना चाहते हैं, और इतना खो गए कि उन्हें याद नहीं रहा कि उन्होंने फोन मिला दिया है। हेलो
2: हेलो, नमस्कार मैडम।
0: हाँ जी नमस्ते जी, परिचय दीजिए अपना।
2: रजिंदर मनहास बोल रहा हूँ मैडम, रजौल शाहपुर।
0: जी रजिंदर जी, क्या कहेंगे?
2: मैडम यही कहना चाहूंगा कि जो हमारा समय अपने माता पिता के साथ गुजरा है वो सबसे प्राइम टाइम था मेरे लिए।
0: जी
2: आज वो मेरे साथ नहीं है, पर उनकी यादें हमें, और अगर मौका मिले लाइफ में तो मैं फिर से उसी लाइफ में वापस जाना चाहूंगा जहां माँ का दुलार है, पापा का आशीर्वाद है।
0: जी
2: और मतलब ऐसा लगता था कि एक राजा टाइप की जो फीलिंग होती थी।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल जी,
2: वो बिल्कुल फीलिंग आज महसूस नहीं होती है।
0: जी
2: जब भी कोई कष्ट होता है, बुरा टाइम आता है या अच्छा टाइम होता है, तो माता पिता की हमेशा याद आती है कि काश वो होते।
0: जी बिल्कुल,
2: कुछ और होता है।
0: जी राधे जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। माता पिता का जो सानिध्य है, उनका स्नेह है, हम चाहते हैं ता उम्र बना रहे, लेकिन कुछ सच्चाइयां हैं जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। जी आपने कॉल किया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, कॉल के लिए शुक्रिया। जी बिल्कुल सही कहा इन्होंने, माता पिता के साथ जो हमारी यादें हैं उन पलों को हम हमेशा जीना चाहते हैं दोबारा, अगर मौका मिले, और हमेशा सहेज कर हम रखते हैं, और जहां कहीं भी माता पिता हों उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह हमेशा हमारे पर बना रहता है। कार्यक्रम में फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, एक ब्रेक लेंगे।
3: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single

श्रोताओं, आप कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। इस बार रविवार दिनांक 19 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम आरोग्यम का विषय रहेगा उच्च रक्तचाप, कारण और बचाव। विषय से संबंधित आपकी जिज्ञासाएं और प्रश्न हैं, इनके उत्तर देने के लिए हमारे स्टूडियोज में उपस्थित रहेंगी डॉक्टर कविता ठाकुर, मानव औषधि विशेषज्ञ एवं ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी शाहपुर जिला कांगड़ा से। और रविवार को 19 जुलाई 2026 को 9 बजे से 10 बजे तक आप फोन करके अपने प्रश्न जो है, अपनी जिज्ञासाएं जो है, उनके उत्तर ले सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए हमारा फोन नंबर आपको डायल करना होगा 01892224391। फोन नंबर एक बार फिर से सुने 01892224391। और अपने प्रश्न इस विषय से संबंधित पूछे। 103.4 मेगाहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रविवार 19 जुलाई सुबह 9 बजे से 10 बजे तक।

0: आकाशवाणी धर्मशाला से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीतांजलि। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, प्रोग्राम में स्वागत है, नाम बताएं।
1: मैं मीता बात कर रही हूँ नगरोटा भगवान से। मैम
0: जी, मीता जी क्या कहेंगे आज के टॉपिक के बारे में?
1: मीता नहीं, मीरा।
0: मीरा जी, जी माफी चाहते हैं, क्या कहेंगी मीरा जी?
1: वैसे तो आपका टॉपिक बहुत अच्छा है आज, मैं
0: जी
1: पर मेरे को इसमें आप पूरी मेरा बचपन याद दिला दिया है। उसमें मैं आपको एक बात याद बोलना चाहती
0: जी
1: हूँ,
0: बताइए बताइए
1: वो मैं आज भी याद करती हूँ।
0: जी।
1: जब भी आम का सीजन आता है ना, तो मैं मेरे सारे कजन आते थे 2 महीने की छुट्टियों में,
0: जी
1: तो मेरे को पेड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक था।
0: जी
1: मैं चढ़ जाती थी और सबने आम खाने
0: जी
1: और पेट भर के आम खाने, और जब मेरी बारी आने तो मेरी दादी को बुला के ले आना, तो मेरी दादी बहुत पिटाई करते थे
0: जी
1: बहुत पिटती। वो मेरे को आज भी याद आती है वो बातें, और वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए।

0: अब वो बहुत
1: जी
0: मिस करते हैं मैम
1: जी
0: उनको.
1: लाइफ इतनी व्यस्त हो गई है, सब अपने अपने कामों में उलझ गए हैं, और
0: जी
1: ऐसा समय अगर आपको
0: जी
1: मिलता है मौका तो इस समय को ज़रूर एक बार दोहराने की कोशिश करें।
0: जी मैम,
1: जी
0: आप तो चढ़ बैठे, आप नहीं चढ़ सकते
1: जी चलिए, पेड़ पे ना
0: कुछ.
1: चढ़ें लेकिन आम इकट्ठे मिलकर बैठकर ज़रूर खाइए और उस
0: जी
1: समय को याद
0: वो
1: कीजिए।
0: आज भी करते हैं हम, आज भी वो यादें आती हैं, वो मिस करते हैं उस टाइम को. और
1: जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मीरा जी, कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी रिवाइंड बटन की बात आज हमने की, और ज़िंदगी में अगर आपको रिवाइंड बटन मिलता तो आप क्या करते। बहुत से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, बीच में हम गीत सुनवा रहे हैं, फ़ोन कॉल नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, सबकी अपनी अपनी यादें हैं। कोई बचपन में लौटना चाहता है, कोई किसी और समय में, कोई माँ बाप के हाथ का खाना खाना चाहता है, उनका प्यार दुलार चाहता है। हेलो जी, 01892224391 स्टूडियोज़ का नंबर है, और जल्दी से आप हमें कॉल करके अपनी बात साझा कर सकते हैं, वक्त बहुत कम है। और जब तक अगले श्रोता हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, हम एक गीत श्रोताओं को और सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
2: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
3: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
2: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
3: And now, it's yours at an effective price of just rupees 6.70 lakh.
2: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
2: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
4: Nexa.
1: प्रोग्राम गीतांजलि में स्वागत, नाम बताएं।
5: हेलो, नमस्कार जी।
1: जी नमस्ते, अपना परिचय दें और जल्दी से अपनी बात रखें।
5: जी मैं कुमार गौरव इंदुरकर, तालुका चिमूर, डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर, विदर्भ, महाराष्ट्र से बात करें। मैडम
1: जी क्या कहना चाहेंगे?
5: जी मैं ये कहना चाहूंगा, आकाशवाणी धर्मशाला के बहुत अच्छे प्रोग्राम है।
1: जी
5: जो पहले मैं बचपन में था
1: जी,
5: तो चौथी क्लास में पढ़ रहा था, जब मेरे पिताजी ने नया रेडियो खरीद के लाया तो मुझे
1: जी
5: इतनी खुशी हो गई
1: जी जी
5: कि मैं खुशी से झूम उठा, क्योंकि आकाशवाणी के प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते थे और
1: जी
5: लोगों के नाम भी आते थे, लोग भी फोन फरमाइश करते थे। तो मैं ये स्टडी करते करते सुना तो मैं बहुत खुशी हुई मुझे और मैं खुशी से झूम उठा।
1: जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कुमार गौरव जी, वक्त हमारे पास कम है और आपने हमें कॉल किया, बेहद शुक्रिया। ऐसे ही बने रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। जी श्रोताओं, चलते चलते इस गीत का आनंद लीजिए।

जी दोस्तों, आज हमने गीतांजलि कार्यक्रम में बात की रिवाइंड बटन की, क्या क्या कुछ ऐसे लम्हे हैं जिन्हें आप दोबारा जीना चाहते हैं। और बहुत से श्रोताओं से हमारी बात हुई और बहुत से श्रोता छूट गए, लेकिन ऐसे ही बने रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। यूं ही अपना प्यार अपना स्नेह बनाए रखिए। चलते चलते आपके साथ कुछ अपनी सोच एक साझा करना चाहेंगे। अगर हमारे फ़ोन पर स्क्रैच लग जाता है तो हमें बहुत चिंता होती है, लेकिन हमारा दिल है, हमारी जो शख्सियत है उस पर इतनी ज़्यादा स्क्रैचेस हम लगाते हैं, उलझनों की, टेंशन की, कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, उस पर हमारा कभी भी ध्यान नहीं जाता। जिस तरह से अपने फोन की स्क्रीन हमें बिल्कुल क्लियर चाहिए, कोशिश कीजिए अपने दिमाग को, अपने मन को बिल्कुल क्लियर रखने की, क्योंकि लोग कुछ तो कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम कहना है, उसकी परवाह मत कीजिए। और ज़िंदगी में खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से किसी को दुख ना हो, किसी की हंसी का आप कारण बने। कीप स्माइलिंग फॉर सम हाउ बाय फॉर नाउ। आज का ये प्रोग्राम अपनी होस्ट एंड दोस्त नीलम के साथ आपने सुना, सुरेंद्र कपूर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतांजलि, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। प्रातः के 10 बज चुके हैं और अब समय है कार्यक्रम गीतों का कारवां का। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अनुराधा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हैं फिल्म संगीत के सुहाने सफर के साथ और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं श्रेया घोषाल की आवाज में गाए इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओं, कार्यक्रम में लीजिए अब सुनते हैं निखिल विनय के संगीत निर्देशन में फिल्म कुछ दिल ने कहा का ये गीत उदित नारायण की आवाज़ में।

शंकर एहसान और लॉय के संगीत निर्देशन में आइए अब सुनते हैं फिल्म बंटी और बबली का ये गीत। गायक कलाकार हैं सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों का कारवां, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 10:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। श्रोताओं, कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं इस लोक भजन के साथ जिसे गाया है शेर सिंह ने।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है, फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
4: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
3: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
4: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
5: Nexa.
6: आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पहाड़ों के सुर, और कार्यक्रम जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, समाधान समारोह यानी विशेष लोक अदालत 2026 सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों को निपटाने के लिए 31 जुलाई तक करें आवेदन। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण कांगड़ा स्थित धर्मशाला के सचिव आर मेहुल शर्मा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को आपसी सुलह और मध्यस्थता से निपटाने के लिए गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अब 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को आपसी सुलह एवं मध्यस्थता से निपटाने के इच्छुक पक्षकारों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने बताया कि आम लोगों के लिए न्याय सुलभ बनाने के सर्वोच्च न्यायालय के प्रयासों की कड़ी में 21 अप्रैल से सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में समाधान समारोह 2026 का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि लंबित मामलों को समाधान समारोह 2026 में शामिल करने के लिए एक सरल गूगल फॉर्म तैयार किया गया है, जो सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट www.sci.gov.in पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि इच्छुक पक्षकार दिए गए लिंक के माध्यम से 31 जुलाई तक गूगल फॉर्म भरकर अपने मामलों को इस विशेष लोक अदालत में शामिल करवा सकते हैं। गूगल फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए सर्वोच्च न्यायालय की वन स्टॉप सेंटर से संपर्क किया जा सकता है, जिसके दूरभाष नंबर हैं 011-2311-6464, 011-2311-6465, 011-2311-2428, 011-2311-2528 हैं। इसके अतिरिक्त CRP निदेशक से दूरभाष नंबर 011-2311-5652 पर भी संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई।
0: ये तीनों जांच क्यों जरूरी है?
1: अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी।
0: बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
4: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
3: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
4: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
5: Nexa.
6: श्रोताओ, ये लोकगीत आप सुन रहे हैं मानसिंह की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहाड़ों के सुर, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 11 बजने को ही कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने संगठनात्मक गतिविधियों को और अधिक प्रभावी और सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य के 17 संगठनात्मक जिलों के लिए जिला प्रभारियों व सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। राजीव बिंदल ने कहा कि जिला प्रभारी व सह प्रभारी संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करने, संगठनात्मक कार्यक्रमों को गति देने व बूथ स्तर तक पार्टी को और अधिक सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने शिक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया है और इसी का परिणाम है कि हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय प्रवास के दौरान उन्होंने कहा कि गत 3.5 वर्षों में इस विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा की मजबूती के लिए 20 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आज से

0: देश भर में शुरू हो रही है। ओडिशा के पुरी में इस विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन रथों में विराजमान होकर श्रद्धालुओं को दर्शन देते हुए श्री गुंडिचा मंदिर जाते हैं। एक रिपोर्ट।
1: जगन्नाथ चकानेन लीला चलवारे।
2: नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगत के नाथ कहे जाने वाले श्री जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित श्री गुंडिचा मंदिर की यात्रा करते हैं। मान्यता है कि ये मंदिर भगवान की मौसी का घर है, जहाँ तीनों देवता 9 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद बहुधा यात्रा के साथ वे दोबारा मंदिर लौटते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत पाहंडी अनुष्ठान से होती है। इसमें मंत्रोच्चार, भजन कीर्तन और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच तीनों विग्रहों को रथों पर विराजमान कराया जाता है। इसके बाद लाखों श्रद्धालु रस्सियों से रथ खींचते हैं, जिसे अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया स्वरूप जारी किया है। IRCTC ने इसमें 4 बड़े सुधार किए हैं। इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉप अप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं है। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिसमें दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने की दिशा में प्रभावी पहल बनकर उभर रही है। योजना का लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रदेश के वन आवरण को 28% से बढ़ाकर 30% करना है। कांगड़ा जिला के धर्मशाला वन मंडल में इस योजना के तहत विभिन्न समूहों के लोग भी बेहतर कार्य कर रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
3: धर्मशाला वन मंडल में पिछले वर्ष लगभग 28 हेक्टेयर क्षेत्र में 22,000 पौधे लगाए गए। इस वर्ष 17 महिला मंडलों, 6 युवक मंडलों और 5 स्वयं सहायता समूहों को अभियान से जोड़ा गया है। हरड़, बेहड़ा, आंवला सहित स्थानीय प्रजातियों के पौधों को प्राथमिकता दी जा रही है। धर्मशाला के निकट घुरकड़ी की ओम नमो नारायण स्वयं सहायता समूह ने लगभग 2 हेक्टेयर क्षेत्र से लेंटाना हटाकर 1600 से अधिक पौधे लगाए और उनका सफल संरक्षण किया। समूह की इस पहल ने साबित किया है कि जन भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण के साथ ग्रामीण आजीविका को नई मजबूती मिल सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत कुल्लू जिला में एक दिवसीय प्रशिक्षण व उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला महिला व बाल विकास विभाग के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों, ICDS पर्यवेक्षक, ब्लॉक समन्वयक सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जिला कार्यक्रम अधिकारी कुंदन लाल ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को योजना के प्रावधानों, पात्रता मानदंड सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने सभी फील्ड कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अपने अपने क्षेत्र में पात्र गर्भवती व धात्री महिलाओं तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाकर समयबद्ध इनका पंजीकरण सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित न रह सके। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।
4: हम FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 11:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम महक पंजाब दी। कार्यक्रम दे सभी श्रोतियां नु साडा सस्रीकाल। श्रोताओ हाजिर ने तुहाडे अपने प्रोग्राम विच जिदा नां है महक पंजाब दी।

0: श्रोताओ ये पंजाबी गीत तुसी सुनिया दिलजीत दोसांझ की आवाज़ विच।
1: सीमा सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
2: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है, फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
3: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
0: कार्यक्रम महक पंजाब जी तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी दे धर्मशाला केंद्र तो। ते अगला कार्यक्रम दा गीत जेड़ा असी तुहानू सुना रहे हैं ना, वो है सबर कोटी दी आवाज़ विच।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
2: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
3: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
4: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी दा धर्मशाला केंद्र ते कार्यक्रम है महक पंजाब दी। कार्यक्रम विच तुहानू सुनवा रहे ने अमरिंदर गिल दी आवाज विच ए प्यारा दिया पंजाबी गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महक पंजाब थी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 11:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: दबदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। चलिए हमेशा की तरह करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर से विचार से, जिसे हमें भेजा है कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने। लिखते हैं,
2: नजरों में सम्मान और बोलने में मर्यादा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी का।
2: ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
1: और छत्तीसगढ़ लुकाउपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी जी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा,

0: विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी।
1: सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
0: आप सबके संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
1: जी
0: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक विकास की।
1: कल हमने बात की थी मिस्र की सभ्यता की और जाना था कि कैसे उन्होंने पेपरस को लेखन सामग्री बनाया और लेखन की विधा का विकास किया। आज के एपिसोड में हम खोलेंगे एक और नया और बेहद रोचक अध्याय।
0: तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे भारत की, यानी अपने देश की। तब तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। हम सभी जानते हैं कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ
1: जी।
0: लेकिन आइए अब जानते हैं कि भारत में लोग लिखते कैसे थे।
1: प्राचीन भारत में ज्ञान का संरक्षण मुख्य रूप से मौखिक परंपरा से होता था,
0: यानी वाचिक परंपरा।
1: जी, वेदों को गुरुओं ने हजारों वर्षों तक गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक रूप से संरक्षित रखा। धीरे धीरे लेखन का प्रचलन बढ़ा।
0: श्रोताओ, भारत में लिखने के लिए भोजपत्रों का इस्तेमाल हुआ। भोजपत्र एक विशेष प्रकार का लेखन पत्र था जो भोज या भूर्ज वृक्षों की छाल से बनाया जाता था। बता दें कि ये वृक्ष हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में, विशेषकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है।
1: जी।
0: अब प्रश्न ये उठता है कि भोज पत्रों को लिखने योग्य कैसे बनाया जाता था। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
1: अजीत जी, भोज या भूर्ज वृक्ष की बाहरी छाल को सावधानी से निकाला जाता था। उन्हें सुखाकर और समतल बनाकर उन पर वनस्पति से बनी स्याही से लिखा जाता था।
0: जी श्रोताओ, भोज पत्रों पर कई प्राचीन पांडुलिपियां लिखी गईं। जब कागज नहीं था तो भोज पत्र ही विद्वानों का नोटबुक था। भोज पत्र पर ऋग्वेद, अथर्ववेद और कश्मीर क्षेत्र में राजतरंगिनी की मूल प्रतियां मिली हैं। अनेकों बौद्ध ग्रंथ भी प्राप्त हुए हैं। कई प्राचीन नाटक भी भोज पत्रों पर लिखे मिलते हैं।
1: तो श्रोताओ, भोज वृक्ष की छाल पर सिर्फ शब्द ही नहीं लिखे गए, उनमें भारत का इतिहास, धर्म, संस्कृत, साहित्य, गणित, ज्योतिष और दर्शन भी सुरक्षित किया गया।
0: और हाँ श्रोताओ, भोज पत्र के अलावा दक्षिण भारत में ताड़ पत्र पर भी लिखा जाता था। इसके अलावा ताम्र पत्र और शिलालेख भी हमें मिलते हैं।
1: लगभग पहली दूसरी शताब्दी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। मिस्र में स्क्रॉल बनाए जाते थे, पन्नों पर भी लिखा जाता था। लेकिन अब मानव सभ्यता में शुरू हुआ एक और नवाचार।
0: जी,
1: लोगों ने पन्नों के किनारों को जोड़कर पुस्तक बनानी शुरू की। अजीत जी, उन पुस्तकों को क्या कहा गया?
0: विमलेश जी, उन पुस्तकों को कोडेक्स कहा गया, जो आधुनिक पुस्तक का पूर्वज है।
1: जी।
0: कोडेक्स प्रारूप से बहुत से लाभ हुए, जैसे किसी भी पृष्ठ पर तुरंत पहुंचा जा सकता था, पन्नों के दोनों ओर लिखा जा सकता था
1: और अधिक से अधिक जानकारी एक ही पुस्तक में संग्रहित की जा सकती थी।
0: जी।
1: कोडेक्स का विकास रोमन साम्राज्य में हुआ। आइए जानते हैं कुछ और बातें।
0: मध्य युग में पुस्तकें चर्म पत्रों पर भी लिखी जाती थी।
1: जी।
0: यूरोप के मठों में विशेष कक्ष होते थे जिन्हें स्क्रिप्टोरियम कहा जाता था। यहाँ लोग रात दिन बैठकर मूल पांडुलिपियों की नकल करते थे।
1: जी।
0: लिखने या नकल करने वालों को स्क्राइब्स कहा जाता था।
1: नकल करने वालों को बहुत सावधान रहना होता था। वे धीरे धीरे शब्द ब शब्द कई बार ऊंचे स्वर में पढ़कर और उन्हें दोहरा दोहरा कर लिखते थे, क्योंकि कोई गलती न हो जाए, क्योंकि गलती हो जाने पर लिखे हुए शब्दों को मिटाने की उचित व्यवस्था नहीं थी। उन्हें चाकू से खुरचना पड़ता था जिससे कागज या चर्म पत्रों को नुकसान होता था।
0: जी, तो धीरे धीरे कोडेक्स प्रारूप ने पुस्तकों का रूप धारण किया और इनसे मानव सभ्यता के पठित ज्ञान में और अधिक वृद्धि हुई।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: कोडेक्स किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोडेक्स किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें विश्वव्यापी समस्या जलवायु परिवर्तन के बारे में उदाहरणों सहित सविस्तार समझाया गया है और बताया गया है कि इसका निदान किन किन उपायों से हो सकता है।
0: जलवायु परिवर्तन।
2: साथियों नमस्कार, मैं हूं दिनेश। आप सबका स्वागत है हमारी रेडियो गोष्ठी में। आज की गोष्ठी का विषय है धरती करे पुकार। साथियों, इन दिनों सभी संचार माध्यमों में एक विषय छाया हुआ है और वो विषय है जलवायु परिवर्तन। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दो खास मेहमानों को बुलाया है, डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर। नमस्कार।
3: नमस्कार
2: साथियों। जलवायु परिवर्तन एक गंभीर पर्यावरण संकट है जिससे आज सारी दुनिया जूझ रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर नमिता से। तो नमिता जी, पहला प्रश्न ये है कि जलवायु परिवर्तन है क्या? क्या इसे मौसम का परिवर्तन कहेंगे?
4: सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मौसम परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन में बहुत अंतर है।
2: जी,
4: मौसम परिवर्तन क्षेत्रीय या स्थानीय होता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन बिल्कुल अलग है।
2: जी, लेकिन वो कैसे?
4: जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए चलिए सबसे पहले ध्यान देते हैं जलवायु शब्द पर। ये दो शब्दों से बना है, जल और वायु।
3: जी,
4: यानी जलवायु परिवर्तन में जल और वायु की स्थिति में परिवर्तन को मापा जाता है।
3: जी,
4: लेकिन एक बात ध्यान देने की है और वो ये कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक है, यानी वर्ल्ड वाइड।
3: जी,
4: तभी तो दुनिया के सारे देश जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित है और विचार विमर्श के लिए एक मंच पर आ रहे हैं।
3: देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर एक वैश्विक मंच बनाया है जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश शामिल हैं। और जानते हैं, इस मंच की स्थापना सन 1992 में हुई थी।
2: जी,
3: वैसे जलवायु परिवर्तन कई कारणों से क्षेत्रीय स्तर का भी हो सकता है, लेकिन सारांश में कहा जा सकता है कि यदि पृथ्वी के मौसम और तापमान में लंबे समय तक बदलाव होता दिखाई दे तो ये जलवायु परिवर्तन है।
2: जी, डॉक्टर दिवाकर, अब मेरा प्रश्न आपसे है।
3: जी,
2: आप हमें बताइए कि जलवायु परिवर्तन के संकेत क्या क्या है, यानी हम कैसे जाने कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है?
3: बहुत अच्छा प्रश्न है दिनेश जी। देखिए, इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी का औसत तापमान, बारिश का पैटर्न, मौसम के प्रकार और ऋतुओं का स्वरूप कई वर्षों या दशकों में बदलने लगे
2: जी।
3: और स्थायी हो जाए तो हम इसे जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
2: जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि हमारे जमाने में मौसम ऐसा नहीं था, अब बिल्कुल बदल गया है।
3: जी
4: जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक उदाहरण लीजिए, जैसे यदि आज से 20 वर्ष या लंबे समय के बाद ऐसा लगे कि पहले इतनी गर्मी नहीं थी जितनी अब हो गई है, पहले बारिश बहुत होती थी लेकिन अब कम या पहले से बहुत ज्यादा हो गई है
2: जी।
4: और ये स्थानीय तौर पर ही नहीं लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र में या वैश्विक हो गई है, तो ऐसी स्थिति को हम जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
3: जी, जैसे कि अनियमित बारिश और बाढ़ का आना, ग्लेशियर्स का पिघलना और इनके कारण समुद्र के जल स्तर का बढ़ना, बहुत अधिक संख्या में तूफानों या चक्रवात का आना और फसल, वन्य जीव और मानव स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव के लक्षणों का दिखाई पड़ना।
2: लेकिन दिवाकर जी, इसके कुछ कारण तो होंगे?
3: बिल्कुल दिनेश जी, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य कारणों में से एक है ग्रीन हाउस गैसों यानी हरित गृह गैसों का बढ़ना। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ पर यह बता दूं कि ग्रीन हाउस गैसें सूरज की रोशनी को तो पृथ्वी पर आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने वाली गर्मी को रोक लेती हैं।
2: अच्छा
3: जी, और इससे जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ता है।
2: डॉक्टर नमिता
4: जी,
2: हमारे विद्यार्थी श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं।
4: इसे भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि पौधों के लिए गर्मी या तापमान को अंदर ही बनाए रखने के लिए शीशे का घर बनाया जाता है,
3: और इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। जहाँ तक ग्रीन हाउस गैसों की बात है तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन इत्यादि प्रमुख गैसें हैं। जी, तो इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती।
4: एक और उदाहरण लीजिए, जैसे धूप में खड़ी कार कितनी गर्म हो जाती है, क्योंकि गर्मी कार के बंद होने से अंदर ही फंस जाती है।
3: जी,
4: ग्रीन हाउस गैसें भी पृथ्वी के लिए ऐसा ही काम करती हैं।
2: अच्छा,
4: और फिर होता ये है कि हिमखंड पिघलते हैं, बाढ़ तूफान बढ़ जाते हैं, इससे जलवायु परिवर्तन तेजी से होने लगता है।
2: बहुत सुंदर उदाहरण दिया। तो अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन होता क्यों है।
3: देखिए दिनेश जी, सबसे बड़े कारणों में से एक है जंगलों की कटाई और कटाई की तुलना में पेड़ कम।

0: लगाना। वैसे नमिता जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगी?
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। हम सब जानते हैं कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। अब यदि पेड़ ही नहीं होंगे तो जाहिर है कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी।
2: बिल्कुल।
1: और इससे पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा।
0: जी।
1: और तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर भी पिघलेंगे और इससे बाढ़ तो आएगी ही।
2: बिल्कुल।
1: समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा।
0: एक और जरूरी बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा।
2: जी।
0: शोध बताते हैं कि पिछली शताब्दियों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण जलवायु परिवर्तन हुए, लेकिन बहुत कम।
2: जी।
0: लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद से जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन यानी कोयला इत्यादि को जलाने, वनों की कटाई करने, वाहनों और उद्योगों के बढ़ने के कारण बहुत अधिक हुआ, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ा।
2: जी। इन दिनों अक्सर कहा जाता है कि कोयला, पेट्रोल और ईंधनों का बहुत ज्यादा उपयोग ना करें। क्या वाहन, कारखाने और मशीनें भी ग्रीन हाउस गैसें छोड़ती हैं?
1: जी बिल्कुल। वाहनों, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कारखानों और भारी मशीनों से भी बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि इनका उपयोग आप संतुलित तरीके से करें।
2: जी, तो आइए अंत में जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोका कैसे जा सकता है।
0: देखिए दिनेश जी, पहली बात है पेड़ लगाना और जंगलों को बचाना।
1: बिल्कुल।
0: और यदि पेड़ काटे भी जाएं, तो काटने की तुलना में और अधिक पेड़ लगाए जाएं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी बात ये है कि हम वाहनों और कारखानों के लिए सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग करें।
0: जी।
1: और जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का ही उपयोग करें।
2: बिल्कुल। तो आइए अब जानते हैं कि आज हम कहाँ खड़े हैं।
1: साथियों, समाचारों में आप अक्सर बाढ़, तूफानों, भूकंप इन सब बातों की चर्चा सुनते रहते हैं। इसका कारण बहुत हद तक जलवायु परिवर्तन ही तो है।
0: जी
2: बिल्कुल।
0: और दिनेश जी, यहाँ पर मैं आपके श्रोताओं से एक विशेष बात साझा करना चाहूँगा।
2: जी।
0: क्या आपको पता है कि भारत के अनेक क्षेत्रों में तापमान की वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है? भाई, अब तो ठंडे कहे जाने वाले पहाड़ी इलाकों का भी तापमान बढ़ गया है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। अब उदाहरण के लिए 2025 के बाद से हमारे देश का औसत तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है।
0: जी।
1: जिसके कारण सर्दी सामान्य से बहुत कम थी और गर्मी सामान्य से ज्यादा।
2: ये तो बड़ी गंभीर बात है और ऐसा दुनिया के सभी देशों में हो रहा है। अभी समय है इस पर गंभीरता से विचार करने का और उस पर अमल करने का।
0: जी।
2: कहीं ऐसा न हो कि बहुत देर हो जाए। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शिक्षक, कुछ नए आयाम।
4: इस कार्यक्रम में एक आदर्श शिक्षक की भूमिकाओं की चर्चा की गई है और कतिपय शिक्षण प्रविधियों के बारे में बताया गया है, जिनके द्वारा शिक्षक बच्चों को नवाचारी विधियों के प्रयोग से बच्चों को और अधिक बेहतर ढंग से पढ़ा सकते हैं।

0: अक्सर अध्यापक ये प्रश्न पूछते हैं कि शिक्षा में मूल परिवर्तन क्या हो रहे हैं। वही विद्यालय हैं, वही शिक्षक हैं, वही पुस्तकें हैं, वही विषय हैं, वही सब कुछ है, लेकिन इन समानताओं में भी कहीं कुछ भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। आइए हम इसी संदर्भ में दो कक्षाओं का अवलोकन करें।
1: आप जैसे किताबें निकालो, चलो चलो अपने अपने पार्ट निकालो
2: जी,
1: मैं भी कह रहा हूँ। चलो शाबाश, हाँ गोपाल, इसको बोलो, हाँ इधर।

0: शाबाश। अब मैं जो बोलूंगा मेरे पीछे पीछे दोहराना।
1: जी जी जी।
0: समझ गए?
1: जी।
0: अच्छा शुरू करते हैं हम।

0: पानी का उपयोग घर के अलावा बाहर भी तो करते हैं, फिर किताब में केवल घर ही क्यों लिखा है?
1: तुमको कई बार कहा है कि जो किताब में लिखा है उसको पढ़ो और बीच बीच में मत बोलो।
0: जी
1: गोपाल
2: जी।
1: बेटा आगे तुम पढ़ाओ।
2: जी गुरुजी। पानी
3: पानी,
2: कुओं
3: कुओं,
2: नदियों
3: नदियों,
2: तालाबों
3: तालाबों
2: एवं झरनों से मिलता है
3: एवं झरनों से मिलता है।
0: गुरुजी झरना क्या होता है? मुझे तो बहुत सारे शब्द समझ में ही नहीं आते।
1: फिर बीच में बोले, आगे पढ़ो, चलो चलो शाबाश।
2: गंदे
3: पानी के प्रयोग से
2: अनेक बीमारियां हो जाती हैं।
3: अनेक बीमारियां हो जाती हैं।
0: गुरुजी।
1: हाँ बोलो।
0: पानी गंदा कैसे हो जाता है?
1: बीच बीच में ना बोलो, तुम अपना अपना पाठ पढ़ो। चलो
2: जी,
1: चलो
2: जी,
1: ठीक से बैठो, पीछे पीछे हो जाओ।
4: आइए अब हम एक और कक्षा में चलें।
5: नमस्ते नमस्ते बच्चों, नमस्ते। अच्छा बच्चों, हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पानी के कौन कौन से साधन हैं, ठीक?
2: जी।
5: अच्छा तो बच्चों बताओ, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है?
6: हमारे गांव में दो कुएं हैं, एक तालाब भी है।
5: अच्छा
2: मास्टर जी, हमारे मामा के गांव में नदी बहती है, नदी उसी से पानी लाते हैं।
5: शाबाश, बिल्कुल ठीक।
0: मास्टर जी, वर्षा से तो पानी पानी हो जाता है।
5: हाँ हाँ, ये भी ठीक है।
7: मास्टर जी, हमारे घर में तो नल है।
5: शाबाश। अरे बच्चों, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। इन साधनों के अलावा पानी और भी कई स्रोतों से मिलता है, जैसे झरने, झील, तालाब, बावड़ी आदि।
2: मास्टर जी।
5: हाँ हाँ बोलो।
2: क्या हम सागर और बादलों को भी पानी का स्रोत मानेंगे?
5: हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा आप सब बच्चे ये लिखें कि पानी का प्रयोग किन किन कामों में करते हैं, ठीक?
2: जी मास्टर।
5: लिखो फिर, सब लिखो।
4: सुना आपने दोनों कक्षाओं के अंतर को? पहली में भय का वातावरण था और दूसरी में आश्चर्य, खोज, जिज्ञासा और आनंद का। आज के परिपेक्ष में अध्यापक की यही भूमिका उभर कर आई है। इस भूमिका में बच्चों को सहज समझने और सीखने के अवसर मिलते हैं। शिक्षण के ऐसे अवसरों को अब श्रीमती श्याम की कक्षा में देखें, जिन्होंने अंग्रेजी सीखना बच्चों के लिए एक खेल बना दिया है।
8: दीदी।
9: बोलो मालती।
8: दीदी मुझे तो बहुत सारे शब्दों के अर्थ समझ में ही नहीं आते।
9: तुम शब्दकोश में अर्थ ढूंढो और उसके अभिप्राय को समझो।
8: हाँ दीदी। अब मैं एक कॉपी में सारे मुश्किल शब्द लिख लूंगी।
9: ठीक।
8: फिर उनके अर्थ भी शब्दकोश में से देखकर लिख लूंगी।
9: हाँ, फिर तो तुम पाठ को सीखने के प्रयास में उन शब्दों का अभिप्राय भी समझ सकोगी।
8: जी।
9: इसके बाद तो तुम्हारे पास अपना ही एक अच्छा खासा शब्दकोश तैयार हो जाएगा।
8: वाह, एकदम मेरा अपना शब्दकोश।
9: हाँ।
4: अब जिस शब्द पर अटको शब्दकोश देखो और समझो। शब्दकोश सिर्फ बच्चे ही नहीं देखते, शकुंतला श्याम भी देखती हैं। शकुंतला जी की ये शैक्षिक विधि थी जो छात्रों के स्तर को सहजता से ऊपर उठाने में काफी हद तक कामयाब थी। उनकी एक और शैक्षिक विशेषता थी,

0: वो शिक्षण में एक मूलभूत सिद्धांत का प्रयोग करती थी। वो सिद्धांत था सीखने के प्रक्रम में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। वो अपनी कक्षा को एक खोज यात्रा में बदल देने में माहिर थी। एक अन्य अध्यापिका श्रीमती इंदु बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। उनके पढ़ाने का ढंग बहुत रोचक है। इंदु जी का पाठ हमेशा संवाद से शुरू होता है, यानी इंदु जी और बच्चों की बातचीत से। ये है इंदु जी के दिन की शुरुआत।
1: नमस्ते दीदी। नमस्ते
2: दीदी।
3: नमस्ते,
2: नमस्ते,
3: नमस्ते बच्चों। नमस्ते
4: दीदी। ये
3: अरे वाह, कितने सुंदर फूल हैं ये। प्रवीण, कहाँ से लाए तुम ये फूल?
1: दीदी, ये फूल प्रवीण अपने बगीचे से लाया है।
3: अच्छा
5: दीदी, इसके घर में बहुत सारे फूल लगे हैं।
3: सच? प्रवीण, इन फूलों के क्या क्या नाम है बताओ तो जरा।
4: गुलाब।
3: गुलाब, बिल्कुल ठीक। अच्छा प्रवीण, और कौन कौन से फूल लगे हैं तुम्हारे यहाँ?
1: दीदी मैं बताऊंगी।
3: नहीं नहीं नहीं, सिर्फ प्रवीण बताएगा। हाँ प्रवीण बताओ।
4: गुलाब।
3: हम्म।
4: गेंदा।
3: हाँ।
4: चमेली। और
3: हाँ
4: चमेली।
3: चमेली।
4: सूरजमुखी।
3: सूरजमुखी, शाबाश।
0: तो आइए इंदु जी से ही सुने उनके पाठ तैयार करने का ढंग। हाँ इंदु जी, आप जरा बताइए कि पाठ कैसे तैयार करती हैं?
3: देखिए, मैं बच्चों के अनुभव को ही पाठ का आधार मानती हूँ।
0: जी।
3: मेरे छात्र पहली, दूसरी और तीसरी कक्षाओं में पढ़ते हैं। इनमें से कुछ बच्चे जैसे प्रवीण बहुत शर्मीले हैं, और मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि प्रवीण को खास तौर पर कक्षा से जोड़ा जाए। आपने सुना ना अभी कि मैंने प्रवीण से ही फूलों के नाम पूछे। उसके बाद बात चली पौधों के हिस्सों के बारे में। स्कूल के आंगन में जाकर हमने देखा कि पौधे के कौन कौन से हिस्से होते हैं। अब सब बच्चे जानते हैं कि पौधों में जड़, तना, टहनी, पत्ते, फूल और फल होते हैं।
0: जी जी।
3: आप जानते हैं हमारी प्रयोगशाला है हमारे स्कूल के आसपास का क्षेत्र।
0: स्कूल के आसपास का क्षेत्र?
3: जी, कभी कभी हम सब घूमने निकलते हैं।
0: हम्म।
3: मैं बच्चों को दलों में बांट देती हूँ। एक दल रास्ते में दिखे पौधों के नाम लिखता है, एक दल पत्तियों के नमूने जमा करता है, और सबसे छोटे बच्चे रास्ते में दिखे पक्षियों को गिनते हैं।
0: बहुत अच्छे।
3: इस तरह सभी बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं। लौटकर हम बच्चों से बात करते हैं कि किस मौसम में कौन से पौधे होते हैं और कौन से पक्षी दिखाई देते हैं। इस तरह एक दिन में बच्चों ने पौधों और पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
0: अरे इंदु जी, आपने तो गणित, वनस्पति शास्त्र और मौसम चक्र सब एक साथ सिखा दिया बच्चों को।
3: और मैंने भी तो सीखा इनसे।
0: जी।
3: आपको मालूम है एक पक्षी है जिसके अंडे बहुत ही खूबसूरत हल्के नीले रंग के होते हैं।
0: हल्के नीले रंग के?
3: हाँ, मुझे ये बच्चों ने दिखाया।
0: अच्छा।
3: मैं जिस इलाके की हूँ ना, वहाँ ये पक्षी नहीं होता। और अब बच्चे एक लिस्ट बना रहे हैं।
0: काहे की लिस्ट?
3: कि किस महीने में कौन से पक्षी दिखते हैं इसकी। छोटे बच्चे पक्षियों के पंख जमा कर रहे हैं, और बड़े बच्चे बताते हैं कि वो किस पक्षी का पंख है। बस इस तरह से एक एल्बम बन रही है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है।
3: हाँ, कभी कभी बच्चे पक्षियों के बारे में कहानियां भी सुनाते हैं।
0: इंदु जी, आपका बहुत ही अच्छा ढंग है यूं खेल खेल में पढ़ाने का।
3: देखिए, बच्चों की पसंद अगर मालूम हो ना, तो बच्चों को खेल खेल में बहुत कुछ शिक्षा दी जा सकती है।
0: ये तो आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। दोस्तों, इंदु जी की कक्षा के बच्चे इन पाठों को शायद ही भूलेंगे। खुद करके सीखी चीजें हमेशा याद रहती हैं। शिक्षा का ये सहज आनंदपूर्ण ढंग बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति को सहारा देता है। अपने पाठों को जितना हो सके प्रयोगात्मक बनाएं। एक बात का ध्यान हमेशा ध्यान में रहे, बच्चों को उनके आयु वर्ग के अनुरूप ही काम सौंपें, और इस काम को चुनौतीपूर्ण बनाएं।

छह से आठ साल तक के बच्चों के लिए अलग-अलग पौधों की पत्तियों के आकार और फूलों के रंग ठीक-ठीक बता पाना चुनौती भरा है, तो आठ से दस साल तक के बच्चों की रुचि शायद पक्षियों के घोंसलों के नमूने जमा करने में और कौन से पक्षी कहां घोंसला बनाते हैं ये जानने में होगी। किसी चुनौती को पूरा करना बच्चे के आत्मसम्मान को बहुत पुष्ट बनाता है। एक काम सफलतापूर्वक करने पर बच्चे में अगले उससे और जटिल काम करने का आत्मविश्वास पैदा होता है। अच्छे और सफल अध्यापक इस गुण को हमेशा इस्तेमाल करते पाए गए हैं। अगर आपने गौर किया हो तो पता लगेगा कि ये लोग बच्चों को अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने में मदद करते हैं। वो बच्चों के अनुभवों को पाठ का आधार बनाते हैं और बच्चों की सक्रिय भागीदारी पाठ में बनाए रखते हैं। वो बच्चों को खुद करके सीखने और अपने अनुभव को बताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और यही है अच्छी शिक्षा विधि का गुण।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शिक्षक कुछ नए आयाम। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। तो अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
0: जगबंधु,
1: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। दोपहर के 12 बजे हैं और अब समय है फौजी भाइयों के कार्यक्रम सैनिकों के लिए का।

सैनिक भाइयों जय हिंद। हाजिर है फिल्म संगीत के इस सुहाने सफर के साथ और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ अनुराधा। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं लता मंगेशकर और हेमलता की आवाजों में गाए फिल्म महबूब की मेहंदी के इस प्यारे से गीत के साथ।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई।
0: ये तीनों जांच क्यों जरूरी है?
1: अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी।
0: बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।

एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में आइए सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत फिल्म चुपके चुपके से। चुपके चुपके से गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: सैनिक भाइयों कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए फिल्म सत्ते पे सत्ता का ये गीत, किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन और NHE की आवाजों में।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

सैनिक भाइयों, अभी आपने सुना फिल्म अजनबी का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं जहरीला इंसान फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मिंजरा।

खामोशी चुभी के आवाज़ होंदी, तन्हाई चुभी के याद होंदी। सखियां चाहे कितनी भी दूर क्यों न होन, असा का इस कार्यक्रम के माध्यम कने असा दी सिर्फ साड़िये सखियां कने ही गलबात होंदी। तो शुरुआत कर दे अज दे कार्यक्रम सुनो सखी दी, जिस अज असा गल कर दे मिंजरा कार्यक्रम दी। ते कने अज जिहड़ी असा दी गल होंदी अपनी सखियां कने सहम दी।

कयों न होन असा का इस कार्यक्रम के माध्यम कने असा दी सिर्फ साड़ी सखिये कने ही गलबात होंदी। तो शुरुआत कर दे आज दे कार्यक्रम सुनो सखी दी, जिस अज असा गल कर दे मिंजरा कार्यक्रम दी, ते कने अज जड़ी असा दी गल होंदी अपनी सखिये कने सह होंदी। बरखा होने की वजह कने सब कुछ जड़ा से पानी कने परोई जांदा। असा दे किसान भाई भैन वास्ते भी बरसात दा मौसम जड़ा से बड़ा खरा जड़ा से मन्या जांदा है, कने बड़ा खरा भी रहिंदा। फसलां जो पानी देने की जड़ी असें ज़्यादा जरूरत नहीं पौंदी। सही बरखा होने कने कने सही मैल अगर खेतरा च पुजे तो दिखा पैदावार जड़ी है उपज जड़ी है फसलों की सह भी खरी होंदी। तो जालू फसल खरी निकलती तो देसी की अर्थव्यवस्था जो तो फायदा होंदा ही है, पर हाँ किसान भाई भैन जो भी इसका जड़ा से बड़ा फायदा होंदा। जिथों बरसात का मौसम पर खुशियां लेकर आंदा सखियो, तो कन्ने कन्ने जड़ा से अजकल जिस साबे की बरखा हुआ करती है तो बरसात होने का पहले जड़ा से हाँ मने च जड़ा एक डर भी जाता कोई कि बरखा कई बार जी इतनी ज़्यादा हुआ करती कुछ कुछ इलाके च तो कई नुकसान जड़े सह भी हुआ करते हैं, है ना। ज़्यादा बरखा कन्ने दिखा बाढ़ होने का डर रहता, जल भराव मैदानी इलाके च अगर उन्होंने गल करते हैं तो पानी जड़ा से परोई जाता है ना, सड़कों का टुटने का डर रहता पहाड़ी इलाकों ला पाते, अगर अस चलो होन मनी लिया तो पत्थर वगैरह पाने का जड़ा से डर रहता कई बार, इस वजह कने भी जड़े से कई नुकसान हुआ करते हैं। तो फसलों का नुकसान भी जड़ा सा भी कई बार बड़ा ज़्यादा होंगे बड़ी बरखा होने की वजह कने, है ना। तो अजकल जड़ा से बरसाती सावधानी जी है जरूर बरतना चाहिए, चौं पासे जी असें सतर्कता बरती के जालू हाँ चलते हैं अगे बढ़ते हैं तो हाँ जी असें अपनी सेहती जो जी असें ठीक रखते, तो अपने अखे पखे अजकल जरा साफ सफाई का भी बड़ा ध्यान रखना जरा जरूरी है। तो यह तो गल की असा बरसात थोड़ी दी जी असें सावधानी बरतने की, क्योंकि बरसाती का मौसम जड़ा से थोड़ा अजकल हाँ दिखा दे थोड़ा बड़ा जरा डरावना हुआ करता है, पर अज असा जी अपनी सखियों कने गल करनी है बरसात के मौसम च अपनी रसोई घर जो आंकियां जड़े इनसे व्यवस्थित करके रखी सकते हैं। तो इसका पहले कि ऐसा अपने विषय पर तो कने जड़ी ऐसे गल्ला करन, है ना, तो पहले सुन लेंदे एक प्यारा दिया लोक गीत और विषय पर गल करनी ऐसा इस लोक गीत का बाद।

एक बारी फिर स्वागत है सभी श्रोता सखियां दा कार्यक्रम मिंजरां च। दिखा ऐसा सारे जानते हैं कि बरसात दा मौसम अपने कन्ने ठंडक हरियाली ते ताजगी लेकर जड़ा से आंदा, पर कन्ने कन्ने बरसाती अजकल जड़ी से दिखा नमी चिक्कड़ चैला सेलन फपूंदी कीड़े मकोड़े मक्खू मच्छर ये सब कुछ जड़ा सा भी दिखने जो बड़ा ज़्यादा जड़ा से मिलता है। इस खातर अपने घरे ते घरे का बाहर साफ सफाई रखना जड़ा से बड़ा जरूरी है। ते जड़ी ऐसा खाने पीने वाली चीज़ा लेकर आंदे हैं घरे अपने, तिना दा भी खराब होने दा जड़ा से अजकल बड़ा डर रहिंदा। ता अजकल हर चीज़ दी साफ सफाई रखना बड़ा जरूरी है। कोई भी चीज़ लेंदे उसको साफ करी करी ही डब्बे जड़ा से पाना चाहिए। कोई भी समान है उस पास अगर ऐसा मन नहीं लिया ध्यान नहीं देन कुछ वक्त तक या साफ करके नहीं रखन उसको, तो उस नमी की वजह कने फफूंदी लगना कने सड़ना घुण कीड़े पौना जड़े से शुरू हो जाते। तो अजकल बरसाती ज़्यादा जरूरत होंगी अपनी रसोई करे जो साफ सुथरा व्यवस्थित ते स्वच्छ रखने दी। कहे कि साफ सुथरी ते सुव्यवस्थित रसोई घर जड़ा है ना सिर्फ खाने पीने वाली चीज़ा सुरक्षित रहती बल्कि पूरे परिवार दे खरे स्वास्थ्य दी भी जड़ी असें रक्षा होंगी, यानी सेहत खरी रहती बीमारियां लगने खासा जड़े से बचे रहेंगे। तो अजकल असा सबना जो अपनी रसोई दी हर दिन जड़ी से अगर वक्त लगे तो जरूर सफाई जड़ी से करना चाहिए। गैस चूल्हे दी रसोई दी स्लैब दी है ना, और सिंक यानी चढ़े दी अलमारी होगी अगर रसोई घर च रखी है, डब्बे बर्तन भांडे सारे समान जो रोज़ थोड़ा थोड़ा जड़ा से साफ करना जरूरी है। तो फर्श जो भी सुखा रखना जड़ा से जरूरी है। गैस चूल्हे तो स्लैब जिस वहाँ साफ कर दे कपड़े कने जिस कपड़े कने जड़े से साफ कर दे उसको भी लंबे वक्त तक धोई करी जड़े से रसोई च अंदर ही नहीं रखना है। उसको क्या करना चाहिए कि धोई करी सर्फ या साबुन कने बाहर धुप्पा च जड़ा से पाना चाहिए। अगर असा धुप्पा च नहीं पाते तो इस कने क्या होंगे कि कपड़े च दुर्गंध आना शुरू हो जाती, बैक्टीरिया यानी कि कीटाणु पनपना जड़े इनसे शुरू हो जाते। रोज़ साबुन या सर्फ कन्ने धोई करी उस वहाँ बार धुप्पा च पान तो कपड़ा जड़ा सा भी साफ सुथरा।

0: रहा कि चलो हाँ स्लैब की सफाई कर दे या गैस चुल्हे की सफाई कर दे तो इस भी जड़े से गंदगी नहीं लगती, सह भी खरे तरीके कने साफ हो जाती, इस कने कपड़े का जड़ी सह भी बदबू भी नहीं आती। तो जड़ा भी राशन का सामान लेकर आते तो सह भी घट घट ही लेना चाहिए, क्योंकि नमी की वजह कने मसाले आटा चौल दाल बाकी होर भी खाने वाली जड़ी चीज़ है से खराब लग पाती होना। इस खातर जालू भी सामान लेकर आते रसोई घरे का तो साफ करके सुके तो साफ सुथरे डब्बे च भरी के रखना चाहिए, तो वक्त वक्त पर डब्बे तो होर सारा समान जड़े से तुम देखते भी रहना चाहिए, जियाँ कि मन लिया जियाँ तो लगे कि हल्का जहा गुण कीड़ा पठड़ी दुसे बार धुप्पा च खरे कन्ने दोबारा जड़े से तुम छट्टी बनाई करी दोबारा डब्बे च पा साफ करके रखना चाहिए। इस कन्ने क्या है कि समान की जी ज़्यादा बर्बादी नहीं होंगी। तो गल्लां सतवां कन्ने होर भी लानियां हैं पर फिर सुन लेंगे एक होर प्यारा दिया लोक गीत, पर लोक गीत का पहले संदेश।
1: सीमा सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
2: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है, फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
3: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
4: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
5: को तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
6: दिमाग चार्ज कर अपना।
7: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
6: देखा
5: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
7: अब क्या करोगे?
5: फ्री वाईफाई है ना?
6: बुद्धू सुधर जा।
7: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
5: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
7: RBI कहता है
8: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

एक बारी फिर स्वागत असदिया श्रोता सखियों का कार्यक्रम मिंजरें च। भैनों बरसाती अजकल लोइए तो ज़्यादा सामान लियाने की जी जरूरत नहीं होंगी, अगर दुकाना या बाजार जड़े हैं से कन्ने हैं तो जड़ी भी सब्जी या फल लेने होन एक या दो दिन वास्ते ही लियाना चाहिए। ताज़ा फल तो ताज़ी सब्जी बनाई करी खाना ही अजकल दे मौसम जड़ा से खरा रहिंदा। ते अजकल रोटी सब्जी भी दिखी सुनी करी ही थोड़ी ही यानी कि अपने परिवार दे सदस्य दे साबी कन्ने जड़ी से बनाना चाहिए। अगर हाँ क्या करते कि अगर कई बार मनी लिया ज़्यादा सब्जी बनाई लेंदे तो सो फ्रिज रख देंदे है ना, तो फ्रिज च रखी हुई चीज़ जड़ी से अहाँ की सेहती वास्ते खरी नहीं है, क्योंकि हाँ फ्रिज का निकाली करी बार बार सब्जी जो जड़े से गर्म कर दे तो इस कन्या सेहत जड़ी से खरी नहीं रहती। तो इस खातर मतलब कि ताज़ा बना कने ताज़ा खा बोलते हैं ना कि जदया खाना अन्न तदया हुंदा मन। हो सके तो कोशिश करना चाहिए कि कच्चे अनाज दी या पक्के अनाज दी किसी भी सामान दी जड़ी से बिल्कुल भी बर्बादी नहीं करना चाहिए। इस कन्या क्या होंगे कि एक तो खाने वाली चीज़ों की बर्बादी जड़ी से होंगी, दूजा अहते पैसों की बर्बादी भी होंगी। आटा चावल दाल चीनी मसाले है ना एयरटाइट डब्बे च पाई करी जड़े इनसे रखे होने तस्ता भी खराब होने का बचे रहेंगे अजकल। और जड़ा भी छोटा मोटा जिहा सामान तो खाने वास्ते लियांदे बिस्कुट नमकीन मेवे और भी कोई चीज़ जड़ी भी खाने वास्ते तो आंदे हैं तो इन समान जो भी नमी लगने का बचाई करी जड़ा से रखना चाहिए। नहीं तो क्या होंगे कि इन्हों का कुरकुरापन जड़ा से खत्म हो जाता, यानी कि कोई भी सामान है अजकल ज़्यादा थोक पर नहीं लियाना चाहिए। दिखी सुनी करी थोड़ा थोड़ा ले करी हुआ जल खत्म हो गया फिर होर ले हुआ कन्ने अगर ज़्यादा राशन लिया भी हो तो थोड़े थोड़े दिन का बाद जड़ा से दिन जो दिखना जरूर चाहिए। अगर हो सके तो धूप लगाने की जरूरत हो तो जरूर जड़ी से धूप लगाना चाहिए। सिन्ने बर्तना जो भी सुखाई कर रखना जरूरी होंगे तो बर्तन वाले रैक की सफाई करना भी बड़ा जरूरी है अजकल। नहीं तो कई बार कॉकरोच मक्खी मच्छर घूमना जड़ा से भांडे के अखा वखा शुरू हो जाते। इसके अलावा रसोई च पूरी हवा ते रोशनी आने का प्रबंध जड़ा सा भी होना चाहिए। कूड़ेदान का भी अजकल पूरा ध्यान रखना चाहिए। सुक्का सिन्ना कूड़ा जड़ा से अलग अलग करके रखना जरूरी है ते कूड़ेदान जो रोज़ धोई करी सुखाई करी दोबारा कूड़ा पाना है। इस कने क्या होंगे कि कूड़ेदान से बदबू नहीं होंगी, नहीं तो कूड़ेदान से कीड़े मच्छर छोटे छोटे मक्खू जड़े से पौना शुरू हो जाते। इस खातर रसोई जिथू असा खाना बनाते अपनी खाने पीने की हर एक चीज़ रखते बिल्कुल साफ सुथरी होना चाहिए। वक्ते वक्ते पर टाइलों की सफाई गैस पाइप का ध्यान रखना समय समय पर गैस पाइप जो बदलना इन सारी गल्लां का ध्यान रखना जड़ा से जरूरी है। रोटी सब्जी बनाने के बाद रेगुलेटर जड़ा से बंद करना जरूरी होंदा। स्वच्छ ते साफ सुथरी रसोई साढ़े परिवार जो कई बीमारियों का जड़ी सखी उसे बचाई कर रख दी। जालू साफ सुथरे वातावरण च रोटी बनती तो स खाना जड़ा से पौष्टिक ते सुरक्षित होंदा। इस खातर बरसाती हर जगह की सफाई का खास ध्यान रखना असा सारे की जड़ी से जिम्मेदारी बनती। तो अगे असा होर भी जड़ी से जानकारी सांझा करनी है अपनी सखियों कन्ने, पर चलते फिर लोक गीत पासे कन्ने सुन लें।

एक बारी फिर स्वागत है सदिया श्रोता सखियों का कार्यक्रम मिंजरां च दिखा सदा हिमाचल प्रदेश जड़ा है से अपनी प्राकृतिक सुंदरता ते कन्ने कन्ने समृद्ध खान पान वास्ते भी प्रसिद्ध है ते आंदे इत्थों पारंपरिक व्यंजना च मदरे दा जड़ा है से अपना एक खास तिस्ती एक जगह है। लुंगड़ू का मदरा पारंपरिक पहाड़ी व्यंजन है। इस तो विशेष मौके पर जड़ा कि जियाँ कि त्यौहारां च या ब्याह च भी जरूर असं बनांदे ने इत्थों। अगर लुंगड़ू का मौसम है तो लुंगड़ू का मदरा बनाने वास्ते पहले तो नरम नरम लुंगड़ू जड़े से अपने साबे कन्ने ले लेने हैं, फिर इन्हें जो साफ कर लेना है ना, दो तीन पानी कन्ने खरे कन्ने जड़े से धोई लेने, इस जड़े काले काले रोई दे हुंदे से सारे निकाल लेने, फिर कट्टी करी उबाले लेना, फिर एक कढ़ाई च देसी घी पाना, फिर उस दही पाई देना, छोटी इलायची दालचीनी लौंग जड़े भी तुहां च जड़े मसाले खरे लगदे से पाई देने, कन्ने तेज पत्ता लून हल्दी पाई करी जड़ा से पकना देना, धीमी आंच पर पकना देना इसको और कड़छी कन्ने जड़े इनसे चलांदे रहना हिलांदे रहना। जालू दही सूख जाएगा बिल्कुल घी निकली होगा तिस्ता तालू क्या करना तो उन्हें जड़े उबाली करी लूंगड़ू रखे सब पाई देना, थोड़ा देर पकाना गैस का उतारे लेना, इसो चौला कन्ने खाना जड़ा हो मनी लिया तो बड़ा स्वाद लगता। मौसमी सब्जियाँ जरूर खाना चाहिए, कन्ने लुंगड़ू दा मदरा जड़ा से स्वादिष्ट भी बनता है ते कन्ने कन्ने पौष्टिक भी बनता। इस खातर जालू इसका सीजन हो इधी इधी चीज़ा जड़ी इनसे जरूर बनाना चाहिए ते खाने दा जड़ा से आनंद लेना चाहिए। ये सिर्फ एक व्यंजन ही नहीं है सखियो, बल्कि असां दे इत्थों दी संस्कृति परंपरा ते अतिथि सत्कार दा प्रतीक भी है। असां जो जरूर अपने पारंपरिक व्यंजना जो बनाना चाहिए, इन्हों जो बनाने से बढ़ावा जड़ा से जरूर देना चाहिए, ताई असां दी आने वाली पीढ़ी जड़ी है से इन्हें सारी पारंपरिक खाने वाली चीज़ा का स्वाद ले सकती। तो हुण असां भी अगे बढ़ना ते स्वाद लेना एक होर प्यारा दे लोक गीत सुनने का।

इसी लोक गीत कन्नै अज्ज दे कार्यक्रम विच बस इतना ही। चलदे चलदे अपनी श्रोता भैणा जो दस दिंदे, तुसां तक कार्यक्रम जो पुजाने वास्ते तकनीकी सहयोग दित्या अंकित दिमान ने, ते इस कार्यक्रम दे प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। तो अपनी सखी माया जो कार्यक्रम जो संपन्न करने दी अनुमति दिया। प्यारी सखियो, राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिंजरा एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 1 बजने को है अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान सहित आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की 5वीं बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है।
2: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स,
3: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
2: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मुख्य धारा से कटा हुआ महसूस न करे। प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारम्भ करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात कर बढ़ाकर 14.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपए प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरों मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सुबह लगातार किए गए जोरदार धमाकों के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बेल्जियम के ब्रसल्स में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ SOCHM और अन्य क्षेत्रीय संघ के सदस्यों वाले भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय उद्योग के लिए सृजित होने वाले नए अवसरों पर चर्चा की गई। पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Defence Minister Rajnath Singh has said the government is ensuring that development and national security progress on the same path. He emphasized that the government's endeavor is to build an India where borders are secured and connected. Addressing the Border Road Organization Tech Symposium in New Delhi, Mr. Singh highlighted that advanced infrastructure has always been the hallmark of a developed civilization. He said the infrastructure being built today will define the country's civilization in the coming years. He said the government's aim is to ensure that no citizen living in any remote area feels cut off from the mainstream.
5: We understand that the stronger a country's infrastructure, the stronger its future will be. We have ensured that no citizen living in the most remote corner of the country feels disconnected from the mainstream. We have undertaken a mission to connect every village, every city, mountains, rivers, and remote regions across the country. We have pursued this vision because we believe that connectivity is an essential pillar of a nation's development.

0: 2-1 in the second semi-final at Atlanta Stadium in the USA to set up the title clash of the FIFA World Cup against Spain on Sunday night. And with that, we end this news bulletin.
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 1:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

ये कौन से अभिनेता हैं श्रोताओ जो पियानो पर नजर आते हैं? मुकेश की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे देवर फिल्म से। आनंद बख्शी के बोल थे रोशन की तरह से, और हमारे श्रोताओं ने जो पहले वाला गीत है उसे पहचाना है। मेरे महबूब फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर इबारत लिखी है आपने और हम अपने बचपन को याद कर रहे हैं जिसे हम बहुत दूर छोड़ आए हैं। अब तो बस यादें ही हैं। गाँव में जब गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी तो हम पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक खेलते, और जब मन करता तो गांव तालाब में डुबकी लगाते। बस यही काम रहता था उन दिनों। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज बचपन नादानियां और शरारतों पर आधारित गीत सुनवाए जाएंगे। एक और श्रोता ने लिखा है, चंदन सी चढ़ती उतरती धूप जीवन के उतार चढ़ाव सुख दुख धूप छांव की को परिभाषित करती है। चंदन शीतलता और महक का प्रतीक है जो हमें प्रेरणा देता है कि जीवन में चाहे सुख हो या फिर दुख, छांव हो या धूप, यदि आपने अपने मन को शांत और सुगंधित रखा जाए तो हर परिस्थिति में आनंद प्राप्त किया जा सकता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज का पैराग्राफ समय की भागदौड़ में व्यस्त युवा लड़कियों की जिंदगी को बयान करता है। जिंदगी की आपाधापी में कब बचपन और उसके बाद किशोरावस्था निकल जाती है पता ही नहीं चला। आज फ्लैशबैक में वो गुजरा हुआ समय याद आ रहा है। एक और श्रोता लिखते हैं, वक्त पीछे रह गया और हम आगे, ये वाक्यांश जीवन से जुड़े हैं, गहरे दार्शनिक पहलू को बयां कर रहा है। बीतते हुए वक्त के साथ बचपन जैसे जैसे पीछे छूटता है, इस पल में हम जो भी कर गुजरते हैं उसकी यादें पल पल हमारे साथ जुड़ती जाती हैं। बचपन के खेल, संग साथी और बेखुशगवार क्षण या कोई दुख वाले लम्हे सभी हमारी यादों के गलियारे में दर्ज हुआ करते हैं। और ऐसे समय में अगर हम

पीछे का समय थोड़ा सोचें तो सबसे अच्छा दोस्त कौन था? श्रोताओ, अगर आपको कोई दोस्त याद आता है जो आपके लिए, या घर का कोई भी व्यक्ति जो आपके लिए एक सीढ़ी की तरह था, जिसकी बातें सुनकर या जिसकी बातें मानकर आप अपनी मंजिल तक पहुंचे, तो ऐसी बातें भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। और क्या आपने सांप सीढ़ी का खेल खेला है? अभिनेता किन अभिनेत्री के बारे में सोच रहे हैं श्रोताओं, आपको बताना है।

हमारे कुछ श्रोता लिखते हैं कि अभिनेता सुनील दत्त सोच रहे हैं अभिनेत्री साधना के बारे में। जी हाँ, मेरा साया फिल्म से ये गीत था, राजा मेहदेले खां का लिखा, मदन मोहन का संगीत था, लता मंगेशकर की आवाज़। एक हमारे श्रोता ने लिखा है, मेरी नानी के वहाँ पत्थर से बनी काफ़ी चौड़ी सीढ़ियाँ थी, एक सीढ़ी घर के अंदर थी जो रसोई घर में खुलती थी। एक और श्रोता लिखते हैं, बचपन में सीढ़ियों की रेलिंग पर बैठ कर बहुत फिसलते थे। जी हाँ, लेकिन ये तो बड़ा ख़तरनाक भी था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो हमने ये भी देखा था कि झूला भी डाल देते थे। ये उसी तरह है, बिल्कुल खतरनाक होता है, तो ऐसा अगर आप करते हैं तो बिल्कुल ना करें। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि लिखते हैं कि सीधे ये जुल्फ अगर खुलकर बिखर जाए तो अच्छा, इन गीतों को याद किया है। एक और श्रोता ने लिखा है कि सीढ़ियां सिर्फ चढ़ने उतरने के लिए नहीं होती, न जाने कितने रूप हैं सीढ़ियों के। जब हम यादों की सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो बचपन से लेकर न जाने कितने यादों के झरोके खुल जाते हैं। चांद की सीढ़ी पर चढ़कर कभी आसमान को निहारो तो प्रकृति के नज़ारे में खो जाने को जी करता है। पक्षियों के कलरव और वृक्षों की हरियाली में मन रमने लगता है। ये सत्ता आनंदमयी और करुणामयी है। प्रकृति की सीढ़ी दिव्यता की सीढ़ी है जो हमारी चेतना में अंदर तक बसी है, बस जरूरत है इसे जानने की, समझने की, और जो धूल मन पर जमी है उसे हटाने की। एक और श्रोता ने लिखा है कि खूबसूरत इबारत स्मृतियों के उन अनमोल आंगन में ले जाती है जहां समय ठहर सा जाता है और जीवन अपनी सबसे निर्मल छवि में दिखाई देता है। सीढ़ियां यहां केवल ऊंचाई तक पहुंचने का साधन नहीं, बल्कि बचपन, अपनत्व, सपनों और आत्मीय रिश्तों की जीवंत पगडंडियां हैं। वर्तमान की भागदौड़ के बीच जब मन अपने पुराने घर की दहलीज पर लौटता है तो हर कोना, हर आहट और हर स्मृति फिर से रंगों से भर उठती है। जीवन की सबसे बड़ी संपदा वो क्षण है जो स्मृतियों में सदैव चंदन की सुगंध की तरह महकते रहते हैं। आपको ये सीढ़ी पहचाननी है कि ये जगह कौन सी है।

अगला गीत जो आप सुनेंगे श्रोताओं, उस फिल्म का नाम और संगीतकार आपको बताने हैं। अगर आपने फिल्म देखी है, जाना है, तो आप अदाकार और अदाकारा भी बता सकते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सांप सीढ़ी का खेल बचपन में बहुत खेला है, आज विश्व सर्प दिवस भी है। जी हाँ। और एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गीत तेरा घर ये मेरा घर, फूलों के रंग से, दिल की कलम से, वो चांद खिला वो तारे हंसे, तमाम गीत इन्होंने हमें सुझाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि कुतुब मीनार पर फिल्माया गया बेहतरीन गीत संगीत सचिन देव बर्मन जी का है। और भी कुछ आपको बताना है इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने लिखा भी है कि कुतुब मीनार की सीढ़ियां हैं। जी हाँ। और सीढ़ियों पर जो गीत फिल्माए गए हैं श्रोताओं, वो बड़े ही यूनिक हैं या बड़े खूबसूरत और बड़े अलग से नज़र आते हैं। ऐसे कौन कौन से गीत हैं जो आपको याद आते हैं तो आप बता सकते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि सांप सीढ़ी बहुत खेली है बचपन में, और जब सांप काट कर हमें नीचे पहुंचा देता तब सीढ़ियां ही हमें ऊपर ले जाती। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरी चार गीत की लिखी हुई इबारत में से दूसरा नंबर पर लिखा हुआ गीत भी शामिल, दिल का भंवर करे पुकार का राग सुनो, तो बहुत अच्छी बात है। एक और श्रोता ने लिखा है कि कुतुब मीनार की सीढ़ियां जो आजकल बंद कर दी गई हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरी गणित की अध्यापिका बहुत प्रेरणादायक बातें बताती थी। संगीता जी, गणित के अध्यापकों की तरह बिल्कुल सरल, मतलब जैसे होते हैं गणित के अध्यापक, इन्होंने कुछ अजीब सा शब्द लिखा है, तो बहुत सरल थी वो और हास्य भाव में पढ़ाती और समझाती थी। बहुत याद आती हैं आज भी। जी हाँ, ऐसी बहुत सारी यादें हैं जो स्कूल या कॉलेज में जब हम सीढ़ियों पर बैठा करते थे। और याद तो फिर आपको ये भी ज़रूर याद होगा कि किसी के आम को लेना है खेतों से, बाग से, तो एक की पीठ पर एक बैठकर भी सीढ़ी नुमा कुछ बना लिया करते थे और ऊपर पहुँच जाते थे, जिससे बड़े आराम से फल लिया जा सकता था। एक और श्रोता ने लिखा है, घर के भीतर खेले जाने वाला लोकप्रिय खेल सांप सीढ़ी बहुत खेले थे, अक्सर 90 वाला सांप, लंबा सांप, मेरी गोटी निकल जाता था। और एक और श्रोता लिखते हैं कि जब गांव में मिट्टी का कोठा वाला घर हुआ करता था तो उसमें बंसर की बनी सीढ़ियां होती थीं, पर उस पर चढ़ने में बहुत डर लगता था कि कोई एक आदमी पकड़ता था तब हम ऊपर चढ़ते थे। जी हाँ, वैसे अगर आप देखेंगे तो कश्मीर में भी लकड़ी की सीढ़ियां होती हैं, और कश्मीर की ही वादियों में फिल्माया गया एक गीत है जिसमें जॉय मुखर्जी ढोलक बजाते हुए धीरे धीरे से सीढ़ी पर चढ़ते हैं, सीढ़ी के पास रहते हैं और साधना भी नज़र आती है। ये गीत क्या आपको याद आता है तो आप हमें जरूर बताएं। एक और श्रोता ने लिखा है कि बहुत खेला है सांप सीढ़ी और लूडो भी, आजकल तो मोबाइल पर उपलब्ध है, लेकिन वो पुट्ठे का गेम और गोटियां, उनकी तो बात अलग ही थी। तो कुछ एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारी दादी जो घर में सबसे बूढ़ी थी, हमें तब नहीं पता था कि उनके लिए सीढ़ियां चढ़ना असंभव है। हम

जब भी उनसे छत पर चलने की जिद करते तो वो पहले तो समझाती थी, फिर टाल जाती थी। घर में बाकी सब उनकी हाँ में हाँ मिलाते, तब हम उनसे गुस्सा हो जाते। वैसे सीढ़ियाँ चढ़कर जाना, छत पे चांद देखना, और एक विशेष त्योहार भी है इससे जुड़ा हुआ, क्या आपको याद आता है तो आप जरूर लिखें।

सी अर्जुन की तर्ज थी। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, पुनर्मिलन फिल्म का ये गीत था। अमिता और जगदीप पर फिल्माया गया ये गीत था। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में इंदिवर की रचना थी। और अगले गीत की डिटेल आपको बतानी है श्रोताओं, फिल्म का नाम बताना है और गायक कलाकार के नाम आपको बतानी है। एक श्रोता ने लिखा है कि सीढ़ी से मुझे अपने मामा के यहाँ का घर याद आ गया, जहाँ हम बच्चे छुट्टियों में जाते थे और सुबह उठकर सब लोग सीढ़ियों पर लाइन से बैठ जाते थे, फिर वहीं बैठकर नाश्ता करते थे। जी हाँ, और इसी वजह से कि बच्चे तो सीढ़ियों पर ही खेलेंगे, उसकी साफ सफाई भी बहुत ही तरीके से की जाती थी। एक और श्रोता ने लिखा है कि पहले मकान बनाते समय पुराने लोग सीढ़ियां बनाने में पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, जिससे फिसलन नहीं होती थी, पर आजकल सीढ़ियां बनाते समय मार्बल पत्थर और टाइल्सों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे फिसलने का खतरा ज्यादा होता है। जी हाँ, ये तो बहुत ही खास बात है श्रोताओं। तो सीढ़ियों पर जब चलना होता है तो बड़ा संभल कर चलना होता है, और इसी वजह से जो पुराने घरों में सीढ़ियां बनाई जाती थी वो जरा रफ होती थी, उनकी सुंदरता चाहे उतनी ना होती हो लेकिन उनमें गिरने का खतरा मतलब सेहत से जुड़ा खतरा कम हुआ करता था। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आज भी जब फुर्सत के पल मिलते हैं, कुछ पल मिलते हैं, मैं चाय का प्याला लिए सीढ़ियों पर बैठ जाती हूँ। बस यूं ही बाहर के खूबसूरत नजारे, चारों ओर फैली हरियाली और बरसते बादलों को देखते हुए सुकून समेटने। एक और श्रोता ने लिखा है कि मेरी नानी के घर में आंगन की दीवार से लगी सीढ़ी थी और दीवार के पार नीम का वृक्ष था, जिस पर बहुत से पक्षी रहते थे। हम बस उसी सीढ़ी पर बैठकर उनको देखा करते थे, उनका कलरव सुनकर बहुत अच्छा लगता था। आपने क्या कुछ चुरा कर सीढ़ियों में चुपके चुपके खाया है, आप बता सकते हैं।

राज कपूर और रूतन पर फिल्म आया गया, ये गीत आप सुन रहे थे दिल ही तो है फिल्म से। और आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी, रोशन का संगीत था, साहिल ध्यानवी के बोल थे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत एक छोटी सी कहानी के रूप में एक बेहद खूबसूरत और भावुक दृश्य काफ्य है। ये रचना बचपन, मासूमियत और वक्त के गुजरने के एहसास का एक मुकम्मल दस्तावेज है। यहाँ सीढ़ी को महज एक ढांचा नहीं बल्कि जीवन के सफर का एक जीवंत प्रतीक बना दिया है। ये रचना एक ऐसी जादुई छड़ी है जो वक्त के पहिए को पीछे घुमा देती है। इसमें जहां एक तरफ बड़े होने का अकेलापन है, वहीं दूसरी तरफ बचपन की यादों की वो गर्माहट जो इंसान को फिर से जीने की ताकत देती है। जी हाँ, क्योंकि आजकल जब हम लौटते हैं अपने घरों की तरफ तो ये देखते हैं कि वो सीढ़ियाँ जिन पर कितना मतलब एक कह सकते हैं कि शोर सा रहता था, वो सीढ़ियाँ कैसी शांत पड़ी हुई हैं। और कई कई जगह तो ऐसा भी है कि ये सीढ़ियाँ टूट चुकी हैं। एक हमने आपसे सवाल पूछा था श्रोताओ, जॉय मुखर्जी के हाथ में ढोलक है और वो

लकड़ी की सीढ़ी के तरफ होते हैं, तो ये गीत अगर आपको याद आ रहा है तो आप ज़रूर बताएं। और सीढ़ियों पर फिल्माया गया कौन सा गीत आपको बहुत सुंदर लगता है? और एग्ज़ाम की पढ़ाई जब आप करते थे तो क्या आपने सीढ़ियों पर पढ़ाई की है, या फिर कॉलेज की जो यादें हैं वो आप साझा कर सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि कल्पनाओं की एक परी उतरेगी और फिर वो बचपन से जवानी तक ले जाएगी, इन दिनों उसकी मस्ती में हम कैसे कैसे पड़ाव पार करते आगे बढ़ते रहे, जीवन के विभिन्न आयाम में गुजरती ये शामें ये रातें कैसे कैसे लोगों से मिलाते रहे, ऐसी कुछ बातें होंगी दोपहर के सुरीले सफ़र में सुनते हैं। तो जी हाँ, ऐसी ये बातें हैं और आप अपनी बातें साझा भी कर सकते हैं। अगले गीत में आपको बताना है कि ये जो सीढ़ी पर अभिनेत्री नज़र आ रही हैं ये कौन है।

अनोखी रात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। परीक्षित साहनी पर फिल्माया गया और सीडी पर जाहिदा नजर आती हैं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि यादों की सीढ़ियां कभी पुरानी नहीं होती। आज की इबारत बचपन अपने घर मासूम शरारतों और बीते सुनहरे लम्हों की ऐसी सैर कराती है जहां वक्त ठहर सा जाता है और मन फिर से उन्हीं रंगों में खो जाता है जिनसे जिंदगी की खूबसूरत तस्वीर बनती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत देखकर पढ़कर हम अपने बचपन के दिन हमें याद आए हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरे ख्याल से जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम और भंवरा बड़ा नादान रे, ये सब गीत इन्होंने सुझाए हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि पूरी इबादत में बचपन और शरारतें, घर आंगन सीढ़ियां हवेली छत झूला आम चुराना पंचगट्टे का खेल। जी हाँ, पंचगट्टे का खेल, ये खेल क्या आप समझ रहे हैं?

समझ रहे हैं तो हमें ज़रूर लिखें। वैसे आपकी सहूलियत के लिए बता देते हैं कि जो सीमेंट की बनी गिट्टियाँ होती हैं श्रोताओं, उनसे ये खेल खेला जाता है। तो क्या आपने खेला है हमें आप बता सकते हैं। चांदनी रातें लिखती हैं आगे, चांदनी रातें और समय के पीछे छूट जाने का एहसास बहुत खूबसूरती से उभर कर आता है। ऐसा लगता है मानो कोई व्यक्ति अपने बचपन के घर की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते यादों की दुनिया में लौट गया हो। तो इस गीत को पहचानिए आप और बताइए कि इस बार सीढ़ी पर कौन है।

फिरोज खान और पद्मिनी पर फिल्माया गया ये गीत था फिल्म औरत से, और इस गीत की डिटेल हमारे कुछ एक श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है, और जिन श्रोताओं ने नहीं लिखा वो ज़रूर हमें लिखकर भेजें। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में लकड़ी की सीढ़ियों से हम सब भाई जो हैं वो बैठकर फिसला करते थे, आज वो दिन बहुत याद आ रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैं बताना चाहूँगा कि जब हमारे बच्चे बहुत छोटे थे, हमारे पुराने घर की सीढ़ियाँ ऊपर मंजिल तक ऊंचाई तक थीं, बच्चे गिरे नहीं इसलिए सीढ़ियों के कोने पर लोहे की छोटी गेट बनवा के लगवाई थी ताकि बच्चे ऊपर जाएं तो गिरे नहीं। जी हाँ, सावधानी तो बहुत सीढ़ियों में बरतनी पड़ती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जीवन सांप सीढ़ी के खेल की तरह है, जिसमें कुछ अवसर सीढ़ी का काम करते हैं और इसी के समानांतर कुछ घटनाएं सांप का काम करती हैं, इस तरह जिंदगी बसर होती चली जाती है। फिर है सुंदर सी सीढ़ी, और फिर है ये कौन सी सुंदर सी अभिनेत्री।

मुकेश की आवाज में सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत आपने सुना। मनीष और नूतन पर फिल्माया गया। एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में घर में बिना बताए हम और हमारे चचेरे भाई बहनों की टोली के सारे भाई मिलकर आम के पेड़ पर चढ़कर निचली डाल को जोर से हिलाते थे और हम सारी बहनें नीचे चादर बिछाकर कच्ची अमियां उसमें भर लेते थे। दांतों का बुरा हाल हो जाता था, कई दिनों तक दांत चमक जाते थे, फिर अपनी चोरी पकड़ ली जाती थी। एक और श्रोता ने लिखा है कि हमारे घर के पास सीढ़ियां हैं और बचपन में हम इन सीढ़ियों से उतर कर पानी लाते थे और मैं सबसे पहले पानी लेकर पहुंचती थी और हमेशा प्रथम आती थी। होड़ में अभी वो सीढ़ियां वही हैं, लेकिन जब मायके जाना होता है तो बचपन याद आता है। एक हमारी श्रोता हैं जिन्होंने एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म के गीत को पहचाना है, लेकिन लिखती हैं कि गीत तो याद नहीं आ रहा है। जी हाँ, ये गीत था, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। एक और श्रोता लिखते हैं कि पूरी जगन्नाथ मंदिर में 22 सीढ़ियां हैं, इन्हें पार करके ही प्रभु का दर्शन करते हैं। सभी की मनोकामना होती है, हे प्रभु 22 सीढ़ी पार करा देना। आज रथ यात्रा में भी भगवान 22 सीढ़ी उत्तर लोगों को दर्शन देने बाहर आए हैं। जय जगन्नाथ स्वामी।

श्रोताओं, कॉलेज की सीढ़ियों का जिक्र आप कर सकते हैं। तालाब और नदियों के किनारे क्या आप घूमने गए हैं जहां खूब सारी सीढ़ियां होती हैं, उसका भी जिक्र आप कर सकते हैं।

आप सुन रहे थे फिल्म राजकुमार का ये गीत साधना और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया। एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि लखनऊ की भूल भुलैया की सीढ़ी जहाँ किधर से भी चलो तो मिल जाएंगी सीढ़ियाँ, पर सच में भूल भुलैया है। एक और श्रोता ने लिखा है कि चोरी चोरी खाने का मज़ा ही अलग है, अमरूद खाना नहीं भूलता हूँ। एक और श्रोता ने लिखा है कि सबसे अधिक सीढ़ियों के बारे में कहीं स्विट्ज़रलैंड के बारे में इन्होंने लिखा है, नसेन पहाड़ पर हैं ये सीढ़ियाँ। और एक और श्रोता ने एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का जो गीत था उसे पहचाना है। और एक और श्रोता लिखती हैं कि स्कूल पढ़ने के दौरान स्कूल कैंपस के पास ही बनी दुकान की सीढ़ियों में बैठकर खाना खाते थे। कॉलेज पढ़ने के दौरान कॉलेज की कैंटीन के पास ही एक मंदिर था जिसकी सीढ़ियों पर बैठकर कोफ्ते समोसे और कचौरी खाए हैं खूब। जी हाँ, कई सारी दुकानें भी तो होती हैं वहाँ। आप अभिनेता और अभिनेत्री पहचाने?

शहनाई फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, रवि का संगीत था, राजश्री और विश्वजीत पर फिल्माया गया ये गीत था। इस गीत की डिटेल भी हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। आपके सभी कमेंट्स, सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।

मित्रों, जीवन में सच बोलना या सत्य के मार्ग पर चलना जितना कठिन है, झूठ उतना ही आसान। झूठ बोलना, थोड़ी थोड़ी बात पर झूठ का सहारा लेना और झूठ के सहारे एक और झूठ, फिर एक और झूठ, यानी झूठी बातें बनाना हम आसानी से सीख लेते हैं। लेकिन सच कहना, सत्य बोलना और इस मार्ग पर चलना कुछ दरिया के बहाव को विपरीत दिशा देने जैसा ही है। सच की राह पर चलना मुश्किल तो ज़रूर है, लेकिन कोशिश करने से, जहन में ये बात रखने से कि हमें सत्य बोलना है, ये राह आसान हो जाती है। हाँ, इस आदत को बनाने में थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है।

सत्य हमेशा कटु लगता है, कड़वा लगता है, लेकिन सत्य वचन हमारे जीवन की गति में सहायक होते हैं। जहां हम न चाहते हुए भी झूठ का सहारा लेते हैं और अपनी मर्जी से नहीं बल्कि समय का हवाला देते हुए झूठ बोलते हैं, तो कई बार इसके गंभीर परिणामों से भी हम अनभिज्ञ होते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसी आदतों से हम छुटकारा पा नहीं सकते, बस कोशिश करने की जरूरत है। सच बोलने की आदत न सिर्फ आपकी निष्ठा को अडिग बनाए रखती है बल्कि आपके व्यक्तित्व को एक प्रभावशाली दिशा भी दे सकती है।

सच्चाई और अच्छाई का अनुसरण करना हमारे जीवन को आसान बनाता है। कभी कभी परिणाम के डर से भी हम सत्य बोलने से कतराते हैं, जो आगे चलकर झूठ बोलने की आदत में बदल जाता है। सत्य वचन हमारे जीवन की ढाल की तरह होते हैं, पीछे छूट जाते हैं सभी अवसाद। सत्य का प्रकाश हमारे जीवन में उजली किरण की तरह बिखर जाता है और जीवन में एक नया रंग भर देता है।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा पांचवी या छठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की पांचवें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान्यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
6: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स,
7: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
6: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
5: श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनके संयुक्त GDP लगभग 50 खरब अमेरिकी डॉलर है।
6: There is an urgent need for us.
7: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1.7 अरब लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
5: श्री डोभाल ने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में

0: ने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना।
1: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंगला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण है।
0: शक्ति चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसे खड़े होने के लिए एक ठोस जमीन चाहिए ही। और बीआरओ हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयरफील्ड्स भी बनाता है, यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा। और इसका सीधा अर्थ यह है कि बीआरओ के कामों का रिलेवेंस भी आने वाले युग में लंबे समय तक बना रहने वाला है।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मा ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवी या छठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे नवीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वृद्ध या असाध्य रोग से ग्रसित कैदियों की शीघ्र या समय से पहले रिहाई के लिए व्यापक नीति बनाने और लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने देश भर में ऐसे मामलों पर विचार के लिए एक समान तंत्र सुनिश्चित करने के संबंध में नीति को 3 महीने के भीतर अधिसूचित करने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अधिकारियों को कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की दैनिक निगरानी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन अनमोल है। श्री वांगचुक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अनमोल है और वांगचुक की नियमित चिकित्सा जाँच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। भारत में पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की शुरुआत कल से होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर इसे रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है जो हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करती है। एक रिपोर्ट।
2: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने से रेलवे अब स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल सफर की ओर एक नई शुरुआत कर रहा है। इसमें 3,200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। इस ट्रेन में 10 डिब्बे हैं जिससे यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। यह ट्रेन जींद सोनीपत रेल खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा होगी और देश को स्वच्छ परिवहन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका की सूची में शामिल हो जाएगा जो रेलवे में साफ और हरित तकनीक के लिए हाइड्रोजन का उपयोग कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। वे चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास

0: योजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि बैठक में आगामी मानसून सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के रुख पर चर्चा हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए किसानों के बीच एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों के सामूहिक परिश्रम से असाधारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान से किसानों को वास्तविक समय में लाभ मिलना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि देश ने 376 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एक समृद्ध जैव अर्थव्यवस्था देश की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, वैक्सीन विकास को बढ़ावा देगी, उच्च कुशल रोजगार पैदा करेगी और वोकल फॉर लोकल पहल को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में 2035 तक भारत को एक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था महाशक्ति के रूप में बनाना शीर्षक वाली कार्ययोजना को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि 21वीं सदी जैव प्रौद्योगिकी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए आज विस्तृत अनुष्ठान और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह से ही पुरी में हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डांडा पर पवित्र अनुष्ठानों के साक्षी बन रहे हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मौसी के घर श्री गुंडिचा मंदिर की ओर तीनों रथों को खींचे जाने से पहले गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव द्वारा औपचारिक छेरा पहरा रथों की सफाई की रस्म की जाएगी। उत्सव के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंग्रेजी दैनिक में लिखे गए लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लेख भगवान जगन्नाथ के प्रति राष्ट्रपति की आजीवन भक्ति को दर्शाता है, जिसमें उनके बचपन की प्यारी यादों से लेकर उनके जीवन को आकार देने वाले गहन आध्यात्मिक अनुभवों की यात्रा का वर्णन किया गया है। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपए प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 29 अंक बढ़कर 77,214 पर और निफ्टी 18 अंक बढ़कर 24,060 पर पहुंच गया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
2: पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को मात्र 35 मिनट में लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। वहीं फुटबॉल में फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में

0: इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा 5वीं या 6ठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की 5वीं नंबर की खिलाड़ी चीन की हान्यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

फिल्म नवरंग का दो गाना आपने सुना महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में। भरत व्यास के बोल थे, सी रामचंद्र का संगीत था। विविध भारती का ये कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

0: वो भी नहीं कि बनाई तर्ज पर इसे गया मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। मजरू सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी, फिल्म थी फिर वही दिल लाया हूँ।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीज़ों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: गंगा की लहरें फिल्म का दो गाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल सुरों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला चित्रगुप्त ने।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई गांवों में खिली गलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

जहां आरा फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले के युगल सुरों में, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं मदन मोहन की तर्ज है श्रोताओ। यही है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। आप सुनिए ये गीत, रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 3 बजने को ही कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। उन्होंने कहा कि आज की अवसंरचना आने वाले वर्षों में देश की सभ्यता को परिभाषित करेगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मुख्य धारा से कटा हुआ महसूस न करे।
1: हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। और साथियों, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना।
0: केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए किसानों के बीच एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस पर उन्होंने वैज्ञानिकों से किसानों की जरूरतों पर आधारित अनुसंधान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि देश ने 376 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है और पिछले वर्ष 44 फसलों के साथ 386 नई फसल की किस्में और 117 बागवानी किस्में विकसित की गई हैं।
2: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: राज्य सरकार ने वर्षों से सरकारी भूमि पर बने मकानों और अन्य निर्माण ढांचों के लिए मुआवजा देने का निर्णय लिया है। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार से प्रभावित परिवारों को इस फैसले के तहत करीब 68 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में वितरित किए जाएंगे। इससे सरकारी जमीन पर रह रहे 100 से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि निजी भूमि का मुआवजा प्रभावितों को पहले ही दिया जा चुका है, जबकि अब सरकार ने सरकारी भूमि पर बने मकानों और अन्य ढांचों के लिए भी राहत देने की मंजूरी प्रदान कर दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये मुआवजा केवल भवन व निर्माण कार्य का होगा, सरकारी भूमि का नहीं। उपायुक्त ने बताया कि प्रभावित परिवारों को मुआवजा केस टू केस आधार पर दिया जाएगा।
3: हमारे एयरपोर्ट के लैंड एक्विजिशन का कार्य लगभग पूर्णता की तरफ है और उसी में जो हमारे कुछ इश्यूज पेंडिंग थे उसमें से एक इश्यू ये भी था कि जो वहाँ पर सरकारी जमीन है वहाँ पर काफी समय से कुछ लोग घर बनाकर रह रहे थे, तो सरकार ने एक कल्याणकारी सोच के साथ ये निर्णय लिया कि उन लोगों को मदद करें ताकि वो वहाँ से अपने आप को रिलोकेट कर पाए। ऐसे कुछ 100 प्लस ऐसे परिवार हैं जिनको सरकार ने मदद देने का निश्चय किया है और जो अप्रूवल है वो आपकी है और उन सभी परिवारों

0: राशि जो है वितरित कर दें, जिसका जितना स्ट्रक्चर है, जितना वहां पर मौजूदा उसको मदद की आवश्यकता उसी हिसाब।
1: सोलन जिला में स्क्रब टाइफस के 3 मामलों की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। विभाग ने सभी खंड चिकित्सा अधिकारियों सहित पंचायतों को बीमारी की रोकथाम और बचाव संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय पाठक ने बताया कि जिले में स्क्रब टाइफस के 3 मामले सामने आने पर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है।
2: स्क्रब टाइफस हुई बरसात के बाद, जैसे ही घास का काम शुरू होगा, खेतों का काम शुरू होगा, तो टाइफस आना शुरू हो जाता है। कुछ जगह से इक्का दुक्का मामले आने शुरू हो गए हैं स्क्रब टाइफस के। मेरा ख्याल 2 या 3 पेशेंट्स कुल मिला के पूरे जिले में अभी तक आए हैं। कि अगर आप खेतों में जाते हैं तो खेतों में पूरी बाजू के कपड़े पहन के जाएं, पहली बात। घासनी में जाके काम करते हुए अगर आप थक जाते हैं तो कृपया वहां ना लेटें, क्योंकि वहां लेटने से आपके शरीर के ऊपर स्क्रब टाइफस के कीटाणु आने के चांसेस, टिक्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप उसको लेकर घर आओगे, और जब खेतों से घर आते हैं तो अपने कपड़े भी बदलें और अपने आप नहाएं भी, और जाना भी जब है खेतों में तो पूरी बाजू के कपड़े पहन के ही जाएं।
1: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। जिले की चिट्ठी के अंतर्गत आज सुनिए कुल्लू जिला की चिट्ठी। लेखक हैं आशीष कुमार और वाचक स्वर है राजकुमारी चंदेल का। कुल्लू जिला के जलोड़ी जोत में इको टूरिज्म गतिविधियों को सुदृढ़ करने और विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश वन विभाग के तत्वावधान में बीते दिनों अधिकारियों और हितधारकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जलापूर्ति योजना, पार्किंग व्यवस्था, पर्यटन सूचना केंद्र की स्थापना, प्लास्टिक व अन्य कचरे के प्रबंधन तथा इको टूरिज्म गतिविधियों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही जलोड़ी जोत में अवैध रूप से लगाए गए फूड वैन और रेहड़ी फड़ी हटाने तथा सड़क किनारे घोषित नो पार्किंग क्षेत्र को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी चर्चा हुई। रघुपुर किले के विकास से जुड़े प्रस्तावों पर विचार करते हुए बेस कैंप में फूड पॉइंट, पर्यटक सूचना केंद्र और ई टॉयलेट जैसी सुविधाएं विकसित करने तथा अवैध शेड हटाने की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अलावा पार्किंग, रेन शेल्टर, औषधीय व सुगंधित पौधों की डेमोन्स्ट्रेटिव नर्सरी विकसित करने और पर्यटन गतिविधियों को व्यवस्थित करने पर भी मंथन हुआ। बैठक में संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए कि जलोड़ी जोत क्षेत्र में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि इको टूरिज्म का सतत, व्यवस्थित और पर्यावरण अनुकूल विकास सुनिश्चित किया जा सके। निर्जला एकादशी के दिन जल विहार का उत्सव कुल्लू में बड़ी श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया। भगवान श्री रघुनाथ जी को मंदिर से बाहर लाया गया और पानी के कुंड में स्नान कराया गया, जिसे जल क्रीड़ा भी कहा जाता है। इस दिन से तीर तपने शुरू हो जाते हैं और इसे मृग सनाई भी कहा जाता है। भगवान रघुनाथ जी साल में सिर्फ 5 बार मंदिर से बाहर जाते हैं, जिनमें से एक दिन निर्जला एकादशी का है। इसके अतिरिक्त रघुनाथ जी सिर्फ दशहरे के दिन, होलिका दहन, बसंत पंचमी व वन विहार को ही मंदिर से बाहर जाते हैं। भगवान रघुनाथ जी के छड़ेबरदार महेश्वर सिंह ने बताया कि भगवान रघुनाथ जी को चंदन का लेप लगाकर पानी के तालाब में स्नान कराया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति के बीच माहौल भक्तिमय बना रहा। कठिनतम यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव यात्रा पर इस बार फिसलन युक्त रास्ते तथा कई अन्य चुनौतियों के चलते नहीं हो पाई। विशेषज्ञों ने इस बार भीम डवारी से पार्वती बाग मार्ग को असुरक्षित बताया। बीते दिनों श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट की बैठक ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं उपायुक्त कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड के अध्यक्ष व ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य बुद्धि सिंह ठाकुर सहित ट्रस्ट के सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। जिला रेडक्रॉस सोसाइटी कुल्लू द्वारा दिव्यांगजनों व वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन निर्मंड स्थित डे केयर सेंटर में किया गया। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन के अध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी की जिला शाखा कुल्लू मानवता, सेवा और सामाजिक सहयोग के सिद्धांतों पर कार्य करते हुए जिले के जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस बिना किसी भेदभाव के संकटग्रस्त, असहाय व जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए निरंतर

0: कार्य कर रही है। कार्यक्रम के दौरान रेडक्रॉस सोसाइटी के समन्वयक चंद्रकेश शर्मा ने बताया कि शिविर में लगभग 80 लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस कुल्लू समय समय पर रक्तदान शिविरों का आयोजन कर अस्पतालों में रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं, सड़क दुर्घटनाओं तथा अन्य आपात परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री, आवश्यक वस्तुएं और आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद कंगना रनौत बीते सप्ताह कुल्लू दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने कुल्लू जिले के ग्राम चंसारी में NHPC लिमिटेड के सहयोग से मैट्रिक्स सोसाइटी फॉर सोशल सर्विसेज द्वारा संचालित मोबाइल मेडिकल वैन आधारित प्राथमिक व निवारक स्वास्थ्य सेवाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और ये पहल उसी संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सांसद कंगना रनौत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। इसी के साथ कुल्लू जिला की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के शिमला के हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। 3:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: हमारे जितने भी सुनने वाले हैं उनकी नींद जरूर उड़ गई होगी और अब वो हमें कमेंट्स भेजेंगे,
1: पूरे ध्यान से प्रोग्राम को सुनेंगे
0: जी, और जो हमारे विषय हैं उन पर संदेश भी लिखकर भेजेंगे, अपने विचार भी हमारे साथ साझा करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं मनोरंजन के जो बदलते स्वरूप हैं उन्हें लेकर, और बात जब मनोरंजन की होती है आरती, तो ये केवल समय बिताने का कोई साधन नहीं है बल्कि मानसिक तनाव को दूर करके ताजगी भरने वाला भी होता है और रचनात्मक और जीवन को संतुलन बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। बदलते समय के साथ मनोरंजन के साधन भी बदले हैं और इस बात से हमारे श्रोता भी वाकिफ होंगे।
1: बिल्कुल।
0: और अतीत की तुलना वर्तमान से करें तो मनोरंजन की दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन हम देख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और पुराने समय का जो मनोरंजन था वो सामूहिकता, अपनापन और संस्कृति से अपनी जुड़ा हुआ था।
0: हाँ।
1: गांव की चौपालों पर किस्से कहानियां सुनाई जाती थीं, लोकगीत और लोक नृत्य लोगों को एक सूत्र में बांध लेते थे। रामलीला, नौटंकी, कठपुतली का खेल, मेले, पारिवारिक खेल जो यानी सब परिवार पूरा मिलकर खेलते हैं हम लोग सब, और दादी नानी की कहानियां और रेडियो के कार्यक्रम जो थे वो उस समय के मनोरंजन के मुख्य माने जाते थे साधन।
0: और पहले के ज़माने की अगर बात हो रही है तो जैसे आजकल बहुत सारे बोर्ड के गेम भी मिलते हैं और या पासे होते हैं उसमें, तो वो हम खुद ही किसी कोयले से या चौक से ज़मीन पर उसको काढ़ लिया करते थे और कुछ पत्थर वत्थर रख के बस पासे बनाकर उनसे खेला करते थे। तो इन चीज़ों में भी युग के साथ में बदलाव हुआ, फिर ये बोर्ड पर आने लगे बाज़ार में, और अब ये चीज़ें कई बार हमें डिजिटल यानी कि हमारे मोबाइल या लैपटॉप पर टैब पर भी हम खेलते हैं।
1: अभी भी गाँव में देखिए तो छोटी छोटी जो बच्चियाँ हैं वो गुटके खेलती हुई दिखाई दे जाएंगी, वो बहुत अच्छे लगता है वो, और जो ज़मीन पर बनाते हैं पहले उससे चौक से और एक दो तीन चार करके
0: और वो लंगड़ी से चलते हुए खेलते हैं, कहीं दो पैर टिकाने हैं कहीं एक पैर टिकाना होता है,
1: इस तरह के खेल तो अभी भी बच्चे खेलते हैं, इसमें तो कोई वो नहीं। लेकिन हाँ, ये जो खेल थे ये पूरी तरह से हमें पूरे शरीर को भी एक्टिव रखते थे और दिमाग को भी एक्टिव रखते
0: और बिल्कुल इन माध्यमों में सिर्फ आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, बल्कि संस्कार है, लोक ज्ञान है, सामाजिक मेल मिलाप, ये सभी चीजें आरती में समाहित होता था और मनोरंजन लोगों का एक दूसरे को और पास ले आता था। वहीं वर्तमान समय में मनोरंजन ने तकनीक का हाथ थाम लिया, जैसा हम बात कर ही रहे हैं, डिजिटल युग में मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, वेब सीरीज, वीडियो गेम, पॉडकास्ट, OTT, ये इतनी सारी चीज़ें हैं, इन्होंने हमारी दुनिया को

0: पूरी तरह से बदल के रख दिया है।
1: बिल्कुल। और आज का मनोरंजन हमारी उंगलियों की पहुंच में है, सबसे बड़ी बात।
0: हाँ,
1: एक क्लिक पर दुनिया भर की फिल्में, संगीत, पुस्तकें और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम उपलब्ध हैं।
0: हाँ,
1: और इस बदलाव ने मनोरंजन को और अधिक सुलभ बना दिया है, विविध और व्यक्तिगत भी बना दिया है। अब हर आयु वर्ग अपनी रुचि के अनुसार सामग्री को चुन सकता है। यही कारण है कि मनोरंजन आज केवल आनंद का माध्यम नहीं है, बल्कि शिक्षा, जागरूकता और व्यक्तित्व विकास का भी सशक्त साधन बन गया है।
0: हम बातें और करेंगे और हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं इस बारे में वो भी पढ़ेंगे, पर गीत सुनते चलें।
1: बिल्कुल।

0: आरती, ये जो इस तरह के गीत है ना, ये भी दिल चुरा लेते हैं। और हम बात कर रहे हैं कि बदलता जो स्वरूप है मनोरंजन का, तो देखो ना, हमने गीत सुना ये कितने गुजरे जमाने का था, लेकिन ये आज भी मीठा लगता है। और संगीत का स्वरूप भी कितना बदला है,
1: बहुत ज्यादा बदल गया है। और बदलाव हर समझ लीजिए, परिवर्तन जो होता है वो तो प्रकृति का नियम ही होता है, लेकिन वो परिवर्तन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, जो सबको पसंद आए
0: जी। और परिवर्तन के साथ हम अगर जुड़ेंगे नहीं, खुद को अलग थलग रखेंगे, तो वो खुद ही खामखा तकलीफ में रहेंगे। तो बदलाव को स्वीकार करना भी जरूरी होता है, लेकिन बदलाव के साथ बिल्कुल इतने ना बह जाएं कि अपने जो संस्कार हैं, संस्कृति है, उसे हम भूल जाएं।
1: बस अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए और बदलाव को अपने हिसाब से थोड़ा सा स्वीकार कीजिए।
0: और अपने बच्चों को भी, जो अपनी संस्कृति है, उसे अलग ना होने दीजिए। अब वो नई चीज़ों को, जो भी आधुनिकता है, उसे अपनाएं, लेकिन जो हमारी जड़ें हैं उसे जुड़ाव बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल।
0: तो अब देखिए, हमारे श्रोता का कहना है कि विगत काल में मनोरंजन के साधन प्रकृति और सामुदायिक गतिविधियों तक सीमित थे। मेले, सर्कस, कठपुतली शो, त्योहारों में पूरा समाज एक साथ जुड़ जाया करता था। रेडियो और दूरदर्शन के आने से मनोरंजन घर की चार दीवारी तक सीमित हुआ, लेकिन इसे भी पूरे परिवार ने एक साथ बैठकर कार्यक्रम देखने का अवसर दिया। और तकनीकी क्रांति की बात कर रहे हैं, जहाँ इंटरनेट ने बहुत सारी चीज़ों को लेकर आया है, वेब सीरीज़ आई हैं, आगे इन्होंने इसके बारे में बात की है। फिर ये बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल एजेंसी AI एल्गोरिदम आधारित जो सिफारिशें हैं, इसने भी व्यक्तिगत बना दिया है मनोरंजन को, और बहुत विविधतापूर्ण मनोरंजन अभी है। और बहुत विस्तार से इन्होंने बातें लिखी हैं इस बारे में, तो आगे और भी संदेश पढ़ने हैं हमें।
1: बिल्कुल। और हमारे एक क्वेश्चन होता है, उनका संदेश है कि मनोरंजन के साधन तो पहले भी हुआ करते थे और आज भी हैं, पर कुछ तौर तरीके बदल गए हैं।
0: हाँ।
1: पहले रेडियो पर मनोरंजन

0: मनोरंजन दोनों साथ में मिल रहे हैं। नकारात्मक प्रभाव इसका यह है कि मनोरंजन जो है वो अब सामाजिक से अधिक व्यक्तिगत हो गया है, क्योंकि पहले सारे लोग मिलके हम साथ होते थे, अब अत्यधिक स्क्रीन टाइम से शारीरिक गतिविधियां भी कम हुई हैं और आंखों पर बुरा असर भी पड़ रहा है।
1: हमारे एक श्रोता लिखते हैं, ये जो बात इन्होंने लिखी है ना, ये बहुत सही बात है कि बच्चों की आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है बड़ों की, और ना सिर्फ आंखों पर आपकी और भी इंद्रियों को ये प्रभावित करते हैं। तो हमारे श्रोता खुद सजग हैं, इन बातों को जानते हैं, तो अपने घर में वो क्या इन चीज़ों को लेकर बदलाव करते हैं, बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम के लिए क्या उन्होंने एक समय निर्धारित किया है, या बच्चे उनके बहुत कितनी बार तो हम खुद ही आदत बिगाड़ते हैं बच्चों की, कि अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो टीवी लगा दिया, या तो फिर हमने उसके हाथ में मोबाइल दे दिया कि उसका ध्यान थोड़ा सा वहाँ से, क्योंकि डाइवर्ट हो जाता है वो टीवी और मोबाइल की तरफ, और हम उसके ध्यान को थोड़ा सा भटकाकर उसके मुंह में निवाले देते रहते हैं और फिर वो चीज़ें आदत में बदल जाती हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, मनोरंजन देना है लेकिन स्वस्थ मनोरंजन हमें अपने आगामी पीढ़ी को देना है।
0: और बच्चों को हमें समझाना भी है कि जब हम अपने हाथों से खाना खाते हैं तो, और खाने पर पूरा ध्यान रखते हैं, तो पुराने समय में क्यों ऐसा होता था, क्योंकि जब हम हाथों से अपने खाना खाते हैं ना तो एक जुड़ाव होता है खाने के साथ, उसकी सुगंध को महसूस करते हैं, उसके उसके स्वाद को महसूस करते हैं, तो वो खाना में और फायदा पहुंचाता है। इसलिए जरूरी होता है कि जब कुछ ना चल रहा हो, उस समय टीवी मत चलाइए, उसमें कुछ नहीं करिए, कहते हैं बात भी बोलना भी नहीं चाहिए, तो खाते समय थोड़ा अगर इस तरीके से हम करें तो देखिए कितना स्वास्थ्य पर असर पड़ता है।
1: बहुत सही बात कही आरती आपने कि हम एक एक स्वाद को महसूस कर पाते हैं, लेकिन अगर हमारा ध्यान किसी और भी है, किसी तीसरी तरफ भी है, कि एक तरफ हमारी नजरें हैं इस तरफ की कौन आ रहा है कौन जा रहा है, एक तरफ हम टीवी भी देख रहे हैं, हमारा ध्यान मोबाइल पर भी है, तो खाने का लुत्फ हम ले ही नहीं पाएंगे। और जितना असर हमें हर चीज़ को लेकर वो भोजन देगा शायद नहीं दे पाए।
0: बिल्कुल। तो और हमारे जो श्रोता हैं वो भी लिख रहे हैं कि प्राचीन काल के सामूहिक उत्सवों से लेकर आज के व्यक्तिगत डिजिटल स्क्रीन तक मनोरंजन का स्वरूप काफ़ी बदल गया है, हालांकि इसका मूल उद्देश्य दिन भर की थकान मिटाना और मानसिक शांति पाना आज भी बिल्कुल वैसा ही है, बस चीज़ें चेंज हो गई थोड़ी सी।
1: बिल्कुल। तो हम फिर से एक पुराने गाने की तरफ बढ़ते हैं
0: बिल्कुल बदलाव
1: और बदलाव हम लेकर आ रहे हैं, तो एक गीत सुनते हैं।

0: आज वो डिजिटल माध्यमों से होते हैं। कभी पूरा परिवार साथ बैठकर रेडियो सुनता था या दूरदर्शन पर कार्यक्रम देखता था, जबकि आज अक्सर प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्क्रीन में, फोन में बिजी दिखाई देता है।
1: और देखिए ना हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। मनोरंजन के स्वरूप भले बदले हों, रेडियो ने हमें आज भी जकड़ रखा है। यानी कि रेडियो जो है ना, वो हमारे बहुत सारे श्रोताओं का मनोरंजन का बहुत पसंदीदा माध्यम है। आगे लिखते हैं कि रेडियो से पहले हमारे घर में ग्रामोफोन प्लेयर हुआ करता था।
0: अरे वाह।
1: जिस पर पुराने दौर की उन फिल्मी गीतों के रिकॉर्ड बजाकर हम लुत्फ उठाया करते थे। उसके बाद हमारे यहाँ साल 1960 में रेडियो का आगमन हुआ। उस समय से लेकर आज तक ये हमारे मनोरंजन का साथी बना हुआ है। इसके अलावा सिनेमाघर और दूरदर्शन का ज़माना आया, जिसमें हर रविवार के दिन आ रही रामायण जैसे सीरियल और शाम को आने वाली फिल्में हमें काफ़ी प्रभावित किया करती थी। आज इंटरनेट और स्मार्टफोन ने मनोरंजन को व्यक्तिगत और ऑन डिमांड बना दिया है। और आगे लिख रहे हैं, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।
0: देखिए परिवर्तन तो होता ही है
1: जी।
0: अब हम उसे स्वीकारें या ना स्वीकारें। और हमारा एक और श्रोता है, वो लिखते हैं कि बचपन में सबसे मज़ेदार एक और मनोरंजन

0: का साधन था कथा कहानी सुनाने का। सच में घर परिवार रिश्तेदार में कुछ ऐसे सदस्य होते थे जो कथा कहानी बहुत अच्छा सुनाते थे और आपको उसमें बीच में हुंकारी भरना जरूरी होता था। और कथा एक दिन में ख़त्म नहीं होती थी, दो दो दिन तक चलती थी। सुनने वाले की बातें इतनी लच्छेदार होती थी कि हम तन्मय होकर उस कथा को या कहानी को सुनते रह जाते थे।
1: और इसी तरह से हम बात करें कि बदलते स्वरूप की, तो पहले चिट्ठियां हमारे श्रोता लिखा करते थे, अब हमारे श्रोता हमें कमेंट लिखकर भेजते हैं। कुछ श्रोता सिर्फ अपने विचार, इस जिस जो भी बात हो रही है उस बारे में अपने विचार लिखते हैं, लेकिन कुछ श्रोता ऐसे भी हैं कि भाई उन्हें बिल्कुल तैयार माध्यम मिल जाता है, वो गूगल पर जाते हैं, सर्च करते हैं उस बारे में और बिल्कुल उसको वहाँ से कॉपी करके एज इट इज़ वैसा कि वैसा उसे पेस्ट कर देते हैं। उसमें आप अपने विचार भी जोड़िए और आपकी क्या बात है वो राय भी हमने लिखकर पहुंचाए,
0: हमें आपके विचार जानने का मौका मिलेगा कि आप क्या सोचते हैं इस विषय पे, तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा।
1: ये तो हमें भी पता है, बिल्कुल गूगल पर सब तरह की जानकारी है, लेकिन आपको अपने विचार लिखकर भेजने, इसलिए हम हमेशा कहते हैं ना श्रोताओं से कि आप अपने विचार इस बारे में लिखकर भेजिए कि आपने क्या बदलते देखा है इस दौर में।
0: जो आपके अनुभव है ना वो जब हम साझा करेंगे ना तो और लोगों तक भी वो जो अनुभव है वो पहुंचेंगे। तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि एक समय था जब लोग मेले, कठपुतली के शो, नाटकों और रेडियो पर निर्भर थे, इसके बाद सिनेमा घरों और टीवी का दौर आया, लेकिन अब जो है वो जो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं मनोरंजन के जिन पे पारंपरिक तरीकों को पीछे छोड़ दिया गया है। तो पहले तो ऐसा होता था कि जैसे हम शाम को जब हमारा कोई सीरियल आने वाला है तो उसके लिए बहुत ही इंतजार कर रहे होते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि ऐसी ऐसी अब सीरीज हो गई हैं कि उनके एपिसोड ही चलते रहते हैं, तो ये बदलाव बता रहे हैं इस तरीके का हुआ है।
1: बिल्कुल, और मनोरंजन का वास्तविक उद्देश्य मन को प्रसन्न करना होता है, तनाव को कम करना होता है, जीवन में नई ऊर्जा का संचार करना होता है। आरती, अगर मनोरंजन हमें संवेदनशील, रचनात्मक और सकारात्मक बना रहा है तभी उसकी वास्तविकता हम कह सकते हैं कि वो सिद्ध होती है। इसीलिए हमें ऐसे मनोरंजन को अपनाना चाहिए जो ज्ञान भी दे, हमारी संस्कृति और मानवीय मूल्यों को भी समृद्ध करता रहे।
0: बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि हम मनोरंजन के साधन को उस हिसाब से लें कि भाई हमें जो ज्ञान भी थोड़ा सा हमारा बढ़ाए।
1: बिल्कुल, समय तो बदलता रहेगा, मनोरंजन के स्वरूप भी बदलते रहेंगे, लेकिन उसका मूल उद्देश्य हमेशा एक ही रहेगा कि हमारे जीवन को आनंदमय और संतुलित, सार्थक बनाते रहना। आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन स्थापित करके ही हम मनोरंजन का वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो मनोरंजन के साधन को आप बदलते स्वरूप को अपने तरीके से चीज़ों को आप लीजिए, थोड़ा सा परिवर्तन भी ज़रूरी होता है, लेकिन आप ज्ञानवर्धक चीज़ों को देखिए, ऐसी चीज़ों को देखिए जिससे कि आपका पूरा विकास हो, आपके दिमाग का अच्छा, आपको खुद तनाव से मुक्ति मिले और आपको अच्छा महसूस हो, और साथ ही थोड़ा शारीरिक गतिविधि भी रहें, इस तरीके के मनोरंजन के साधन भी करिए, जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह भी हैं, जैसे खेल हैं उनपे भी आप जा सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा
0: आप, कथा कहानी वाली बात बहुत अच्छी बताइए आप, वो भी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत सारे पुराने ऐसे खेल हैं जिनको हम खेल सकते हैं, बैठ के घर में आपस में बात कर सकते हैं, अंताक्षरी जैसे खेल होते थे वो खेल सकते हैं,
1: जिनमें तो कोई अलग से कोई खिलौना नहीं लाना है, बिना खिलौने वाले खेल भी हुआ करते थे। लेकिन घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही हैं कि अभी समय है एक अंतराल का।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीज़ों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे

0: में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली, और अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं।
2: बिल्कुल, तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी।
1: अभी बातचीत से पहले हम सुनेंगे,
2: वही देखा चंचल जी की तरफ कि उन्होंने कहा कि नहीं अभी हम पहले
1: गीत सुनेंगे।
2: चलिए पहले
1: भाई मनोरंजन की बात हो और मनोरंजन में गीत ना हो तो कैसे होगा।
2: आपने

0: तो भाई इस गीत के बाद में अब हम बात करेंगे सखी विशेष में, जिन्हें पद्मश्री मिल चुका है, उनकी जो है यानुंग जामोह लेगो, जो कि जड़ी बूटी विशेषज्ञ हैं।
1: बिल्कुल। और यानुंग जामोह लेगो भारत के अरुणाचल प्रदेश की प्रसिद्ध पारंपरिक जड़ी बूटी विशेषज्ञ हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन औषधीय पौधों के संरक्षण, पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को संजोने और लोगों को निस्वार्थ उपचार करने में समर्पित किया है।
0: वो विशेष रूप से कुछ समुदाय हैं उनमें प्रचलित पारंपरिक उपचार पद्धतियों की संरक्षक मानी जाती हैं। 1963 में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के सिका टोड़े गांव में उनका जन्म हुआ और ये वहाँ के समुदाय हैं उनसे ताल्लुक रखती हैं।
1: बिल्कुल। पारंपरिक चिकित्सा में उनका प्रवेश घर से ही शुरू हुआ था। उन्होंने अपने पिता से जड़ी बूटी चिकित्सा सीखी, जो कि एक सम्मानित लोक चिकित्सक थे। उनके मार्गदर्शन में पौधों के चयन, तैयारी और उपचार और प्रार्थना से संबंधित पारंपरिक रीति रिवाजों का अवलोकन किया और लगभग 15 वर्षों के प्रशिक्षण के बाद उन्होंने 1995 में अपना स्वतंत्र अभ्यास शुरू किया। औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने

0: असम कृषि विश्वविद्यालय जोरहाट से बीएससी और एमएससी कृषि की उपाधि प्राप्त की।
1: विश्वविद्यालय की परीक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 1988 में अरुणाचल प्रदेश सरकार के कृषि विभाग में काम करना शुरू किया और वो लंबे समय तक वरिष्ठ पदों पर रहते हुए 2023 में वहाँ से सेवानिवृत्त हुई और इसके बाद उन्होंने अपना पूरा समय पारंपरिक प्रथाओं और सामुदायिक प्रशिक्षण को समर्पित कर दिया। इसके बाद 2009 में उन्होंने इंडिजिनस हर्बल हेरिटेज की स्थापना की जो औषधीय पौधों और घरेलू स्तर पर जड़ी बूटियों के बागानों की खेती संरक्षण और शिक्षा देने की पहल है जिसके माध्यम से पूर्वजों के ज्ञान को व्यवहारिक खेती से जोड़ा गया है।
0: और लेगो के योगदान का एक मुख्य पहलू है पुनर्जीवन और ज्ञान का प्रसार। बुजुर्गों द्वारा ज्ञात जड़ी बूटियों की सूची बनाना, उनकी प्राकृतिक संरक्षण को प्रोत्साहित करना और नर्सरी एवं रसोई के खेतों में दुर्लभ प्रजातियों की खेती करना।
1: स्वदेशी हर्बल हेरिटेज के माध्यम से उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जड़ी बूटियों के बारे में शिक्षित किया। अरुणाचल प्रदेश में स्वदेशी चिकित्सा के पारिस्थितिक आधार को मजबूत करते हुए उन्होंने प्रतिवर्ष लगभग 5000 औषधीय पौधों का रोपण करने में भी बहुत बड़ी सहायता प्रदान की है।
0: और पिछले कई दशकों से यानुंग जमाओ लेगो ने पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोग उनसे संपर्क करते रहे जिनमें पाचन संबंधी और त्वचा संबंधी समस्याओं से लेकर श्वसन संबंधी शिकायतें और गुर्दे की समस्याएं बहुत सारी चीजें शामिल है।
1: और आरती, इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, कह सकते हैं कि बड़ी बीमारियां भी हैं उसमें, और उन्हें उनका भी वो उपचार करती हैं। और पद्म पुरस्कार दस्तावेज 10,000 से अधिक लोगों के लाभ का दावा करते हैं। लोग लेगो अक्सर ऐसे विश्वास को व्यक्त करती हैं जो पारंपरिक मूल्यों के अनुरूप हैं, यानी कि वो कहती हैं कि प्रकृति में ही बीमारियों के समाधान भी हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात भी है। ये एक ऐसा विश्व दृष्टिकोण है जिसे वे पौधों के संरक्षण के संदेश के साथ जोड़ती हैं। लेगो का अभ्यास औषधि पौधों और जड़ी बूटियों के जो अर्क होते हैं उस पर केंद्रित है, जिन्हें काढ़े, पाउडर, पेस्ट या तेल के रूप में तैयार किया जाता है। उनके प्राकृतिक और पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें 2007 में सृष्टि सम्मान, 2013 में पारंपरिक वैद्य रत्न और 2019 में अरुणाचल स्टेट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है और इसके साथ ही भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है।
1: तो बस लोग उनसे इसी तरह से चिकित्सा लाभ लेते रहें और वो बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य में इजाफा करती रहें, यही शुभकामना है। सुनते हैं गाना।
2: हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

0: शमशाद बेगम और चितलकर की आवाज में पतंगा फिल्म का गाना था आरती, और हमने एक गाना सुनवाया था अपलम चपलम, और हमने एक दिमागी कसरत या पहेली पूछ ली थी अपने सुनने वालों से कि उस गाने में दो बहनों की आवाज, वो कौन सी दो बहनें हैं। तो बहुत सारे जो गाने हमने बाद में भी सुनाए ना, उनके लिए भी हमारे श्रोताओं ने फिल्म का नाम कौन सा है, गायक गायिका कौन से है, वो सारी जो पूरी जानकारी है वो लेकर भेजी है। लेकिन फिलहाल वो हम बता दें कि वो आजाद फिल्म का गीत था, आवाज थी लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की। और बात है दिमागी पहेली की,
1: बिल्कुल,
0: तो पहेली जो है वो दिमागी कसरत करवाती है, और दिमागी कसरत के लिए क्या क्या हो सकता है इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिखी,
1: बहुत सारी चीजें बताई हैं। तो कौन सा आप पहले पढ़ रही हैं संदेश?
0: एक संदेश में लिखा है कि मुझे और मेरी बहन को बचपन से ही नियमित अखबार में आने वाली जो वर्ग पहेली होती थी ना, उन्हें भरने का बड़ा शौक रहा है, और ये बच्चों से लेकर बड़ों तक हर आयु वर्ग के लिए पहेलियाँ लाभदायक होती हैं। कुछ मिनट में पहेलियाँ सुलझाना दिमाग के लिए उतना ही उपयोगी है जितना शरीर के लिए नियमित व्यायाम। हम किसी पहेली का उत्तर खोजते हैं तो हमारा मस्तिष्क तर्क, कल्पना, स्मरण शक्ति और सूझबूझ का एक साथ में उपयोग करता है। ये मानसिक अभ्यास सोचने समझने की क्षमता को निखारता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। बहुत सही बात लिखी है इन्होंने कि एक साथ कितनी चीज़ें जुड़ जाती हैं।
1: बिल्कुल। तो और एक हमारे जो श्रोता हैं वो भी लिखते हैं कि शारीरिक जो शारीरिक कसरतें हैं उनके साथ दिमागी कसरतें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। वैसे हर रोज़ सुबह 5 बजे उठकर बिस्तर पर हल्की कसरत करने के बाद प्राणायाम व्यायाम कर लेता हूँ, साथ में रेडियो पर विविध भारती भी सुनता रहता हूँ, दिमागी मनोरंजन रूपी कसरत भी हो जाती है। रही बात पहेलियों की, तो न्यूज़पेपर में हर रोज़ आ रहे क्रॉसवर्ड्स पजल सॉल्व करके टाइम पास करने के साथ साथ दिमागी कसरत भी हो जाती है।
0: बिल्कुल सही बात है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पहेलियां ही नहीं, मैं जो सखी सहेली और सुरीला सफर प्रोग्राम में कमेंट्स लिखता हूँ उसके लिए भी शब्दों और वाक्यों को सोचता हूँ और उससे मेरी दिमागी कसरत होती है। जो लेखन का कार्य करते हैं बिल्कुल उनके लिए हर बार नए शब्द चुनना, और जो काव्य गद्य लिखते हैं क्योंकि एक जैसा ना हो, एक रास्ता ना लगे, हर बार सुनने वालों को पढ़ने वालों को नया लगे, इसके लिए नए शब्दों को सोचना, नई रचनात्मकता लेकर आना अपने लेखन में, ये बहुत बड़ी दिमागी कसरत है।
1: और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पहेलियाँ सुलझाना एक बेहतरीन मानसिक व्यायाम है, ये ना केवल हमारे दिमाग को सक्रिय और चुस्त रखता है बल्कि सोचने की क्षमता, तर्क शक्ति और याददाश्त को भी बढ़ाता है। दिमागी कसरत के कुछ मुख्य फायदे भी हैं, जैसे कि एकाग्रता में सुधार होता है, पहेलियों को समझने और उनका जवाब खोजने से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है, समस्या सुलझाने का कौशल आता है, ये हमें किसी भी स्थिति में लीक से हटकर सोचने में मदद करती हैं, और साथ ही नए शब्दों और तर्कों का उपयोग करके दिमाग की नसें भी मजबूत होती हैं और नई यादें बनती हैं और कुछ नया और मजेदार भी होता है, इसे हमें तनाव से राहत मिलती है।
0: हमारे श्रोता ने तो बहुत सारी पहेलियां लिखकर भेज दी हैं और अंत में उन पहेलियों के जवाब भी लिखकर भेजे हैं।
1: अच्छा
0: और देखिए एक बड़ा सुंदर संदेश है, पहेलियों के विभिन्न पहलुओं और सुरागों यानी उनके क्लूज को याद रखने से शॉर्ट

0: मेमोरी मजबूत होती है, ये हमारे श्रोता ने लिखा है। आगे ये कहना चाहते हैं कि समस्या सुलझाने की क्षमता, पेचीदा सवालों को हल करते समय मस्तिष्क के वे हिस्से सक्रिय होते हैं जो तार्किक सोच और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाते हैं। एकाग्रता और धैर्य, एक सही उत्तर तक पहुंचने के लिए गहराई से सोचना पड़ता है जिससे फोकस और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार होता है।
1: बिल्कुल, और सबने इसी तरह से लिखा है कि पहेलियाँ वास्तव में मस्तिष्क के लिए बेहतरीन दिमागी कसरत है। हमारे श्रोता कहते हैं ये हमारी सोचने की क्षमता, तर्क शक्ति और रचनात्मकता को चुनौती देती हैं जिससे मानसिक विकास होता है।
0: तो भाई अब थोड़ा सा मनोरंजन कर लिया जाए,
1: एक गीत
0: सुने।

0: आरती तुम सच सच बोलो कि बारिश जब होती है तो कई बार ना चटपटा खाने का मन करता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बड़ी हानिकारक चीज है।
1: क्योंकि मैं खाती हूँ।
0: हाँ, तुम बहुत चटोरी हो, ये बात पहले भी श्रोताओं के सामने तुम मान चुके कि तुम बड़ी चटोरी हो, और बारिश में भी चटपटा हम देख के, जब हम देते कि तले भुनी चीजें बन रही है, कहीं पकौड़े हैं या कुछ और है, चाट बन रही
1: है, नहीं मानता है फिर तो एकदम से।
0: लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने तुमसे सवाल किया कि स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए इन चीजों को तुम कितना अनदेखा अनसुना करती हो, अपनी नाक कान बंद कर लेती हो।
1: बताओ। बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ मैं कि बारिश के मौसम में मैं बहुत ही कम, कभी खा लिया अगर पकौड़े वगैरह, पकौड़े खा लिए तो फिर मैं उस दिन बहुत ही हल्का कभी एक टाइम खाना खाती हूँ, वो भी बहुत ही हल्का सा खिचड़ी ले लिया कुछ इस तरीके का, क्योंकि ना बहुत ज्यादा हैवी जब हो जाता है ना तो वो आपकी परेशानी कर सकता है।
0: बिल्कुल, आपको अपच की समस्या इस मौसम में बहुत जल्दी हो सकती है, और आपकी जब पाचन समस्या अगर जवाब दे गई तो वो बहुत सारी समस्याएं एक साथ लेकर आ जाएगी। इसीलिए कोशिश करें कि इन दिनों में साफ उबला हुआ पानी पिए या फिर फिल्टर किया हुआ पानी पीजिए, ताज़ा और गर्म गर्म भोजन करें, खुले में जो भी बिकने वाली खाद्य पदार्थ हैं उन्हें खाने से बचें।
1: बारिश में तो बिल्कुल भी बाहर का ना खाएं तो अच्छा है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं होता है कि वो किस तरीके से बन रहा है, या क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, बहुत बहुत ज़्यादा बारिश पड़ी है उसके बाद हम गए हैं तो फिर बहुत नहीं बिकते हैं वो सामान, तो किस तरह से हम खा रहे हैं, उसी समय का बना हुआ है, ताज़ा है या बहुत देर का रखा हुआ है, तो वो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता
0: है। और हम सिर्फ खान पान की ही बात क्यों करें भाई, बारिश में कई बार आसपास में पानी जमा हो जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना गड्ढे जहाँ पानी सूखता ही नहीं है, कुछ ऐसी अगर चीज़ रखी है हमारी छत पर, हमारे आंगन में, गलियारे में, वहाँ पानी भर गया, वो सूख नहीं रहा, तो वहाँ मच्छर बहुत जल्दी पनप सकते हैं, जो बहुत सारी बीमारियाँ जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया इन्हें लेकर आ सकते हैं, तो वहाँ पानी का भराव ना

0: होने दें, और घर में भी मच्छरदानी या मच्छर भगाने वाले जो अन्य साधन हैं जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुंचाएं उनका उपयोग कर सकते हैं। फल सब्जियां जो भी आप बाजार से लेकर आएं उनको धोकर अच्छी तरह सुखाकर फिर उपयोग करें, तो ये सारी सावधानियां रखना बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल, और साथ ही अगर हम कहीं से बाहर से भीग गए, भीग कर आएँ तो तुरंत कपड़े बदलें और अच्छे से उसमें हम स्नान करें या कुछ इस तरह की चीज़ें करें, और जिससे कि ना भीगे ना रहें।
0: और बच्चों और बुज़ुर्गों की स्वास्थ्य के लिए ख़ास तौर पर ध्यान रहना देना होता है, क्योंकि इनकी जो इम्यूनिटी पावर है या रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती है, इसीलिए इसमें इस मौसम में फंगल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होने की संभावना होती है। तो मौसम के अनुसार हल्के और पूरे शरीर ढकने वाले कपड़े भी आप बच्चों को पहना सकते हैं और बुज़ुर्गों के लिए भी इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत ज़रूरी भी है ये चीज़ें करनी। और साथ ही हमारे श्रोता भी हैं, वो भी लिख रहे हैं कि वो कहते हैं कि बारिश के मौसम में स्वास्थ्य, सुरक्षा और यात्रा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, हमेशा ताज़ा और गर्म भोजन करें, बाहर जाते समय रेनकोट या छाता साथ में रखें, सड़क पर जल भराव और खुले हुए तारों से आप दूर रहिए, बहुत ज़रूरी है क्योंकि बारिश होती है उस समय अगर कोई खुला हुए तार पड़े हुए तो बहुत ये जानलेवा भी हो सकता है। तो और भीगने के बाद तुरंत सूखे कपड़े पहन लीजिए और पैरों को अच्छी तरीके से सुखा लीजिए।
0: हमारे श्रोता ने संदेश में लिखा है कि बारिश के मौसम में हमेशा हाइड्रेटेड रहें, यानी कि पानी की कमी अपने शरीर में ना होने दें। मौसम ठंडा होने के कारण अक्सर कर लोग कम पानी पीते हैं जिससे डिहाइड्रेशन होने की संभावना रहती है। भरपूर मात्रा में गुनगुना या फिर साफ पानी पिएं, ताज़ा और सुपाच्य भोजन हो इसका ध्यान रखें, क्योंकि बारिश में पाचन शक्ति थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, तो बाहर का तला भुना खाने की बजाय खिचड़ी, दलिया, सूप और इस तरह का हल्का भोजन करें।
1: बिल्कुल, और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बारिश के मौसम में नमी और बढ़ते प्रदूषण के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, स्वस्थ रहने के लिए हमेशा उबला हुआ फिल्टर किया हुआ पानी पिएं, और जो खाने जो बाहर सड़क पर बिक रही हैं चीज़ें और जो ढकी हुई नहीं है उनको आप खाने से बचिए, उन्हें मत खाइए, भीगने पर तुरंत सूखे कपड़े पहने और मच्छरों से बचने के लिए किसी चीज़ का आप उपयोग कर सकते हैं।
0: हमारे श्रोता ने लिखा है कि बरसात के मौसम में नमी और दूषित पानी के कारण डेंगू, मलेरिया, वायरल बुखार और पेट का संक्रमण, इन सब का खतरा बढ़ जाता है। इनसे बचने के लिए हमेशा उबला हुआ शुद्ध पानी पिएं, स्ट्रीट फूड से बचें, मच्छरों के बचाव के लिए हमेशा घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, और जैसा हमने बताया भी था कि मच्छरदानी भी आप उपयोग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, एक श्रोता है जो लिखते हैं कि बारिश में भीगने से बचें और अगर भीग जाएं तो घर आते ही सादे या गुनगुने पानी से नहा लें और सूखे कपड़े पहने, हाथों को अपने साफ रखें बैक्टीरिया से बचने के लिए, समय समय पर हाथों को साबुन से धोते रहें, आंखों के संक्रमण से बचने के लिए जो बरसात में अक्सर ऐसा होता है कि आंखों का आना या जैसी कंजक्टिवाइटिस जो है वो हो जाता है, उसका खतरा बढ़ जाता है, तो अपनी आंखों को बार बार छूइए मत और साफ पानी से उन्हें धोइए।
0: बिल्कुल, हमारे सभी श्रोता जो सुन रहे हैं इन संदेशों को वो बहुत इस बात का ध्यान रखेंगे। अगले संदेश में लिखा गया है कि बरसात का मौसम अपने साथ ठंडी हवाएं और हरियाली लेकर आता है, कितनी अच्छी बात लिखी है, लेकिन आगे फिर लिख रहे हैं कि इस मौसम में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। बारिश के दिनों में साफ और ताज़ा भोजन का सेवन करना चाहिए, बाहर के खुले अस्वच्छ पदार्थों से बचना है, उबला स्वच्छ पानी, हाथों की सफाई, इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और जल्दी से जल्दी सूखे कपड़े पहन लेने चाहिए ताकि सर्दी जुकाम से बचा जा सके। और ये तो बहुत सही बात है कि कपड़े एक बार गीले हो गए और लगातार बारिश है तो उनको सुखाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या होती है, और नमी वाले कपड़े अगर हम पहने रहेंगे तो शरीर पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है।
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बरसात का मौसम सतर्कता हटी, दुर्घटना घटी जैसा होता है, थोड़ी सी भी लापरवाही आपको अस्पताल पहुंचा सकती है, इसलिए स्वच्छता को अपनी प्राथमिकता बनाएं। अगर आपको या परिवार में किसी को भी तेज बुखार, अत्यधिक थकान, उल्टी या दस्त की शिकायत हो तो खुद डॉक्टर बनने के बजाय तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या चिकित्सक से आप परामर्श करिए।
0: और अब मुझे लगता है कि हमें एक गीत सुन लेना चाहिए, और ये होगा आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: सखी सहेली कार्यक्रम से लेते हैं विदा दीजिए चंचल वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव को अनुमति। नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

FM बैंड 103.4 आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 4 बजने को हैं और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस कार्यक्रम के जरिए देश भर में फैले हमारे श्रोता जुड़ते हैं विविध भारती से, हमारे इस कार्यक्रम से, और करते हैं अपने पसंदीदा गानों की फरमाइश। ये कार्यक्रम हम और आपको जुड़ने में एक सेतु का काम करता है और इससे आपका और हमारा जुड़ाव यकीनन और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। तो चलिए सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम हेलो फरमाइश। तो हमारे पहले कॉलर कौन है, जरा देखते हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती
1: जी, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन जनाब फरमा रहे हैं, अपना नाम बताइए।

0: ये कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं ग्राम बड़ा गांव जिला गुना मध्य प्रदेश से आपका नियमित होता बोल रहा हूँ, मांगीलाल धाकड़ है।
0: मांगीलाल जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छी हैं
1: जी। मैम, आपके प्रोग्राम में सुन के बहुत खुश होता हूँ। विविध भारती बम्बई के कार्यक्रम में कम से कम 15-20 साल से लगातार जुड़ा हुआ हूँ।
0: अच्छा, सभी कार्यक्रम सुनते हैं?
1: जी जी मैम।
0: अच्छा, आपसे जब हम बात कर रहे हैं तो पीछे से मोरों की आवाज आ रही है।
1: जी जी मोर है, मैं अभी खेतता हूँ खेती बाड़ी पर।
0: अच्छा, मतलब आपने खेत में बैठकर बात कर रहे हैं और वहाँ पर मोर आते हैं?
1: जी जी मोर आ रहे हैं, मोर बहुत पक्षी हैं, मोर हैं, कोयल हैं, सभी तरह की पक्षी नजर आते हैं हमारे गांव में।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लगता होगा ना?
1: जी जी मैम, अपनी खेती बाड़ी में मक्का बो रहा थी, उसमें यहीं बैठा हूँ मैं, यहीं से बात कर रहा हूँ।
0: तो आपके शहर का या गांव का मौसम कैसा चल रहा है इन दिनों?
1: हमारे गुना MP में मौसम मतलब अभी तो बादल हो रहे हैं, पानी भी बरसा था 2-4 दिन पहले।
0: अच्छा,
1: अभी तो अच्छा मौसम है।
0: चलिए, तो आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा ना?
1: जी नहीं, फसल का नुकसान नहीं है, बारिश की फसल है, मक्का है, कुछ नुकसान नहीं है इसमें।
0: तो ज्यादा मोर आते हैं क्या?
1: हाँ, बहुत मोर है हमारे गांव में।
0: उनको खेतों में आने से कैसे रोकते हैं आप ताकि फसल को नुकसान नहीं हो?
1: बिल्कुल नहीं रोकते हैं, वो नुकसान नहीं करती हैं, अभी थोड़ी बहुत चौकती हैं, चौक के निकल जाती हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: और आपके प्रोग्राम में हेलो फरमाइश, रहतनामा, सखी सहेली और आपके जो मन चाहे गीत, ये पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
0: बहुत अच्छी बात है, आप हमारे नियमित श्रोता हैं और कार्यक्रमों को सुनते हैं विविध भारती के। आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: आज मुझे बंजारन का गीत है, ये जीवन इतनी बार मिले, हर बार मुझे साजन का प्यार मिले।
0: बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ, हम रहीम खान पठान बात कर रहे हैं।
0: कहाँ से बोल रहे हैं रहीम जी?
1: परवानी महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अच्छे है, मजों में है। 1975 से हम विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे हैं और आज भी सुन रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, हमारे जो श्रोता हैं वो इतने नियमित हैं कि हम कई बार हैरान हो जाते हैं जानकर कि विविध भारती के कार्यक्रमों के अलावा उनके जिंदगी में और कुछ है ही नहीं।
1: खास तौर पे एक बात बताना चाहेंगे हम आपको, नहीं बल्कि हमारे सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, कि देखिए आकाशवाणी एक ऐसी माध्यम है के जरिए से हमारा काम भी चलता है और हम प्रोग्राम भी सुन पाते हैं। रही दूसरी बात, अभी देखिए आज के तारीख में जवान बच्चे, बड़े बच्चे, छोटे बच्चे ज्यादा से ज्यादा मोबाइल की ओर जा रहे हैं और कम उम्र में उनको चश्मा लगने की संभावना हो रही है।
0: जी, आपने एक ज्वलंत समस्या की ओर हमारा ध्यान दिलाया है और वाकई ये समस्या हर घर में है कि बच्चे जो हैं मोबाइल से लगे रहते हैं और उनकी आंखों के अलावा उनके दिमाग में भी जो है, आप देखिए ना कितनी तरह की बातें घर कर गई हैं जो बातें उस उम्र में नहीं होनी चाहिए, और इसलिए इतने क्राइम हम आजकल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, छोटी छोटी उम्र में बच्चे क्राइम कर रहे हैं, ये सब मोबाइल की ही देन हो रही है।
1: हम ये चाहते हैं सभी माता पिताओं से, बच्चों को, बच्चे देश के भविष्य होने के कारण ऐसा है कि आपको बच्चों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है और सबसे ज्यादा बच्चों को पढ़ाई में ध्यान देना है, मोबाइल में देना है और हम बच्चों को पढ़ाई करेंगे अच्छे से अच्छे। जैसा आप आलो सर विविध भारती से बात करते हैं, हमारा देश पूरा आपकी आवाज सुनता है और हम तो रात दिन रेडियो के साथ ही रहते हैं। जैसा ही प्रोग्राम चलता है तो हम रेडियो लगा के बैठ जाते हैं, हमारा काम भी चलता है और रेडियो का प्रसारण भी चलता है।
0: बहुत बड़ा संदेश आपने दिया है कि बच्चे आखिर किस दिशा में जा रहे हैं।
1: हम यहाँ पे परभणी महाराष्ट्र में हम बिल्डिंग आरसीजी बिल्डिंग वर्कर का काम करते हैं।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके रहीम साहब, कि आप खुद ये समझ रहे हैं कि आपको शिक्षा नहीं मिल पाई या नहीं ले पाए और आपको इतनी धूप में इतनी मेहनत का काम करना पड़ रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश आपने हमें दिया है। अब बताइए आपकी पसंद का कोई गीत।
1: हमें दीदी आज के इस प्रोग्राम में अमर अकबर अंतोनी सुलेम का गीत सुनना है, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे, ये गीत सुनना है।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना।
1: जी राम स्वरूप रेखवार बोल रहे हैं, ग्राम भगौता जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से।
0: राम स्वरूप जी स्वागत है आपका, कैसे हैं राम स्वरूप जी?
1: बढ़िया है आपकी कृपा से, आप कैसी हैं मैडम जी?
0: हम भी अच्छे हैं, और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों?
1: हमारे यहाँ तो बारिश हो चुकी है मैडम जी, झमाझम बारिश हो गई, अभी 2-3 दिन से पानी बस नहीं गिरा है।
0: अरे वाह,
1: बादल हो रहे हैं,
0: ये तो बहुत अच्छी बात है ना
1: जी। गाना सुना दीजिए, फेर भी मूवी का है और ओम नमः शिवाय ऐसे गाना है।
0: अच्छा चलिए, अच्छी बात है, तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: शुभचिंतक बाहुबली फुरसुले छत्रपति संभाजी नगर से संवाद कर रहा हूँ मंदाकिनी जी।
1: जी जी,
0: विविध भारती तो मैं करीबन 30 साल से मैं जुड़ा हूँ। विविध कागज अनेक कार्यक्रम का प्रचलन होता था बहन जी, और जो एक मंथन कार्यक्रम रहता था उसमें तो हमारे विचारों को चालना और आपस में मेलजोल होता था बहन जी।
1: जी जी,
0: मेरी उम्र 84 चालू है, अभी तो मैं घर में ही बैठा हूँ आराम से, और आपसे गुफ्तगू करने का इंतजार कर रहा था। सौभाग्य से मेरी बात भी आपसे चालू है, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है।
1: जी, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे इतने पुराने श्रोता या यूं कहें इतने सीनियर श्रोता हमसे बात करते हैं।
0: ये मेरा जो शौक है ये करीबन 30 साल पूर्व से मैं इस आकाशवाणी से जुड़ा हूँ, और आकाशवाणी ऐसी एक माध्यम है जिसके जरिए मनोरंजन तो होता ही है, मगर अपने जीवन में कुछ नया सीखने का, कुछ नई बातें, स्वास्थ्य वर्धक, विज्ञान, कला, यह सब बातें हमको प्रदान की है, और उससे सभी हमारे श्रोता बंधु पुलकित होकर तृप्त हो गए बहन जी।
1: बहुत अच्छी बात है। तो बताइए बाहुबली जी, आज कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं?
0: फिल्म प्यासा का एक गीत में नगमा निगार ने समाज में फैली हुई दुराचारी, दुष्कर्मी, भरे भी धोखाधड़ी पर अपने अंतस की वेदना, दुख, पीड़ा को बड़े हृदय स्पर्शी शब्दों में बयां किया है। वो गीत के बोल है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया। इसमें कवि ने समाज में जो एक अवडंबर और समाज के प्रति जो विद्रोह और उसके प्रति जो शोषण होता है, सच्चाई को उसके ऊपर झूठ का आरोप करके जीतना चाहते हैं, तो इसके ऊपर कवि ने अपने दुख वेदनाओं को बड़ी सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है बहन
1: जी। बिल्कुल, एक कालजयी गीत आप सुनना चाहते हैं फिल्म प्यासा से, जिसे आवाज मोहम्मद रफी साहब ने दी है, और ये गीत जो है हमें झकझोर देता है, और मेरी पसंद का भी ये गीत है। चलिए आप सबके साथ मिलकर हम भी इस गीत को सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मैं पप्पू चंदेल बोल रहा हूँ भोपाल से।
0: भोपाल से पप्पू जी बोल रहे हैं, स्वागत है आपका। कैसे हैं पप्पू जी?
1: बढ़िया हूँ।
0: क्या कर रहे हैं इस समय?
1: ड्यूटी पर आ गया है, बेकरी में है।
0: अच्छा, बेकरी में काम करते हैं।
1: जी जी जी।
0: क्या समय है आपके आने का?
1: हमारा वही मतलब 11 से 11:30 तक बीच में आ जाते हैं।
0: और रात तक?
1: 9:30 बजे तक।
0: अच्छा, चलिए, नौकरी आराम की है ना?
1: जी जी।
0: तो बताइए, कैसा लगता है आपको अपने यहाँ काम करने में? बेकरी में क्या क्या आइटम बनते हैं?
1: सभी बनते हैं, मतलब केक है, पेस्ट्री है, अपना बिस्किट है, कुकी, ये सब मतलब ब्रेड है, सभी आइटम मतलब बेकरी आइटम जो है।
0: आप भी कुक का काम करते हैं?
1: जी जी, मैं केक बनाता
0: हूँ। अरे वाह, कौन सा केक ज्यादा चलता है आपके यहाँ?
1: नॉर्मली चलता है पाइन एपल ब्लैक फॉरेस्ट जो चलते हैं, मतलब वही आदत है। हाँ, लेकिन पाइन एपल जो है वो मतलब हमेशा ये
0: हर व्यक्ति को पसंद आ सकता है पाइन एपल का, है ना? एक दिन में कितने केक बना लेते हो आप?
1: बन जाते हैं, मतलब जैसा अपना ऑर्डर हो, मतलब जैसा डिमांड रहता है, मतलब 60-70 के जैसे निकल, मतलब अपने मार्केट के ऊपर ही है जैसा चल जाए।
0: कितना समय हो गया इस काम में आपको लगे हुए?
1: 20 साल हो गए, 2002 से लगा था।
0: 20 साल का अनुभव बोल रहा है आपका। चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप?
1: विधाता पिक्चर का। मैम, हाथों की चंद लकड़ियों का, विधाता पिक्चर का।
0: गाने के बोल बताइए।
1: हाथों की चंद लकड़ियों का, ऐसा कुछ।
0: चलिए, आपकी पसंद का ही गीत सुनते हैं।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: मैडम जी राम राम।
0: नमस्कार। राम राम, कैसे हैं?
1: जी बहुत बढ़िया। मदाकिनी जी बोल रहे हो?
0: हाँ जी हाँ जी, अपना नाम तो बताइए आप।
1: हम बोल रहे हैं मैडम जी श्रवण कुमार रणवा, गांव हीरावाली, जिला फाजिलका, पंजाब से।
0: कैसे हैं श्रवण जी?
1: बहुत बढ़िया।
0: चलिए अच्छी बात है। और कैसा चल रहा है आपके शहर का मौसम?
1: शहर नहीं, हमारा तो गाँव है जी फाजिलका के 10 किलोमीटर के साथ ही। गांव के अंदर अच्छा माहौल है, खेत में मकान बनाया, अच्छा ठंडा हवा का मौसम है, थोड़ा बरसात हो जाता है थोड़ा थोड़ा, और बढ़िया है। अच्छा धान जो है लग चुका है अभी।
0: क्या धान लगाया?
1: चावल।
0: चावल की खेती हो रही है आपके यहाँ?
1: हाँ जी हाँ जी, वो चावल जैसे पहले समा पौध बीजा था, अब उसको उखाड़ कर दोबारा 20 दिन हो गया लगाए को।
0: अच्छा अच्छा, तो अभी खेती के अनुकूल है मौसम?
1: मैडम जी बरसात चाहिए, कोई परमात्मा से अरदास कर रहे हैं, और वैसे मौसम अच्छा है।
0: मतलब और बारिश की आपको जरूरत है ना?
1: बिल्कुल जी, अब हमारे बरसात की बहुत ज्यादा आवश्यकता है यहाँ चावल के खेती के अंदर।
0: बिल्कुल सही कहा आपने,
1: तकरीबन चावल की गन्ने की खेती है हमारे यहाँ।
0: तो चावल की खेती में क्या ध्यान रखना होता है, ज्यादा से ज्यादा किस बात की सावधानी रखनी पड़ती है?
1: जैसे एक माँ आपके बच्चे का ध्यान रखती है ना, इस तरह हम जमींदार को इसका ख्याल रखना पड़ता है।
0: ये बात तो खैर सही है।
1: दिन में 3 दफा घेरा लगाना, सुबह शाम दोपहर। क्या कोई कीट लग रहा है, कोई रोग लग रहा है, कैसा पानी पूरा हुआ कि नहीं, कहाँ खाद डालना है, कहाँ कम गिरा है, ध्यान रखना पड़ता है बच्चे की तरह।
0: बिल्कुल सही कहा आप। तो 3-4 महीने तक उसको पानी में रखते हैं लगभग, है ना?
1: नहीं नहीं नहीं जी, 4-5 दिन तक। उसके बाद में फिर एक दिन में पानी पूरा हो गया, दूसरे दिन कम पड़ गया तो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर उसमें पानी घुमा दिया, ऐसे मतलब चलता रहता। 4-5 महीने पानी भरा नहीं रहना चाहिए।
0: अच्छा, भरा नहीं रहना चाहिए, लेकिन आपको लगभग ध्यान रखना पड़ता है 4-5 महीने तक कि फसल सूखने न पाए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कि आप एक ऐसे किसान हैं जहां पर लहलहाती फसलों को आप देखते हैं।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप अपने खेत खलियान का ध्यान रखिए और बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको हम।
1: मैडम जी क्रांति फिल्म से सुना दो, चना जोर गरम।
0: चलिए, तो खेती तो आप चावल की कर रहे हैं और गाना सुनना चाहते हैं चना जोर गरम। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। दुनिया।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार।
1: जय बजरंगली सुतोता संघ बस स्टैंड बंदा विलेखे लक्ष्य को चाय वाले बोल रहे। चाय पी लो दीदी।
0: चाय पी रहे हैं आप इस वक्त? चलिए आप पीजिए चाय और हमसे बात करिए।
1: चाय की दुकान है दीदी।
0: अरे चाय की दुकान है आपकी?
1: हाँ दीदी।
0: तो पहले नाम बताइए फिर आपसे चाय बनाने के तरीके पूछते हैं। किस तरह की आप स्वादिष्ट चाय बनाते हैं?
1: लक्ष्मण रेखवाल।
0: लक्ष्मण जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बंडा वेली जिला सागर मध्य प्रदेश।
0: स्वागत है आपका। अब बताइए आपकी चाय की दुकान कहाँ है, कैसी है, कितनी बड़ी है और कब से खोली है आपने?
1: कम से कम 30 वर्ष हो गए हैं चाय की दुकान को।
0: अच्छा 30 वर्ष से आप ही संभाल रहे हैं अपनी चाय की दुकान?
1: हाँ हम संभाल रहे हैं और भाइयों को भी करवा जा रहे हैं। 3 दुकानें हो गई हैं अब चाय की। और नाश्ता है, और नाश्ता भी आप खाना हो तो केक मलाई की बर्फी है, और समोसा है, जलेबी है, मंगोड़ी है, रसगुल्ला है, ये सब मिलेंगे हमारे पास।
0: हमारे तो मुँह में पानी आ गया ये सब सुन के। तो लग रहा है काश आपकी दुकान के सामने होते तो खा लेते थोड़ा। तो बताइए आपकी चाय की क्या खासियत है, कैसे बनाते हैं चाय और कैसे पसंद आती है लोगों को? आते हैं लोग चाय पीने बहुत?
1: हाँ बहुत आते हैं। और चाय ऐसी रहती है कि अच्छा दूध होगा तो चाय अच्छी बनेगी।
0: हाँ ऐसे तो नहीं एक ही भगोने में बार बार चाय को उबालते रहते हैं?
1: ऐसा नहीं होता है, साफ होती रहते हैं। और ये हमारी तो चाय रखते ही रहती है, धरी नहीं रहती है।
0: हाँ तो किसमें पिला रहे हैं चाय? कूलर में पिला रहे हैं या प्लास्टिक के ग्लास में पिला रहे हैं?
1: गिलास में, कांच की गिलास भी है और कागज के डिस्पोजल भी है।
0: तो क्या डालते हैं चाय में फटाफट बताइए और फिर अपनी पसंद का गीत सुनिए। कैसे बनाते हैं चाय?
1: हम चाय बिल्कुल अच्छी बने तो अच्छी खोला लेते हैं, उसमें शक्कर पत्ती इलायची भी डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। जैसे ठंडों में अदरक डालते हैं
0: और गर्मी में इलायची।
1: हाँ
0: चलिए कौन सा गीत सुनवाएं आपको बताइए?
1: आज मोहरा पिक्चर है, ना कजरे की दाल ना मोतियों बिहार तुम कितनी सुंदर हो।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ त्रिपुरा से विश्वजीत पाल बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका। कैसे हैं बताइए अपने बारे में।
1: मैं तो ठीक हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं त्रिपुरा में रहती हूँ, मैं थोड़ा सा काम वगैरह घर में करता हूँ। मैं ब्लाइंड हूँ तो इसीलिए घर के साथ जो लोग रहते हैं ना, तो उसके साथ थोड़ा सा थोड़ा काम मिलजुल के करता हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो रेडियो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आपका कार्यक्रम हेलो फरमाइश है गीत, और जो 3 बजे गतिशैली कार्यक्रम आती है ना, तो उसको बहुत सुनते हूँ, बहुत अच्छा लगती है।
0: अच्छी बात है, आप कार्यक्रम सुनते हैं। तो अपने त्रिपुरा के बारे में बताइए, कैसा है आपका शहर, कैसा है ये जगह? प्राकृतिक रबड़ उत्पादक भी है आपके यहाँ तो त्रिपुरा?
1: हाँ, त्रिपुरा तो खेती रबड़ी खेती है, तो इसका तो ज्यादा लोग रबड़ी खेती करती है। तो हमारा इधर घूमने के लिए बहुत ही जगह है, तो इसके लिए पर्यटक आती है, तो घूम के जाती है, बहुत अच्छा लगता है, हरियाली है।
0: कहाँ कहाँ घूमा जाए त्रिपुरा में बताइए।
1: त्रिपुरा में त्रिपुरा माँ सुंदरी टेम्पल है, इसके बाद और बहुत जगह है घूमने के लिए। मैं तो त्रिपुरा माँ का मंदिर में गया था, तो बहुत अच्छी है मंदिर घूमने के लिए, बाहर से लोग आते हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है। और आपके यहाँ पर क्या बांस और बेंत के भी काम होते हैं, उससे बनी वस्तुएं या फर्नीचर बनाए जाते हैं, सजावटी सामान?
1: त्रिपुरा में तो खेती में बहुत अच्छी है बांस का, जो
0: काफी अच्छा सजावटी सामान बनते हैं ना, और हथकरघे का, हथकरघा का भी काफी काम होता है त्रिपुरा में। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: मैं नाम फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ, दम मरा दम मिटे जाए हम, हरे कृष्ण हरे राम।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश विविध भारती
1: जी। नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन बोल रहे हैं?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: स्वागत है आपका प्रेम जी, कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: जी मैं खेती किसानी का काम करता हूँ, और अभी खेत में ही काम कर रहे हैं हम, खरपतवार निकालने का जोरे चला रहे हैं। और बरसात हो चुकी है तो सोयाबीन की फसल लगाई है हमने।
0: क्या तैयारी करनी पड़ती है?
1: और आपको बताऊँ जी, जैसे पहले तो खेत को गर्मी में कुछ समय के लिए खाली छोड़ना पड़ता है, उसके बाद में ट्रैक्टर द्वारा अच्छी तरह से हकाई जुताई होती है, और फिर बरसात हो जाती है ना, तो उसमें फिर सोयाबीन की फसल लगाई जाती है।
0: अच्छा, और कितने दिन में फसल बनकर तैयार हो जाती है?
1: जी सोयाबीन की फसल हमारी, मतलब आपको बताऊं, 2.5 से 3 महीने में पक के तैयार होके कटाई भी हो जाती है। उसके बाद में जो फिर बताऊं आपको, जैसे भरपूर पानी हो जाता है ना, हर जगह कुएं, नदियां, तालाब भर जाते हैं, तो फिर सोयाबीन के बाद में गेहूं, लहसुन और मटर की फसल लगाते हैं।
0: अच्छा अच्छा, लगातार?
1: जी हाँ, लगातार होती है 2 फसल, उसके बाद में 3 महीने के लिए खेत को खाली छोड़ना पड़ता है गर्मियों में।
0: अच्छा, फिर उन 3 महीनों में क्या होता है?
1: उस समय खेत को खाली छोड़ दिया जाता है, तो जितने भी जीव जंतु होते हैं ना, जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, वो गर्मी में खत्म हो जाते, नष्ट हो जाते हैं, फिर से मतलब जमीन की उर्वरता बढ़ जाती है। और जैसे ज्यादातर मटर की फसल पैदावार होती है ना हमारे यहाँ पे, तो हम मंडियों में बेचते हैं।
0: तो आपको मटर की फसल सबसे अंत में करेंगे आप, है ना? जब सोयाबीन की फसल पक जाएगी, उसके बाद गेहूं, लहसुन और मटर की एक साथ करेंगे तीनों फसलें?
1: तीनों फसल एक साथ होती है।
0: अच्छा, फिर कटाई भी एक साथ ही होगी या इनमें अंतराल रहेगा?
1: हाँ, जैसे कि लहसुन और गेहूं की कटाई साथ में होती है, और मटर तो 2.5 महीने में पक के तैयार हो जाता है।
0: तो फफूंद से बचाने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि जब आपने बीज बोए हैं, फसल आएगी, तो फफूंद भी लग जाती होगी कई बार?
1: जी, जैसे तो बीज उपचार करके ही लगाया जाता है, और उसके बाद में जब फफूंद होती है कभी कभार, तो इल्लियां भी होती है सोयाबीन में, मटर में, लहसुन में, तो इसमें स्प्रे करना होता है रासायनिक कीट का, और वो भी मतलब ट्रैक्टर द्वारा होता है सब काम।
0: अच्छा।
1: और ट्रैक्टर के साथ में मजदूर लगाने पड़ते हैं। मोबाइल ऐप से आने से हमें, आपको बताऊं, स्पष्ट प्रसारण मिलता है, और मतलब कहीं पर भी जाए ना तो साथ में हमारे बीज भर्ती चलता ही रहता है, उसमें हम सुनते हैं सखी सहेली, हवा महल, सेहतनामा के तहत जो पहले भी चलता था ना कार्यक्रम, वो भी सुनते हैं, और पिटारा के तहत हमने काफी पहले भी पत्रा वाले जो कार्यक्रम आता था ना से, जी उसमें काफी लेटर लिखे।
0: बताइए, इतनी सारी बातें हो गई हैं आपसे, आप कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: फिल्म का नाम है प्यासा सावन, और गाने के बोले मेघा रे मेघा मत परदेश जा।
0: बिल्कुल सही गाना है, चलिए अभी सुनते हैं आपकी पसंद का ही गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मंदाजनी दीदी नमस्ते, मैं दूसरी बार बात कर रही हूँ आपके साथ मेरी।
0: अरे वाह क्या बात है, नाम तो बताइए अपना।
1: मैं विजय कुमार स्वामी, गांव बस्तवा, तहसील शोर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। दीदी
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: हाँ अच्छे हो, कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं। अच्छा बताइए क्या करते हैं आप विजय जी, बात तो हुई होगी आपसे।
1: मैं अभी सोशल वर्कर हूँ दीदी।
0: अच्छा,
1: उम्र अभी 63 है।
0: अच्छा तो समाज के लिए क्या काम करते हैं, विशेष कोई?
1: दिव्यांग के लिए काम करता हूँ, जो कुछ सरकारी योजना आते हैं वो उनके तक पहुँचने का काम मैं करता हूँ।
0: उनको आप बताते हैं कि कौन कौन सी सरकारी योजनाएं उनके लिए लागू हुई हैं?
1: हाँ, वो बताने का, वो उनका पेंशन, वो जो कुछ करने का,
0: फिर उनकी मदद करते हैं। हाँ ठीक है।
1: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं विविध भारती के सभी कार्यक्रम बहुत बढ़िया दीदी, सभी सखी सहेली, हेलो सहेली, हेलो फरमाइश, गीत माला, सभी सदाबहार नगर में अभी जो शुरू हो गए ना वो मंच है गीत, वो भी बढ़िया कार्यक्रम है।
0: उसके लिए आपने लिखा कोई खत? हमें
1: खत मैं लिखने, मैं ब्लैंड हूँ दीदी।
0: लेकिन कार्यक्रम सारे सुनते हैं ना?
1: हाँ सारे कार्यक्रम सुनता हूँ, दिन भर में रेडियो चालू रहता है, मैं कन्नड़ भी सुनता हूँ और इधर मराठी, हिंदी, इधर कोल्हापुर हमारे सांगली आकाशवाणी पास में है वो भी सुनता हूँ।
0: क्या बात है।
1: उसके बाद में 1 बजे से कोल्हापुर आकाशवाणी रिले करते हैं विविध भारती, शाम 6 बजे तक रहता है दीदी
0: वो सभी कार्यक्रम।
1: मैं एम पर सुनता हूँ विविध भारती का कार्यक्रम, जो हमारे राजकोट, अहमदाबाद, बड़ोदरा, उसके पर सुनता हूँ मैं।
0: क्या बात है, मतलब हर तरफ से आप विविध भारती को सुनते हैं?
1: ओ बिल्कुल,
0: कहीं ना कहीं बैंड चेंज कर करके सुनते रहते हैं कि कहाँ से इस समय आने वाला है।
1: दो रेडियो मेरे पास है, मैं 1970 से रेडियो का शौक है मुझे दीदी, और मैं पहले से मेरे जो ट्रांजिस्टर आते थे ना छोटे छोटे,
0: हाँ
1: वो लेके सुनता था।
0: वो अभी भी आपके पास है?
1: अभी भी नहीं, अभी वो नहीं है, अभी बड़े रेडियो, अपर्णा के 2 रेडियो है मेरे पास अभी।
0: अच्छा लगा आपसे बात करके, बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: पैसा फेंको तमाशे देखो, ममता जी और राजेश खन्ना का एक फिल्म है दुश्मन।
0: चलिए फिल्म दुश्मन का गीत सुनते हैं और हम भी सुनते हैं आपके साथ।

0: बेटा ये तमाशा देखोगे?
1: हाँ।
0: तुम बाद में देखेंगे ना?
1: नहीं, मुझे अभी देखना है। तुम तो बोलते थे कि मैं लाफा मार के दिखाऊंगा।
0: बेटा यहाँ लाफा नहीं चलेगा, तमाशे वाला बदल गया। चलो तो घर चले।
1: नहीं, मुझे अभी देखना है।
0: देखना?
1: हाँ।
0: चल बेटा।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्ते मंदाकिनी दीदी।
0: नमस्ते नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन जनाब बोल रहे हैं?
1: मैं बजनेरा अमरावती महाराष्ट्र से हिम्मतराव श्रृंगारे बात कर रहा हूँ दीदी आपसे।
0: हिम्मत जी स्वागत है आपका।
1: कैसे दीदी आप?
0: अच्छे हैं, आप बताइए।
1: मैं भी अच्छा हूँ दीदी।
0: क्या बात है, अच्छी बात है। क्या कर रहे हैं इन दिनों?
1: मजदूरी का काम करता हूँ दीदी मैं।
0: अच्छा, जैसे
1: बिल्डिंग का काम होता है ना, वहाँ पर काम करता हूँ दीदी मजदूरी।
0: तो क्या टाइमिंग्स रहते हैं? सुबह 7:30 से पहुँच जाते हैं आप वहाँ पर और शाम के 7 बजे तक काम करते हैं?
1: शाम के 5 बजे छुट्टी हो जाती है, 10 बजे जाता हूँ मैं।
0: अच्छा, बहुत मेहनत होती होगी गर्मी में तो और भी।
1: हाँ दीदी, बारिश नहीं हो रही ना अभी इधर अमरावती में, कुछ कुछ जगह हो रही दीदी बारिश।
0: तो बताइए आप वहाँ काम करते हैं, फिर ये प्रोग्राम कब सुनते हैं जैसे आप अभी हमें कॉल कर रहे हैं?
1: अमरावती स्टेशन पे FM लगा रहता है, वो साइट पर सब मजदूर लोग सुनते हैं दीदी बडनेरा अमरावती में। तो अमरावती स्टेशन है हमारा 101.5 पर आता है, तो वहाँ विविध भारती हमको क्लियर सुनाई देता है।
0: और बीच में कॉल करने की इजाजत है आपको जैसे अभी आप हमें कॉल कर रहे हैं?
1: हाँ, हम 11 बजे ड्यूटी से छुट्टी निकाल लेते हैं दीदी, आधा घंटा 1 घंटे के लिए।
0: अच्छा बताइए, आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: फिल्म का नाम है धर्मा और गाने के बोले राज की बात कह दूँ तो की बात राज रहने दो।
0: अच्छा,
1: इशारों को इशारों में।
0: हाँ, ये कव्वाली है।
1: हाँ, मोहम्मद रफी साहब है
0: और आशा भोसले की आवाज में। आशा भोसले
1: और बिंदु और प्रांत के ऊपर फिल्म आएगी, फिल्म कव्वाली दीदी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार कव्वाली है।
1: और रेखा नवीन निश्चल इसमें अभिनेता थे, हीरोइन थी।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद की है कव्वाली।

0: आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें, ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222867 02 88 0222400 2462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेकी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से 5 बजे हिंदी में और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की 5वीं बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
2: There is an urgent need for us.
3: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1.70 अरब लोग रहते हैं जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक साथ आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन की तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने

0: सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों पर तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति वीबी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे 9वीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। यह टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में विश्व आर्थिक मंच के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने बताया कि उन्होंने सतत विमानन ईंधन को बढ़ावा देने, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेकऑफ अर्थात जमीन से सीधे उड़ान और लैंडिंग के लिए बुनियादी ढांचे के बारे में चर्चा की। विद्युत मंत्रालय ने हितधारकों के परामर्श के लिए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता 2027 मानदंडों का आज मसौदा जारी किया है। ये प्रस्तावित मानदंड 2027-28 से 2031-32 की अवधि के दौरान देश में बिक्री के लिए निर्मित या आयात किए जाने वाले M1 श्रेणी के यात्री वाहनों पर लागू होंगे। M1 श्रेणी के अंतर्गत वे मोटर वाहन आते हैं जो यात्रियों को ले जाने के लिए डिजाइन किए गए हैं और जिनमें ड्राइवर के अलावा 8 से अधिक यात्रियों के बैठने की क्षमता नहीं होती है। मंत्रालय ने 6 अगस्त तक इस मसौदा मानदंडों पर हितधारकों और आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इस खंड पर यह अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। भारतीय नौसेना 20 से 23 जुलाई तक दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 26-2 की मेजबानी करेगी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 4 दिवसीय बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भारतीय नौसेना के नेतृत्व वाला संयुक्त कार्यबल 154 संयुक्त समुद्री बलों CMF के साथ मिलकर कर रहा है। यूक्रेन की संसद ने आज एक बड़े सरकारी फेरबदल में सर्ही कोरित्स्की को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने की मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कोरित्स्की को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया। कोरित्स्की मई 2025 से यूक्रेन की राष्ट्रीय तेल और गैस कंपनी नाफ्टोगाज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा विस्तृत अनुष्ठानों और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हो रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरम मुज्तबा। National Security Advisor Ajit Doval has underscored the need for closer regional cooperation to tackle evolving security challenges amid global geopolitical conflicts. He said BIMSTEC member states need to work together and take decisive actions for their mutual benefit. He was speaking at the 5th meeting of the BIMSTEC National Security Chiefs in New Delhi today. Mr. Doval said BIMSTEC member nations have significantly advanced cooperation in combating terrorism, transnational organized crime, cyber threats, and maritime security challenges. He added that BIMSTEC countries are poised to combat new and emerging threats together. Supreme Court today voiced concern over the introduction of a third language in Class 9 under the CBSE curriculum, observing it would increase the stress level of students. The Apex Court has suggested that it be introduced in Class 5 or 6 so that students can cope with it. Hearing another case, the Apex Court today directed all states and union territories to formulate and implement a comprehensive policy for the early or premature release of prisoners who are of advanced age or are terminally ill. The court ordered that the policy be framed and notified within 3 months to ensure a uniform mechanism for considering such cases across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station tomorrow during his visit to Haryana. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capability.

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्मी भजन, और सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में ये भजन, जिसे हमने लिया है फिल्म नास्तिक से।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मों से भजन। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवा मंच।

युवा साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका युवा मंच कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ नर्मदा शर्मा। आज है बृहस्पतिवार यानी थर्सडे, वीरवार। तो आज हम बात करते हैं रोजगार समाचारों पर और साथ ही जानकारी देते हैं आपको विज्ञान जगत के बारे में। तो ये सब जानकारियां आपको दी जाएंगी एक ब्रेक के बाद। और

0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
0: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
1: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available.
0: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
0: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
0: And now, it's yours at an effective price of just rupees 6.70 lakh.
1: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
0: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
0: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
1: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available.
0: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
3: तो युवा साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से युवा मंच कार्यक्रम में। बात करते हैं रोजगार के बारे में। हिमाचल प्रदेश रोजगार समाचार जुलाई 2026 तक उपलब्ध। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती पुरुष एवं महिला कांस्टेबल के 734 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें न्यूनतम योग्यता 12वीं पास, चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण, मेडिकल और दस्तावेज सत्यापन शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग में 105 अतिरिक्त पद हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट यानी ओटीए 60 पद और रेडियोग्राफर के 30 पद, वरिष्ठ प्रयोगशाला टेक्नीशियन के 15 पद, कुल 105 अतिरिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2026 बताई गई है। वित्त एवं लेखा सेवा ने हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने 26 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। ऑनलाइन आवेदन 5 अगस्त 2026 तक किए जा सकते हैं। सहायक प्रोफेसर भर्ती हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने कॉलेज कैडर के 373 सहायक प्रोफेसर पदों के लिए भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया परीक्षा अगले चरण की सूचना में बताई जाएगी। जल शक्ति विभाग में विभिन्न पद कई मंडलों में पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टीपर्पस वर्कर पदों के लिए भर्तियां जारी की गई हैं। एक ब्रेक लेते हैं, सुनते हैं एक गीत।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी। सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
1: तो युवा साथियों, युवा मंच कार्यक्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं विज्ञान जगत पर। विज्ञान केवल किताबों का विषय नहीं है, ये जिज्ञासा, खोज और नए विचारों की दुनिया है। जो युवा बहुत ही क्यूरियस रहते हैं, यानी छोटी छोटी बातों में बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, वही भविष्य के वैज्ञानिक, इंजीनियर और नवप्रवर्तक बनते हैं, क्योंकि उनमें बहुत कुछ जानने की इच्छा रहती है। विज्ञान को समझने और साझा करने से युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित होती है। तो आज हम विज्ञान जगत की कुछ खास बातों पर बात करेंगे। भारतीय निजी अंतरिक्ष कंपनी का एक बहुत बड़ा कदम है। भारतीय स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस अपने पहले ऑर्बिटल रॉकेट यानी विक्रम एक के प्रक्षेपण की तैयारी कर रहा है। यह मिशन भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर वैज्ञानिक पौधे उगाने का प्रयोग कर रहे हैं। इसका उद्देश्य भविष्य में चंद्रमा और मंगल पर रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था विकसित करना है। नासा के भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन 8 महीने के मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर हैं। वहां वे वैज्ञानिक प्रयोग और स्टेशन संचालन में योगदान भी देंगे।
0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।

0: तो युवा साथियों, युवा मंच कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं विज्ञान जगत पर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका बढ़ता उपयोग। आज एआई केवल मोबाइल ऐप तक सीमित नहीं है, इसका उपयोग चिकित्सा, मौसम पूर्वानुमान, कृषि और अंतरिक्ष अनुसंधान में भी किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में एआई विशेषज्ञों की मांग और बढ़ने की संभावना है। और आज विज्ञान जगत की जानकारी के साथ साथ एक तथ्य आपको बताते हैं कि मानव शरीर में मौजूद डीएनए को यदि पूरी तरह खोल दिया जाए तो उसकी लंबाई लगभग 2 मीटर तक हो सकती है, जबकि वह हमारी कोशिकाओं के भीतर सूक्ष्म रूप में समाया रहता है। और अब एक ब्रेक।
1: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।

तो युवा साथियों, इस गीत के साथ ही आज का युवा मंच यहीं पर संपन्न होता है ये कार्यक्रम। अनुमति दीजिए, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 5:55 हुए हैं, आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ ही देर में शाम 6:05 पर आप सुनेंगे सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सुरमई सांझ। मौजा ग्राई दिया कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:30 और 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:00 सुनिएगा विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस और 8:15 पर भगवान जगन्नाथ यात्रा पर आधारित रेडियो रिपोर्ट आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएगी। आकाशवाणी दिल्ली से शाम 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार, 8:45 पर समाचार संध्या, रात्रि 9:00 News@9, रात्रि 11:00 हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले किए जाएंगे। रात्रि 9:15 पर एक ही कलाकार में आप सुनेंगे अभिनेता संजीव कुमार पर फिल्माए कुछ गीत। रात्रि 9:30 पर रंगे गजल में आप सुनेंगे फिल्मी और गैर फिल्मी गजलें। रात्रि 10:00 हिमाचली गीत व लोकगीत आपको सुनवाए जाएंगे। पुरानी फिल्मों से गीत आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। कार्यक्रम रहेगा चित्रपट संगीत। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:00 को हैं, अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार जिला अस्पतालों व सभी 7 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ कर रही है। आज शिमला में स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर, कुल्लू, ऊना, धर्मशाला, पालमपुर व सोलन और जिला अस्पताल किन्नौर, डॉक्टर वाई एस परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल नाहन में 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीनें स्थापित की जाएंगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जिला अस्पताल नाहन व हमीरपुर, क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर,

0: सोलन और धर्मशाला में डिजिटल मेमोग्राफी मशीनें भी लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि 42 हैंड हेल्ड एक्सरे मशीनों की खरीद प्रक्रिया जारी है, जिनमें से 14 मशीनें प्राप्त हो चुकी हैं। इन मशीनों का उपयोग राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में लोगों की जाँच के लिए किया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की चनावग पंचायत में 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली पटियार घाटरू बैरटी नाला वाया सीतरी जायन और जुट खुरान संपर्क सड़कों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने राजकीय प्राथमिक पाठशाला जुड़ के नव निर्मित भवन का लोकार्पण भी किया। इससे पहले विक्रमादित्य सिंह ने हरसिंह धार मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिन दो संपर्क सड़कों का आज शिलान्यास किया गया है, उनका निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाएगा। सोलन जिला के खील जशली और आसपास के कुछ गांवों में अवैध निर्माण, हिल कटिंग और बेनामी जमीनों के सौदों के खिलाफ उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। एक गैर सरकारी संस्था द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने वन विभाग को 1 सप्ताह के भीतर जांच कर स्थिति की रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता प्रिया सकलानी ने कोर्ट में बताया कि इन क्षेत्रों में धारा 118 का उल्लंघन कर हिमाचल की जमीनें बेची गई हैं। उन्होंने कहा कि बाहरी बिल्डरों ने नियमों को ताक पर रखकर यहां बहुमंजिला इमारतें बना दी हैं, जिससे स्थानीय लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है।
1: जो चीजें सामने आई और जो हमने एक्सप्लोर करी और बहुत उसमें मेहनत करके पता लगाया कि एक्चुअली ये क्या है, यहाँ प्रशासन ने इस गांव को एक आसपास की जगहों पे आंखें क्यों बंद की हुई हैं? पंचायत ने 5 साल वहां पे कदम नहीं रखे। जो काम करती थी एनजीओ करती थी, जितनी भी बिल्डिंगें बनी हैं वो सारी बेनामी सौदे हैं। जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है उस कंस्ट्रक्शन में इतनी धांधली है, कोई स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट नहीं, कोई सॉयल सर्टिफिकेट नहीं, कोई टीसीपी परमिशन नहीं। 3-3 बिस्वे के लैंड है और उसपे 9-9 मंजिले बिल्डिंग बनी हुई है, जिसमें हमें पता चला ये सारे ही 118 की वायलेशन बेनामी सौदे और नोटराइज डीड्स पे बिके हुए हैं।
0: प्रदेश सरकार द्वारा नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2,28,00,000 रुपए की अवैध चल व अचल संपत्ति जब्त की है। शिमला पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई कोटखाई और बालूगंज थाने में NDPS एक्ट के तहत दर्ज मामलों पर की गई है। ASP शिमला मेहर पवन ने बताया कि वर्ष 2026 में अब तक 6 मामलों में 24 आरोपियों से 4,11,00,000 रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़ा इस साल प्रदेश में केवल शिमला जिला पुलिस द्वारा की गई सबसे बड़ी फाइनेंशियल कार्रवाई है।
2: तस्करी के खिलाफ जिला शिमला पुलिस द्वारा एक ऑलराउंड अभियान छेड़ा गया है। वर्ष 2026 में जिला पुलिस शिमला द्वारा फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर अब तक कुल 4,11,00,000 की संपत्ति 6 केसों में 24 आरोपियों की जब्त की जा चुकी है, जो इस वर्ष हिमाचल प्रदेश के किसी भी जिला पुलिस के द्वारा किए गए फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में सबसे अधिक है। जिला शिमला पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध केवल गिरफ्तारी ही नहीं की जाएगी, बल्कि अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों की पहचान कर उन्हें भी विधि अनुसार जब्त किया जाएगा।
0: प्रदेश सरकार ने कांगड़ा के 131 पौंग विस्थापित परिवारों को जमीन का मालिकाना हक देकर 5 दशक पुरानी समस्या का समाधान किया है। झकलेड़, खैरियां, छप्पर, भटोली, फकोरियां और भंगोली के पात्र परिवारों को भूमि के पट्टे मिलने से उन्हें अब स्थायी निवासी प्रमाण पत्र सहित अन्य राजस्व दस्तावेज बनवाने में आसानी होगी। विस्थापित परिवारों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताते हुए कहा कि वर्षों से मालिकाना हक नहीं मिलने के कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।

FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 6:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं सदाबहार गीतों का ये कार्यक्रम सुरमई सांझ।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आप सुन रहे हैं ये गीत फिल्म शागिर्द से। और अगला गीत सुनने से पहले कुछ संदेश सुन लेते हैं।
1: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
2: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
3: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में एचआईवी, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
4: गर्भावस्था की पहली तिमाही में एचआईवी, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
5: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
6: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
5: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
6: And now it's yours at an effective price of just ₹6.70 lakh.
5: Yes, 6.70 lakh rupees, valid till 31st July.
6: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
5: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
7: Nexa.
6: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
5: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
6: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
5: Equipped with features like a 360 degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
6: And now, it's yours at an effective price of just ₹5.59 lakh. Yes, ₹5.59 lakh. Valid till 31st July only.
5: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
7: Nexa.
0: सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं, कार्यक्रम है सुरमई सांझ, हाबड़ा ब्रिज। इस फिल्म का ये गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में।

0: Bring home the bold Baleno today. TNC apply.
1: Pexa.
2: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
3: एक लड़की भीगी भागी सी।

बिल्कुल, क्या कोई ये बात है, शिकायतें बहुत हैं इंसान की फितरत में, शिकायतें बहुत हैं इंसान की फितरत में, कल धूप से परेशान था और आज बारिश से। किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म चलती का नाम गाड़ी से। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है आई मिलन की बेला और गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
2: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 5.59 lakh. Yes, Rs. 5.59 lakh. Valid till 31st July only.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
3: Nexa. सुरमई सांझ में आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में अब हम आपको सुनवा रहे हैं जीवन मृत्यु फिल्म का ये गीत।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
2: And now, it's yours at an effective price of just rupees 6.70 lakh.
1: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa.

तो श्रोताओ, किशोर कुमार की आवाज में गाए इस गीत के साथ ही आज का सुरमई सांझ कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम और जांगराइंदियां।

0: जी मासनी जी, तो दिखा जी अंब पकी पे हो है ना जी। यहाँ लोग गीत सुने का ना आशा करते कि भाई इस अंबां दे मौसम बीच जेड़ा सा ये लोग गीत भी हड़े श्रोते हैं जेड़ा सा पसंद आया होना।
1: बिल्कुल रसीलू
0: कना
1: राम जी,
0: पक्या
1: जालू
0: पक्या अंबा भी हड़े श्रोता जेड़ा सा खूब खा दे होने अजकल
1: बिल्कुल
0: है ना जी।
1: रसीलू राम जी, तुहाड़ा तां नां ही तां पे है भई तुहां अंब बड़े वरी चूपदे हे ना,
0: हाँ
1: तां ग्राएं वालियां बोले दा नां ही रसीलू राम रखी जाणा
0: हाँ
1: बोले
0: बिल्कुल,
1: आ।
0: रस जेड़ा सा अंबा दा है ना जवानी चाहिए है ना जी।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल,
0: धन्यवाद भैन जी। कना दिखा जी एक बारी फिरी ते चलते अहाँ अपनी खेत खलिहान की तरफ, कने गल करा दे अहाँ के बरसात दे मौसम बीच पौध संरक्षण कियां करना, अहाँ पौध नोई तैयार कियां करनी है। तो
1: जी
0: दिखा जी बरसाती दा मौसम जेड़ा सा इस कम्मे वास्ती बड़ा वधिया हुंदा, क्योंकि इस मौसम बीच कई प्रकार दे ऐसे हड़े पेड़ भी हैं जिन्हें जो अहाँ लगाई के जेड़ा सा अपनियां जमीना दा बचाव भी कर सकते, जियां भूमि कटाव दा भी बचाव कर सकते।
1: बिल्कुल जी
0: कने
1: बिल्कुल, साड़ी
0: अगर
1: खरी मिट्टी जड़ी है सह रुड़ी आंदी ता
0: हाँ
1: वृक्ष लगाने ने सह जड़ी है बची आंदी।
0: बिल्कुल, कने अग्गे जाई के जेड़ा सा ऐसे पेड़ पौधे होंदे जेड़ा हाँ जो कई प्रकार दे फायदे भी दिंदे, जियां कि अजकल हाँ गल करिए एक बदो ले लिया तो हाँ सफेदा ले लिया, तूत ले लिया, ये इस प्रकार दे पॉपुलर ले लिया, ये इस
1: जी
0: प्रकार दे पेड़ हैं भैन जी के दिखा तो हाँ। अगर एक छोटी दी सह बोलते ने एक तिना दी डंठली भी तो
1: बांगे
0: हाँ
1: तो पे
0: है ना
1: लगी आंदे
0: पे कट्टी के लगाएंगे तो सह भी जेड़ा सा लूंगी पौंदी। कने
1: दिखा
0: दिखा
1: ना रसीलू राम जी,
0: हाँ
1: बरसाती दा मौसम ही ऐसा है कि भई तुहां चलदे चलदे भी रुख बूटा लाएंगे तो सह भी
0: हाँ
1: लगी आना है, पर अहां जड़ा है ना कोई भी रुख बूटा लाना है तहां एक प्रमाणित नर्सरी ते ले के लगाना है कि जड़ा
0: हाँ
1: खरा लगी आए जिस ते साड़ी मेहनत जड़ी है से हथे होए, कने जालू हाँ इतनी मेहनत ने तीयो लगांदे बच्चियां सही पाल दे तीदा ध्यान दिखा बंदरां ते रखा दे पक्षियां ते रखा दे माणुआं ते भी रखा दे है ना,
0: बिल्कुल
1: ता
0: बिल्कुल
1: सब चीजें ते रखा दे ता अहां एक उसकी देखभाल जड़ी है से बच्चियां ही करा दे, अहां क्या करा दे कि सांजो जड़ा इस ते खरा मुनाफा होए।
0: बिल्कुल। कहना दिखा जी मुनाफे दी गल भी एक तरफ है, कहना दूई
1: जी
0: गल ये है कि जलू भी ऐसा बोलते ना कि धरती है उपर हरियाली होगी ना जी,
1: जी
0: तो सह हांजो तो अंजो ही नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियां जो जेड़ा सह मतलब फायदा पहुंचाती। अगर तो हाँ एक किसी भी प्रकार दे पेड़ ले लिया, चाहे सह तो हाँ फलदार पेड़ है या
1: चाहे
0: दूए
1: दूए
0: है ना
1: बिल्कुल
0: जी,
1: जी बिल्कुल
0: इमारती लकड़ी है, चाहे किसी भी प्रकार का कोई पेड़ है, दिखा जी पेड़ कदी भी तो अंजते कुछ नहीं लेंदा।
1: बिल्कुल रसीलू
0: पर
1: राम जी खरी गल गला
0: हाँ
1: दे, दिखा सांजो जेड़ा ऐसे जीने ताई सांह दी जरूरत हुंदी
0: बिल्कुल
1: ता
0: बिल्कुल
1: साड़ी ऑक्सीजन जेड़ी है सारी जेड़ी है सांजो पेड़ां ते ही मिलदी, कने साड़ी द्वारा छड़ी हो गई यो कार्बन डाइऑक्साइड जेड़ी है से पेड़ ही लैंदे, कने दिखा हाँ हर एक अपने साए जो जेड़ा खरा बनांदे, नहीं तो अगर ये पेड़ ना हो तो हांजो तो कोई स्वासियां ही बीमारियां पता नहीं क्या क्या जेड़ा ऐसा है वो ही आए, क्योंकि साढ़े इत्थों दी हवा जो जेड़ा ऐसा सारे शुद्ध करा दे, कने अगर दिखा सांजो साड़ी फसलां च या फलदार पौद्या च कुछ भी सुझदा है कीड़ा लगे या बीमारी लगी हो तो सांजो कृषि विभाग दे अधिकारियों ने संपर्क करके जेड़ा ऐसा हल पुछना चाहिए, कने तीदा निवारण जेड़ा ऐसा जरूर करना चाहिए, कने
0: बिल्कुल
1: कने दिखा साड़ियाँ मधुमक्खियां जड़ी होंदियां से परागण च बड़ी बड़ी भूमिका निभा दियां, तां अजकल जड़ियां साढ़े बूटियां च फुल पौंदे या फल लगदे तां इस च भी सब बेचारियां होंदियां, तां हाँ कोई भी ऐसियां दवाइयां दा जहरीलियां दवाइयां दा छिड़काव नहीं करना है जिस ते तिना दा नाश होई या ऐसे खत्म हो जान।
0: बिल्कुल। कहना दिखा जी पर्यावरण संरक्षण बीच गल करिए या फिर यहाँ धरा संरक्षण की गल करिए या पेड़ पौधे संरक्षण की गल करिए,
1: जी
0: हाँ जो हर वक्त जरा ऐसा प्रयासरत रहना चाहिए,
1: जी
0: क्योंकि ये ही चीज़ें ने जड़ा हाड़ा तोड़ा संरक्षण जेड़ा सा युगा युगा तक कर दी आई हैं,
1: दिखा
0: कहना
1: एक
0: गां भी करना है
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, एक
0: तो
1: पीपल या बूटा होंदा कोई सहा नहीं
0: हाँ
1: उगाया होंदा कई सालों ते है पीपल बदा तो होंदा, कने
0: जी
1: उदियां
0: जी
1: जड़ां जड़ियां सै कई बारी कई बूटे तो ऐसे होंदे कि उपरे ते थल्ले तक पुजी ही होंदियां दुआरियां ते दियां, तो तिना
0: कुदरत सही
1: बूटे जो
0: बोलते
1: दिखी के
0: ना
1: लगदा
0: भैन जी
1: बिल्कुल
0: के
1: जी
0: जेड़ा कुदरत है ना, कुदरत तो अपने आपे सह बोलते ना कि करी लैंदी,
1: जी
0: पर अहाँ तो हाँ जेड़ा सह कुदरत ने ज़्यादा तो ज़्यादा छेड़खानी करा दे जिते दूरगामी परिणाम सन जो दिखने मिला दे, कने
1: जी
0: हाँ जो नुकसान भी दिखने मिला था। सारिया गलों का एक ही निचोड़ है कि ज़्यादा तो ज़्यादा पर्यावरण संरक्षण बच्च अहाँ तो हाँ योगदान दिन, ताकि सारे ये पर्यावरण ये तारा कने अहाँ तो हाँ सारे जड़ा सा सुरक्षित रहन स्वच्छ रहन है ना जी।
1: बिल्कुल जी
0: तो गल्ला बातें फिरी एक बारी ते अहाँ विराम देना, कने फिरी ते सुनने कुछ एक सन्ने, कने फिरी ते एक लोकगीत।
1: जी
2: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
3: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
4: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
3: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
4: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
5: Nexa.

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजां ग्राइंदियां। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बजे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में और लगभग 1,00,00,000 किसानों से संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अल नीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
2: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलेंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ ICR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक साथ आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन की तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत सरकार का लक्ष्य है और इससे भारत का एक वैश्विक शक्ति बनेगा। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में यह मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित यह रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर इस्तीफा सौंपा। इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुखेंद्र शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश सिक बराइक ने इस्तीफा दिया था। बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। ओडिशा के पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ में एक श्रद्धालु की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को खींचने के समारोह के दौरान श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ के कारण यह दुर्घटना हुई। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताज़ा समाचार मिलने तक 20 ओवर में 2 विकेट पर 110 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Union Agriculture and Farmer Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has said that India has recorded a production of 376 million tons of food grains and 377 million tons of horticultural produce this year, despite challenges like climate change. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Chauhan said that the scientists are now going directly to the fields to work alongside the farmers. He highlighted that under the Khet Bachao Abhiyan, 1,657 scientific teams reached out to 728 districts, specifically those likely to be affected by El Nino, and engaged with around 1 crore farmers. India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandavia said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas. National Security Advisor Ajit Doval has underscored the need for closer regional cooperation to tackle evolving security challenges amid global geopolitical conflicts. He said BIMSTEC member states need to work together and take decisive actions for the mutual benefit. Mr. Doval was speaking at the fifth meeting of the BIMSTEC National Security Chiefs in New Delhi today.
4: BIMSTEC's long-standing goals of regional security, connectivity, capacity building, and economic security should continue to drive our collective efforts. For India, BIMSTEC represents our vision of neighborhood first, our commitment to Act East policy, and the Mahasagar vision, which stands for mutual and holistic advancement for security and growth across regions.
3: Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind railway station tomorrow during his visit to Haryana. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. The launch marks a significant milestone in the country's transition towards clean and sustainable mobility in the railway sector. The sacred city of Puri in Odisha is immersed in an ocean of devotion as the world-renowned Rath Yatra of Lord Jagannath is progressing with immense religious fervor. The ceremonial pulling of the three majestic chariots of Lord Jagannath, Lord Balbhadra and Devi Subhadra commenced this afternoon following the completion of the sacred Pahandi, Bije and Chera Pahandra rituals. Lakhs of devotees are participating in the pulling of the colossal wooden chariots along the Bara Danda towards the Sri Gundicha temple, revered as a maternal aunt's abode of the sibling deities. Meanwhile, one devotee lost his life and several others sustained injuries in a stampede during the Rath Yatra. The injured were immediately evacuated by emergency response teams and shifted to nearby hospitals. The district administration, police and fire services swiftly launched rescue and crowd management operations to restore normalcy. In Kerala, the hill shrine of Sabarimala opened this evening for the monthly pujas of the Malayalam month of Karkidakam, witnessing a massive rush of pilgrims from the very first day. The Sanctum Sanctorium was opened at 5 p.m. by the head priest in the presence of the chief priest, who then lit the ceremonial lamp. Special rituals and regular pujas will commence at 5 a.m. tomorrow, the first day of the Karkidakam, and will continue until the temple closes on July 21st. The United States intensified its strikes on Iran early this morning, hitting targets further north, as American forces also fired into a ship. The U.S. accused the ship of trying to break its naval blockade on the Islamic Republic. Iran retaliated with missile and drone fire targeting U.S. allies in the region before dawn and warned its attacks may escalate. Iranian officials said recent U.S. strikes have killed more than 35 people and injured over 300 others. In men's cricket, India were 111 for 3 in 20.3 overs against host England in the second one international of the three-match series in Cardiff when reports last came in. Earlier, England won the toss and opted to field, India leading the series 1-0 after defeating hosts by 6 wickets in the first one day in Birmingham on Tuesday. And that is the end of this news bulletin.
0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: अहाँ देखा दे घरें घरें बोरवैल लगी चुके हो, है
1: जी
0: ना जी। तो देखा जी, जरूरत दे हिसाबें ही जेड़ा सा पानी जमीन ते निकालना है, जितनी जरूरत है उतना ही निकालना है। ऐसा
1: जी
0: नहीं है कि इसकी बर्बादी जेड़ा सा अहाँ तो हाँ करना।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल। पानी दी अहाँ एक एक बूंदा की कीमत समझनी है। दिखा जल है तो कल है, कने दिखा अहाँ खेतों च मेड़बंदी करी सकते, तालाब बनाई सकते, ड्रिप सिंचाई जो बनाई सकते, स्प्रिंकलर जड़े हैं तिना का प्रयोग करी सकते, कने आधुनिक तकनीक जो अपनाई के जड़ा सा पानी का बचाव करी सकते। दिखा पानी का बचाव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस गल्ला जो हाँ जो समझी आना चाहिए। पानी जो हाँ बिल्कुल भी जड़ा ऐसा दुष्प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है ना। एक एक बूंद अहाँ बचा है, कोई नलका चूड़ा वो एकदम जड़ी है हाँ से रिपेयर वगैरह करानी है, जिससे से
0: बिल्कुल
1: ठीक रहे, कने पानी की बर्बादी बिल्कुल ना होए।
0: बिल्कुल। कने अहाँ तो हाँ, अगर किसान गल करिए पानी बचाने दी,
1: जी
0: इदे संरक्षण दी, तो अहाँ तो हाँ एक होर कने सारे ते बड़ा काम ये कर सकते कि प्राकृतिक विधि ने खेतीबाड़ी करन। तिसते क्या होंदा कि पानी दी जरूरत हाड़ी तुहाड़े खेतां भी घट होंदी, कने ऐसा बोलते ना कि जमीन का स्वास्थ्य भी जेड़ा सा अच्छे ते
1: सुधरी
0: अच्छा
1: आंदा
0: रहिंदा।
1: बिल्कुल जी
0: तां साड़ी तुहाड़ी कोशिश यही रहना चाहिए कि जल संरक्षण विच ज़्यादा तो ज़्यादा योगदान हांजो तुहांजो देना, तिसते कि हांजो तुहांजो पानी पीने ताई ले लिया, जरूरतों ताई ले लिया, या फिर खेतों की सिंचाई करने ताई ले लिया, किसी प्रकार की कोई समस्या अगे जाए के पैदा ना हो, है ना
1: कने
0: जी।
1: दिखा। अगर साढ़े ग्राएं च कोई खूह है बोड़ी है तो तिदी साफ सफाई का ध्यान जरूर रखना है कि
0: हाँ
1: यहाँ पूरा
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: साल साफ सुथरा पानी पीन, तिदे बखे डंगर बच्छू भी नहीं नुहाने, कपड़े भी नहीं धोने, तिदा पानी जेड़ा पीने का तिदा प्रयोग सिर्फ आप पीने ताई ही करना है।
0: बिल्कुल। कहना दिखा जी, स्वस्थ पानी पींगे तो तुहां भी जेड़ा सा है
1: स्वस्थ
0: स्वस्थ
1: रहेंगे
0: रहना, है ना जी।
1: बिल्कुल जी
0: तो दिखा जी, गल्लां बातें देना छोड़ा दिया विराम, कने चलना अहाँ एक लोकगीत की तरफ। कने लोकगीत विच सुनना, बाबा जी तेरे कुंडलू में बाल, है ना जी।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल।

0: बोल देना कि खुराक पूरी खाधी हो ना है ना, हल्ली भी तो हाँ इस टाइम भी जड़े खेतर इतनी धुप्पा च काम करा कर देना
1: बिलकुल जी बिलकुल
0: है ना, जड़ी तो फसल अपनी बांधते है या सब्जी जड़ी भी है कदी ऐसा भी हो जी कोई बीमारी वगैरह
1: आई बीमारी
0: क्या करते फिर
1: दवाई भी छिड़कना पैदा माड़ा मोटा अपने अपने पर्सन जी चीजा है घरेलू वह भी नुकते हैं यूज करना पौधे जिस भी फर्क पी जाता नहीं पवे तो फिर बहरों बाजारों में लैनी पैंती कंटेनर दवाई वगैरह
0: हाँ जी
1: वो भी प्रयोग करना पैदा
0: जी। तो देखा सिकंदर जी कई तरह दसिया ट्रेनिंग लगदिया कई तरह ऐसे कैंप लगते खेती दे तो भी कुछ ऐसी सिखलाई ले कि
1: बिलकुल कई बार सिखलाई तो नहीं पर कैंप जरूर अटेंड करते उन्होंने विचार अस सुनते हैं उन्हें अपने दिमाग च बिठाते हैं उन्हें अस प्रयोग करते हैं।
0: हाँ जी देखा चलो हाँ कुछ बहर जाते हैं ना सीखना
1: हाँ जी
0: देखा हाँ चलो ग्राए चाहिए चौं बंदे और सिखाते हैं ना देखा जी आनंद ही कुछ हो रहा है ना
1: बिल्कुल कहेंगे साझा करते ना आपू च मिली जुली के कि भाई हाँ गल सीखी आए तुम भी सीखा कहते तो भी अगर डिवेलप होगा कि हाँ किले अपने अंदर रखे गए दूए दूए आदमी के डिवेलप होना।
0: हाँ जी हाँ जी
1: ठीक है जी
0: जी सिकंदर जी इदे अलावा घर है माल बच्छू क्या रखे
1: हाँ दो गाय रखी जी
0: हाँ जी
1: एक बकरी रखी है तीन तीन बच्चे दते हो।
0: अच्छा
1: हाँ जी हाँ जी
0: गाय कुछ नस्ल दिया ने
1: नस्ल है ना मतलब के जर्सी दिया गाय ने तो नहीं।
0: अच्छा दूध दिनी है
1: हाँ दूध दिनी है
0: किन्ना के दूध हो जाता
1: है ना इस बात हूँ साल साल हुई है कोई चार पांच किलो दूध हो जाता
0: अच्छा
1: तो पहले तो ज्यादा भी हो जाता दस बारह किलो भी हो जाता
0: अच्छा
1: कुछ बेची भी देते थे
0: हाँ
1: कुछ सजने मित्रा भी दे देते थे कुछ यहाँ भी खाई पी लेते थे।
0: हाँ जी
1: हाँ जी हाँ जी
0: अच्छा क्या भाव दुध बिकी जाता ग्राए
1: च तो 40-45 बिच गांव च बिकता इसके उपर तो कोई लेंदा नहीं है।
0: देखा भाई अगर ग्राए च एक आपसी भाईचारा होंगे अगर 45-50 भी बिकी जा पशु पालक भाई प्रवाह नहीं मारता
1: प्रवाह नहीं मारता
0: है ना अगर दूए पास दिखे जाए तो फीड महंगी है खल महंगी हुई
1: बिल्कुल बिल्कुल जी हरेक चीज महंगी है 50 रुपए का घट तो कोई है ही नहीं
0: पशु पालक ये सोचते कि दुध रेट भी जरा बदलना चाहिए
1: बदलना चाहिए बिल्कुल
0: लेकिन अगर ग्राए की गल दिखे जाए तो चलो
1: साझा करना पौधे ना नाराज नहीं कर सकते हम भी लग नहीं हो सकते साड़ा भी गुजारा नहीं चलना तेना बजे साड़ा नहीं चलना
0: गायों क्या खुराक देंगे
1: गाय फीड वगैरह खड़ा खुना
0: अच्छा।
1: बाकी हरे पत्ते घास चारा वगैरह
0: अच्छा कुछ बीजी भी लेंदे होड़े
1: कुछ बीजी भी लेंदे माड़े मोटे
0: अच्छा।
1: बारिश पर डिपेंड है
0: हाँ।
1: बारिश नहीं होगी तो कुछ भी नहीं।
0: अच्छा तो हमारा जड़ा ए इलाका पंद्रहवेड़ा ना ए
1: हाँ जी हाँ जी
0: यानी कि पूरा बरखा पर निर्भर है
1: बिल्कुल बिल्कुल जी
0: कहना उन्हें अगर ये तो दिखे जाए तो ये नीचे जड़ी खड्ड है कौन खड्ड है
1: गज खड पैंदी जी
0: बिल्कुल नजदीक है ना
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: हां लेकिन ऊंचाई पर जड़ा
1: हाइट बहुत ज्यादा खर्चा बहुत ज्यादा पैना पानी ऊपर उठाने वास्ते
0: हां जी
1: क्योंकि यार के गवर्नमेंट को एड दे दे तो समझो बेनिफिट मिल सकता है।
0: अच्छा सिकंदर जी जिंगे तो हां दसया कि तो हां बकरी भी कपाली हो गया कहना तिना तीन बच्चे दसे तो
1: तीन तीन बच्चे
0: अच्छा हर वारी तीन ही बच्चे दिंदी
1: कभी दो दिंदी कभी तीन दिंदी इबे तीन देते।
0: अच्छा एक ही बकरी पाली
1: एक ही बकरी पाली हो
0: अच्छा क्या क्या बच्चे देती हो तीन
1: दो छेलियां देती एक छेलू देते हैं
0: अच्छा
1: हां जी
0: कने खरे ना स्वस्थ सारे
1: स्वस्थ
0: बच्चे अच्छा
1: छाला मारा दे
0: अच्छा तो और नहीं बधाइयां बकरियां तोहां
1: बधाने हुन बधाणियां ना कह पहला छेलूआं देंदे रही
0: अच्छा
1: तो छेलू बेचणे पौंदे हे
0: अच्छा
1: ये पहली बारी काम होया के जेड़ी छेलियां देती है ना
0: अच्छा कितनी सुबह सुई बकरी
1: त्रिया सुया सुई
0: अच्छा पहला छेलू है ना
1: हां पहला छेलू
0: छेलू बेचे तोहां
1: हां छेलू
0: पाली के
1: हां बेचे
0: अच्छा
1: हां जी
0: किन्ने किन्ने दे छेलू बेचे
1: 2-18 ने बेचे 2-18 हजार दे एक बेचे 11 हजार
0: दो ही 18 दे ना
1: हां जी
0: 9-9 हजार दे इको
1: अगला जो बेचे 11 हजार का बेचे
0: अच्छा
1: एक बच्चा मरी गया था
0: अंदाजा लगाई कितने कितने किलो है कोई
1: तो मतलब 11 हजार बेचे 22-23 किलो था
0: अच्छा
1: वो थे 18-19 किलो थे।
0: हाँ अगर देखा हाँ तो जेडे बकरी पालक भाई है ना तेने भी इन्हें 24 घंटे जेड़ा सा एक काम कितने होंदा तेने भी अंदाजा हो जाता कि इतना की वजन जेड़ा सा इदा है या ना
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: कने थोड़ा बहुत हो ही जाता कई बार जिया घट
1: किलो आधा किलो अगे पिछे हो ही जाता।
0: अच्छा सिकंदर जी घर कितने सदस्य हैं तो हाँ
1: तीन सदस्य एक मुंडा है एक मेरी घरवाली है एक मैं
0: अच्छा खेती का काम पाउंदा सब कट्ठे लगदे होणे
1: सारे करना पैंदे जी
0: मजदूर वगैरह लगा लैंदे
1: कई बार मजदूर भी लाना पैंदा
0: अच्छा
1: मेरी जुली कम चलदा ना।
0: हां जी हां जी हां जियां तुहां जिक्र कीता कि जेड़ी तुहां वाल जमीन है
1: हां जी
0: काफी खुली जमीन है ता इससे तो हाँ कुछ पौधे वगैरह भी लगाए फलदार
1: पौधे भी लाए लीची लाई है अमरूद लाया सेब लाया नींबू लाए ना अंब के बूटे भी लगे ना।
0: हाँ जी
1: मतलब के सारे मिली जुली के लगभग खाने गुजारा बूटे लाए ना से।
0: अच्छा जी ये जड़ा इलाका जड़ा पंद्रहवेड़ा है
1: हाँ जी
0: ता ये तो जिया कोई फसल जो कोई नुकसान वगैरह तो नहीं?
1: नुकसान तो है
0: हाँ जी,
1: क्योंकि जंगली सूरा नुकसान है, बंदर नुकसान है।
0: अच्छा,
1: के जेडे आवारे पशु छड़े गए ने वो भी कई बार आई जांदे विच, वो भी साड़ियां फसलां नुकसान पहुंचांदे ने।
0: हाँ जी,
1: वो भी आ के तुहां कोशिश करन के कुथां गवर्नमेंट दूर संचार वाले मैसेज देन तो उन्हें कंट्रोल किया जाए तो लोगों को छुटकारा मिली सके।
0: तो जिया तुहां एक योजना मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, उसके बारे च नहीं तुहां पता किया जी?
1: नहीं, उसके बारे च नहीं किया।
0: तारबंदी वाड़बंदी लगती है
1: ना, उसके बारे च कन्फर्म नहीं किया।
0: हाँ जी,
1: तुहां सांझो दस्या और इसके बारे च छानबीन करके
0: हाँ जी
1: तो फिर सांझा करके तुहाडे प्रोग्राम
0: जी जी। हाँ जी
1: हाँ जी,
0: सिकंदर जी अहां दी जिहड़ी बेरोजगार युवा पीढ़ी है ना, सह दिखा नौकरी पिछे तां तू घूम कर दी, कहने कुछ हद तक नौकरियां नहीं भी मिला कर दी।
2: उस युवा पीढ़ी जो तुहां क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: लंबी सोच है, क्योंकि जिस तरीके ने पब्लिक दा
0: हाँ जी हाँ जी
1: मतलब के पॉपुलेशन बढ़ रही है।
0: हाँ जी,
1: उस लिहाज ने ना तो गवर्नमेंट नौकरी दे सकती ना अह दे सकते।
0: हाँ जी,
1: ते बाकी गल्लां ये रही है कि सारे बच्चे भी उस जिस लाइन ते चले हैं
0: हाँ जी
1: उस ते कुछ खेती बाड़ी कर गए
0: हाँ जी,
1: कहने अपने परिवार जो दस गए तो उन्हें सारा मिली जुल के गुजारा हो जाना।
0: हाँ जी,
1: कहने कोई छोटा मोटा कम कर लेंगे तो उन्हें आने के साधन भी हो जाना। तो ये साडा मैसेज आना है कि कुछ अपने पैरों ते खड़ोवा, कहने मिली जुली चला, कहने अपने पिता पुरखी गल्लां मत छड्डा, कहने उस अगे प्यो वाली संस्था जो बढ़ाओ।
0: जी जी हाँ जी जी, सिकंदर डोगरा जी तो हाँ अपने खेतीबाड़ी दे अनुभव अहां कन्ने सांझा कीते, बड़ी खुशी हुई तो हाँ कन्ने मिली के अपना कीमती समय तो हाँ अहां जो दिता तो हाँ बहुत बहुत
2: धन्यवाद जी। भैन जी अहां सुनिए गलबात, कन्ने दिखा जी अहां जी के पहले भी बोला दे है के जड़ा खेतीबाड़ी है ना ये काटे दा काम नहीं मिल रही है ना जी, जरूरत यही है
3: कि गलांदे पे हर कोई ये चीज गलांदा पर इस चीज जो समझने दी जरूरत
2: हाँ है। बिल्कुल, कने दिखा जी इसके बाद जेड़ा सा अगली जानकारी होंगी हंजल कांगड़ा स्थानीय सब्जी मंडी विच आज सब्जियां कने फलां दे क्या थोक मूल्य भाव रे ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ
3: ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖਾ ਲਸੀਲੂ ਰਾਮ ਜੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਹਿ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੇਚਣਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਹਿ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ।
2: ਬਿਲਕੁਲ,
3: ਤਾਂ ਜੀਆਂ ਆਲੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਰਿਹਾ 12-20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਪਿਆਜ਼ ਦਾ 35-36 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਟਮਾਟਰ ਦਾ 18-35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਲਸਣ ਦਾ 150-170, ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਹੈ 200-210, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦਾ ਰਿਹਾ 55-60, ਅਰਬੀ ਦਾ ਰਿਹਾ 26-28 ਰੁਪਏ, ਖੀਰਾ ਰਿਹਾ 25-50, ਮਟਰ ਰਿਹਾ 85-90, ਕਨੇ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਰਹੀ 30-50, ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਰਹੀ 20-25, ਬੈਂਗਣ ਰਹੇ 20-28, ਕੱਦੂ 15-25, ਮੂਲੀ 20-25, ਟਿੰਡਾ ਰਿਹਾ 55-60, ਪਾਲਕ ਰਿਹਾ 35-40, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਰਹੀ 25-30, ਧਨੀਆ ਰਿਹਾ 180-200, ਤੋਰੀ ਰਹੀ 35-36, ਭਿੰਡੀ 35-40, ਘੀਆ 30-45, ਕੱਟਲ ਰਿਹਾ 25-30, ਫਰਾਸਬੀਨ 50-60, ਗਾਜਰ 28-30, ਮਸ਼ਰੂਮ 140-150, ਗੰਢਿਆਲੀ ਰਹੀ 33-40, ਕਨੇ ਅਗਰ ਫਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੇਬ ਰਿਹਾ 50-200, ਕਨੇ ਕੇਲਾ ਰਿਹਾ 50-60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਜਨ, ਅਨਾਰ ਰਿਹਾ 100-110, ਅਨਾਨਾਸ ਰਿਹਾ 30-40, ਅਮਰੂਦ ਰਿਹਾ 80-90, ਮੌਸਮੀ ਰਹੀ 50-60, ਪਪੀਤਾ ਰਿਹਾ 45-55, ਖਰਬੂਜਾ 35-40, ਕਨੇ ਪਲਮ ਰਿਹਾ 35-50 ਰੁਪਏ, ਕਨੇ ਅੰਬ ਤੋਤਾ ਰਿਹਾ 50-60, ਅੰਬ ਦੁਸ਼ਹਿਰੀ ਰਿਹਾ 40-60, ਨਿੰਬੂ ਰੇ 65-70।
2: ਜੀ ਕਨੇ ਦੇਖਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਥਾਨੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਭਾਵ ਆਏ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅਹਾਂ ਇੱਕ ਸਹਿ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਭਿਣੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ 5-10 ਰੁਪਏ, 2-5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਇਹ
3: ਭਾਵ ਨਾ।
2: ਪਰ ਦੇਖਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇਖਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਵਹਾ ਵੀ 30-40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੈ ਨਾ ਜੀ।
3: ਤਾਂ ਇਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਆਲੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਆਲੂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ।
2: ਗਲਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂਝੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਖੂਬ ਬੜੀ ਚੜੀ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ कन्नै अपनी खेतीबाड़ी करी के अहां ज्यादा ते ज्यादा पैसा भी कमाई सकदे कन्नै अपना भरण पोषण भी जेहड़ा सा कर सकदे। कन्नै इस दे सोगी गल करिए मौसम दी तां मौसम सारियां बखियां जेहड़ा सा अज धुप कन्नै बदल दा मिला जुला रूप देखने मिला लगभग। कन्नै अगर अहां गल करिए तापमान दी तां कांगड़ा अधिकतम 33 डिग्री सैलसियस, न्यूनतम 25 डिग्री सैलसियस, मंडी 31 डिग्री सैलसियस कन्नै 23 डिग्री सैलसियस, चंबा 26 डिग्री सैलसियस कन्नै 19 डिग्री

0: कने ऊना अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस कने न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा, है ना
1: जी ये
0: जी।
1: भी दसी दिया जी धुप कने बदला ना
0: हाँ,
1: क्या।
0: 2-3 दिन जड़ा सा धुप बदल कने हल्की वर्खा मिला जुला रूप सारिया जगह जड़ा सा दिखने को मिलना,
1: जी
0: कने इस दे सोगी फिरी ते चलना एक लोक जनकार की तरफ सुनना है प्यारा जिहा लोक गीत।
1: जी

0: जी तां इसी लोकगीत कन्नै कार्यक्रम इत्थे खत्म होआ करदा। दस्सी देईए कार्यक्रम विच तकनीकी सहयोग विकास पठानिया, प्रस्तुत करता
1: डॉक्टर
0: डॉक्टर जतिंद्र
1: पाल
0: सिंह, कन्नै हुण सांझो दुनी जो दिया इजाजत। अच्छा जी, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 7:45 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश के 8 अस्पतालों में लगेंगी 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीनें। प्रदेश में जनगणना के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण व मकानों की गणना का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न। लोगों ने अभियान में निभाई सक्रिय भागीदारी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने केवाईसी के कारण रुकी वृद्धावस्था व सहारा पेंशन के मामलों की जांच कर तुरंत पेंशन बहाल करने की सरकार से की मांग। कांगड़ा जिला के 131 पौंग विस्थापितों को 5 दशकों बाद मिला जमीन का मालिकाना हक। और नशा तस्करों के खिलाफ शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इस साल अब तक 24 आरोपियों की 4 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार जिला अस्पतालों व सभी 7 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ कर रही है। आज शिमला में स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर, कुल्लू, ऊना, धर्मशाला, पालमपुर व सोलन और जिला अस्पताल किन्नौर, डॉक्टर वाई एस परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल नाहन में 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीनें स्थापित की जाएंगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जिला अस्पताल नाहन व हमीरपुर, क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर, सोलन और धर्मशाला में डिजिटल मेमोग्राफी मशीनें भी लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि 42 हैंडहेल्ड एक्सरे मशीनों की खरीद प्रक्रिया जारी है, जिनमें से 14 मशीनें प्राप्त हो चुकी हैं। इन मशीनों का उपयोग राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में लोगों की जांच के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने एम्स नई दिल्ली के मानकों के अनुसार सभी चिकित्सा उपकरणों की खरीद सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश में जनगणना के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण व मकानों की गणना का कार्य 15 जुलाई को सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। 16 जून से शुरू हुए इस अभियान में डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर अभूतपूर्व सटीकता और गति से डेटा संकलन किया गया। इस चरण की सबसे बड़ी उपलब्धि स्वगणना विकल्प की सफलता रही, जिसमें प्रदेश के जागरूक नागरिकों ने डिजिटल सुविधा का लाभ उठाते हुए स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर राष्ट्रीय जनगणना अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई। जनगणना निदेशालय ने इस महाअभियान की सफलता का श्रेय प्रशासनिक तंत्र और फील्ड स्टाफ को दिया है। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण पहाड़ी रास्तों के बावजूद प्रगणकों और पर्यवेक्षकों ने पूरी निष्ठा से घर घर जाकर डेटा एकत्र किया। हिमाचल प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के 30 प्रशिक्षुओं ने अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर विजिट के तहत आज कजाकिस्तान के अलमाटी में आधुनिक उद्योगों व स्थानीय बाजार व्यवस्था की कार्यप्रणाली की जानकारी हासिल की। इस दौरान अलमाटी मैनेजमेंट विश्वविद्यालय में शैक्षणिक संवाद सत्र का आयोजन किया गया। इस दल के साथ दौरे पर गए तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने संवाद सत्र के दौरान कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य इन प्रशिक्षुओं को वैश्विक औद्योगिक प्रणालियों, आधुनिक तकनीकों और अंतर्राष्ट्रीय कार्य संस्कृति से परिचित करवाना है। उन्होंने कहा कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर कार्यक्रम प्रशिक्षुओं में तकनीकी दक्षता, नवाचार और व्यावसायिक उत्तरदायित्व व नेतृत्व क्षमता का विकास करते हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में केवाईसी के कारण रुकी वृद्धावस्था पेंशन और सहारा योजना से जुड़े लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने की सरकार से मांग की है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में केवाईसी प्रक्रिया में हुई त्रुटियों व प्रशासनिक लापरवाही के कारण बड़ी संख्या में बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन से वंचित हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सहारा योजना के कई वास्तविक लाभार्थियों को रिकॉर्ड में मृत दर्शाकर उनकी पेंशन रोक दी गई है, जो उनके साथ अन्याय है। जयराम ठाकुर ने ऐसे सभी मामलों की जिला स्तर पर निष्पक्ष जांच और पुनः सत्यापन करवाकर लाभार्थियों को तत्काल प्रभाव से पेंशन बहाल करने और रोकी गई बकाया राशि भी प्रदान करने की सरकार से मांग की है। उन्होंने इसके लिए विशेष अभियान चलाने की सलाह देते हुए कहा कि पेंशन रोकने की निष्पक्ष जांच करवाकर जवाबदेही तय की जानी चाहिए।
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की चनावग पंचायत में 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली पटियार घाटरू बैटी नाला वाया सीतरी जायन और जुट खुरान संपर्क सड़कों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने राजकीय प्राथमिक पाठशाला जुड के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी किया। इससे पहले विक्रमादित्य सिंह ने हरसिंह धार मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिन 2 संपर्क सड़कों का आज शिलान्यास किया गया है उनका निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाएगा। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने कांगड़ा जिला के 131 पौंग विस्थापित परिवारों को जमीन का मालिकाना हक देकर 5 दशक पुरानी समस्या का समाधान किया है। झकलेड़, खेरियां, छप्पर, भटोली, फकोरियां और भंगोली के पात्र परिवारों को भूमि के पट्टे मिलने से अब उन्हें स्थायी निवासी प्रमाण पत्र सहित अन्य राजस्व दस्तावेज बनवाने में आसानी होगी। विस्थापित परिवारों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताते हुए कहा कि वर्षों से मालिकाना हक नहीं मिलने के कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था और अब भूमि का अधिकार मिलने से उनका भविष्य सुरक्षित हुआ है। सरकार ने पहले चरण में हरिपुर के निवासी और दूसरे चरण में भटोली फकोरियां के 42 परिवारों को भूमि के पट्टे दिए हैं। साथ ही प्रत्येक पात्र परिवार को पक्का मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2,28,00,000 रुपए की अवैध चल व अचल संपत्ति जब्त की है। शिमला पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई कोटखाई व बालूगंज थाने में NDPS एक्ट के तहत दर्ज मामलों पर की गई है। ASP शिमला मेहर पवन ने बताया कि वर्ष 2026 में अब तक 6 मामलों में

0: 24 आरोपियों से 4 करोड़ 11 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़ा इस साल प्रदेश में केवल शिमला जिला पुलिस द्वारा की गई सबसे बड़ी फाइनेंशियल कार्रवाई है।
1: नशा तस्करी के खिलाफ जिला शिमला पुलिस द्वारा एक ऑलराउंड अभियान छेड़ा गया है। वर्ष 2026 में जिला पुलिस शिमला द्वारा फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर अब तक कुल 4 करोड़ 11 लाख की संपत्ति 6 केसों में 24 आरोपियों की जब्त की जा चुकी है, जो इस वर्ष हिमाचल प्रदेश के किसी भी जिला पुलिस के द्वारा किए गए फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में सबसे अधिक है। जिला शिमला पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध केवल गिरफ्तारी ही नहीं की जाएगी, बल्कि अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों की पहचान कर उन्हें भी विधि अनुसार जब्त किया जाएगा।
0: भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता व पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा है कि वर्तमान में प्रदेश को भविष्यवाणी नहीं बल्कि डीए और रोजगार चाहिए। आज हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की केवल 16 सीटें आने का दावा करने वाली मुख्यमंत्री की भविष्यवाणी पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें इतना ही भरोसा है तो तुरंत विधानसभा भंग कर चुनाव करवा लेने चाहिए। राजेंद्र राणा ने कहा कि पंचायत चुनावों प्रदेश भर में कांग्रेस को लोगों का जवाब मिल गया है, जिसमें मुख्यमंत्री के गृह जिला में जिला परिषद की 19 सीटों में से कांग्रेस को केवल एक सीट मिली है। सोलन जिला के खील जशली और आसपास के कुछ गांवों में अवैध निर्माण, हिल कटिंग और बेनामी जमीनों के सौदों के खिलाफ उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। एक गैर सरकारी संस्था द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने वन विभाग को एक सप्ताह के भीतर जांच कर स्थिति की रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता प्रिया सकलानी ने कोर्ट में बताया कि इन क्षेत्रों में धारा 118 का उल्लंघन कर हिमाचल की जमीनें बेची गई हैं। उन्होंने कहा कि बाहरी बिल्डरों ने नियमों को ताक पर रखकर यहां बहुमंजिला इमारतें बना दी हैं, जिससे स्थानीय लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है।
2: जो चीजें सामने आई और जो हमने एक्सप्लोर करी और बहुत उसमें मेहनत करके पता लगाया कि एक्चुअली ये क्या है, यहाँ प्रशासन ने इस गांव को आसपास की जगहों पे आंखें क्यों बंद की हुई हैं? पंचायत ने 5 साल वहां पे कदम नहीं रखे। जो काम करती थी एनजीओ करती थी, जितनी भी बिल्डिंगें बनी हैं वो सारी बेनामी सौदे हैं। जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है उस कंस्ट्रक्शन में इतनी धांधली है, कोई स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट नहीं, कोई सॉयल सर्टिफिकेट नहीं, कोई टीसीपी परमिशन नहीं। 3-3 बिस्वे के लैंड है और उसपे 9-9 मंजिले बिल्डिंग बनी हुई है, जिसमें हमें पता चला ये सारे ही 118 की वायलेशन बेनामी सौदे और नोटराइज डीड्स पे बिके हुए हैं।
0: बरसात के मौसम को देखते हुए कुल्लू जिला में 15 जुलाई से 15 सितंबर तक साहसिक गतिविधियों पर रोक लग गई है। प्रशासन द्वारा घाटी में बरसात के चलते और सैलानियों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला हर साल लिया जाता है। अब 2 महीने तक रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी साहसिक गतिविधियां नहीं हो सकेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश के 8 अस्पतालों में लगेंगी 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीनें। प्रदेश में जनगणना के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण व मकानों की गणना का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न। लोगों ने अभियान में निभाई सक्रिय भागीदारी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने केवाईसी के कारण रुकी वृद्धावस्था व सहारा पेंशन के मामलों की जांच कर तुरंत पेंशन बहाल करने की सरकार से की मांग। कांगड़ा जिला के 131 पोंग विस्थापितों को 5 दशकों बाद मिला जमीन का मालिकाना हक। और नशा तस्करों के खिलाफ शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इस साल अब तक 24 आरोपियों की 4 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
4: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
3: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
4: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
4: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर व धर्मशाला केंद्रों के साथ ही FM बैंड 103.7 MHz, मोबाइल ऐप और रेडियो की DTH सेवा पर भी सुना गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। मीडिया वेव

0: एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। रोजगार समाचार सुनिए। बाल विकास परियोजना बसंतपुर सुनी जिला शिमला के अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों को भरने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्रता एवं शर्तें इस प्रकार से है। उक्त पदों हेतु केवल महिला उम्मीदवार ही पात्र है। अभ्यर्थी संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के फीडर एरिया की निवासी हो व उसका परिवार संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के परिवार सर्वेक्षण रजिस्टर में दर्ज परिवारों की सूची में शामिल हो तथा परिवार में उसका नाम भी दर्ज हो। प्रार्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की आयु आवेदन की अंतिम तिथि के दिन 18 से 35 वर्ष से अधिक न हो। अभ्यर्थी के परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और आय प्रमाण पत्र तहसीलदार, नायब तहसीलदार अथवा कार्यकारी दंडाधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। यदि कार्यरत आंगनवाड़ी सहायिका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद हेतु आवेदन करती है तो उसके परिवार की वार्षिक आय में गणना में उसे सहायिका के रूप में मिलने वाली मानदेय की गणना से छूट मिलेगी। आवेदक सादे कागज पर सभी प्रमाण पत्रों सहित दिनांक 4/8/2026 तक बाल विकास परियोजना अधिकारी बसंतपुर स्थित सूनी कार्यालय में अपना आवेदन जमा करा सकती है। इन पदों के लिए दिनांक 13/8/2026 को बाल विकास परियोजना सुन्नी के कार्यालय में सुबह 11 बजे उपमंडलाधिकारी की अध्यक्षता में साक्षात्कार लिए जाएंगे। रोजगार समाचार समाप्त हुए।
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं और समय है ये विविध संगीत के कार्यक्रम सबरस का। तो सबरस कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजों में हम आपको सुनवा रहे हैं ये गजल, यूं ही राहों में न खोया करो कभी अपनों से भी मिला करो। यूं ही राहों में न खोया करो कभी अपनों से भी मिला करो। दुनिया की भीड़ बहुत देख ली कभी घर का सुकून जिया करो। यूं ही बेसबब ना फिरा करो किसी शाम घर भी रहा करो।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। अब हम आपको सुनवा रहे हैं पंकज उदास की आवाज में ये गजल।

विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। आइए अब सुनते हैं गुरदास मान की आवाज में ये पंजाबी लोकगीत।

थोड़ा थोड़ा थोड़ा। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, 8:15 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से भगवान जगन्नाथ यात्रा रथ यात्रा पर आधारित रेडियो रिपोर्ट रिले की जाएगी।

0: नचना जरूर।
1: जय जगन्नाथ। आज यहाँ उपस्थित सभी भक्तजनों के कंठ में यह एक ही ध्वनि है, जय जगन्नाथ। प्राचीन उत्कल प्रदेश जो वर्तमान में ओडिशा के नाम से जाना जाता है, उसका एक स्वतंत्र परिचय है, वह है प्रभु जगन्नाथ। विश्व भर में यह प्रदेश जगन्नाथ जी की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि ओडिशा के समुद्री तट स्थित पुरी शहर में विराजते हैं भगवान जगन्नाथ अपने अग्रज भगवान बलभद्र तथा बहन देवी सुभद्रा जी के साथ। कहा जाता है कि यह उनका मानवीय लीला क्षेत्र है, अर्थात प्रभु यहाँ वह सब कुछ करते हैं जो एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में करता है। प्रभु के सारे विधि विधान मानवीय दिनचर्या के समान है। सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार सभी विधियां संपन्न की जाती हैं। उसी परंपरा का एक अंश है भगवान जगन्नाथ जी की वार्षिक रथ यात्रा। शास्त्रानुसार रानी गुंडीचा को दिए गए वचन को निभाने के लिए भगवान वर्ष में एक बार गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। वहीं एक मान्यता और भी है कि मंदिर में प्रवेश न कर पाने वाले अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाने के लिए भगवान अपने मूल स्वरूप में ही मंदिर से बाहर आ जाते हैं। शास्त्र पुराणों में किए गए वर्णन के अनुसार भगवान की

इस रथ यात्रा का विशेष महत्व है। कहा गया है कि रथारूढ़ भगवान के दर्शन से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि रथ यात्रा के दौरान प्रभु के दर्शन करने हेतु विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु भक्तजन पूरी आ पहुंचते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन भगवान की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है।

रथ यात्रा का आयोजन भले ही आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन होता हो, परंतु इस महोत्सव की तैयारियां बहुत पहले ही शुरू हो जाती हैं। भगवान की यात्रा के लिए हर वर्ष 3 रथ नए सिरे से बनाए जाते हैं। इसके लिए काष्ठ संग्रह का कार्य वसंत पंचमी के पावन दिन से शुरू होता है। रथ निर्माण का कार्य भगवान के विशेष सेवक वंशानुक्रमिक रूप से करते हैं। रथ निर्माण एक चरणबद्ध कार्यक्रम है। रामनवमी से लकड़ियों को चीरने का कार्य शुरू होता है। अक्षय तृतीया के पवित्र दिन से प्रारंभ होता है रथ निर्माण का कार्य। फिर नियमित समय व्यवधान से रथों के पहियों तथा अन्य हिस्सों को प्रस्तुत किया जाता है। रथों के निर्माण में विश्वकर्मा, लोहार, दर्जी, चित्रकार आदि सेवकों की बड़ी भूमिका होती है। उधर अक्षय तृतीया से आरंभ होती है चंदन यात्रा। इस दौरान विग्रहों को नरेंद्र सरोवर में नौका विहार कराया जाता है। स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान के विग्रहों को रत्न वेदी से स्नान मंडप लाया जाता है। स्नान के पश्चात प्रभु को गज वेश में सजाया जाता है। अत्यधिक स्नान से प्रभु ज्वर से पीड़ित होते हैं, तब 15 दिनों के लिए उन्हें एकांतवास में रखकर उनका उपचार किया जाता है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पूर्व दिवस अर्थात प्रतिपदा के दिन भगवान नव यौवन वेश में भक्तों को दर्शन देते हैं। रथ यात्रा का मुख्य महोत्सव पुरी में आयोजित होता है, जिसमें भगवान मुख्य मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। वहां 1 सप्ताह के अवस्थान के पश्चात पुनः रथारूढ़ होकर वापस मुख्य मंदिर में लाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में बाहुड़ा यात्रा कहा जाता है। आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन दिवस के अवसर पर पुरी में इस महोत्सव का आयोजन किया गया। मौसम विभाग द्वारा पुरी तथा आसपास के कई जिलों में मध्यम से भारी वर्षा के पूर्वानुमान की परवाह किए बिना लाखों की संख्या में भक्तजन पुरी पहुंचे थे। मन में जहां दृढ़ भक्तिभाव होता है, वहां मनुष्य हर विघ्न को पार कर जाता है। इसी बात का प्रत्यक्ष प्रमाण था यहां उमड़ा भारी जनसमूह। श्री मंदिर के नाम से जाने जाने वाले मुख्य मंदिर को फूलों से सजाया गया था। मंदिर के सिंह द्वार के सामने तैयार खड़े थे 3 सुसज्जित रथ। लाल और हरे रंग का भगवान बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज, बीच में लाल और काले रंग के वस्त्रों से सज्जित देवी सुभद्रा जी का रथ देवदलन, और द्वार के समीप था लाल और पीले रंगों के वस्त्रों से सज्जित भगवान जगन्नाथ जी का रथ नंदीघोष। मार्ग पर आकी गई रंगोलियां सभी का मन मोह रही थी। आसमान में छाए बादल बीच बीच में बरस पड़ते थे, परंतु यह बारिश भक्तों के उत्साह में किसी प्रकार की कमी ना ला सकी। बारिश होने के समय भक्तों के द्वारा उपयोग में लाए गए रंगीन छाते एक अद्भुत दृश्य प्रदान कर रहे थे। कोई भजन कर रहा था तो कोई कीर्तन, तो कोई अपनी नृत्य कला अथवा रण कौशल का प्रदर्शन कर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था।

0: भूमि को स्पर्श कराए कंधों पर उठाकर मंदिर के रत्न सिंहासन से रथों तक लाते हैं, वहीं भगवान बलभद्र तथा जगन्नाथ जी को एक एक कदम बढ़ाते हुए लाया जाता है। क्रमानुसार सुदर्शन जी, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा तथा जगन्नाथ जी की पहुंडी विधि संपन्न हुई। भगवान के आयुध सुदर्शन जी को देवी सुभद्रा जी के रथ पर स्थापित किया गया। टाहिया कहे जाने वाले फूलों से सजे विशाल मुकुट से सज्जित भगवान की शोभा अवर्णनीय थी। भगवान की इस आकर्षक विधि का दर्शन करने के लिए आए भक्तों से मुख्य मार्ग मानो पूर्ण रूप से भरा हुआ था। भगवान के रथारूढ़ होने के साथ साथ यात्रा के लिए उनकी आवश्यक सामग्रियों को भी रथों पर रखा गया। प्रभु के रथारूढ़ होने के पश्चात परंपरा के अनुसार पूरी गोवर्धन मठ के शंकराचार्य ने अपने शिष्यों के साथ आकर भगवान के दर्शन किए। अगला अनुष्ठान था छेरा पहरा। परंपरा के अनुसार इस विधि में भगवान के प्रथम सेवक कहे जाने वाले पुरी के गजपति महाराज स्वयं अपने महल से एक पालकी पर सवार होकर आते हैं और अपने हाथ में सुवर्ण मार्जनी लेकर रथों की सफाई का कार्य करते हैं। यह विधि इस बात को दर्शाती है कि भगवान के आगे राजा और रंक में कोई भेद नहीं है। भगवान के आगे सभी समान हैं। सफेद राजसी पोशाक में गजपति महाराज लाल रंग की पालकी पर सवार होकर महल से रथों तक पधारे। फिर बारी बारी से एक एक रथों पर महाराजा ने सेवकों द्वारा डाले गए फूलों की प्रतीकात्मक रूप से सफाई की। छेरा पहरा विधि को संपन्न कर महाराज ने भगवान की आरती की और महल की ओर प्रस्थान किया। अब बारी थी रथों पर चढ़ने के लिए लगाई गई सीढ़ियों को खोलने की। सीढ़ियों को खोलने के पश्चात रथों से सारथी, अश्वों तथा रज्जुओं को संयुक्त किया गया। अब वह क्षण आ पहुंचा था जिसका हर भक्त को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। रथों को खींचने का समय हो गया था। बड़े ही उत्साह के साथ भक्तजन पहले बलभद्र जी, फिर देवी सुभद्रा और अंत में भगवान जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं। सूर्यास्त तक रथों को खींचा जाता है। गुंडीचा मंदिर तक न पहुंचने की स्थिति में रथों को अगले दिन सूर्योदय के पश्चात फिर से खींचा जाता है। इतने विशाल आयोजन में कानून व्यवस्था बनाए रखने, सभी आवश्यक सेवाओं को सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, स्थानीय इकाइयों तथा स्वयं सेवकों की भूमिका सराहनीय रही। पूरी न आ पाने वाले श्रद्धालुओं को रथ यात्रा का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान कराने के लिए आकाशवाणी ने क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी में आंखों देखा हाल सुनाने का प्रबंध किया था।
1: ये तीनों रथ पूरी तरह से बरसात में भीगे हैं। लाखों श्रद्धालु, बरसात लगातार जारी है फिर भी उन्हें इसकी परवाह नहीं है। उनके आगे उनके आराध्य देव जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ विराजमान हैं। वो स्वयं भीग कर रत्न सिंहासन छोड़कर जब रथ रूपी मंदिर में काष्ठ सिंहासन पर विराजमान होने के लिए आए हैं और भक्तों को अपना दर्शन देने के लिए आए हैं, तो उनके आगे सामान्य भक्त की भला क्या औकात है। तो सारे भक्त सब कुछ भुलाकर अपने आराध्य देव को अपने सम्मुख पाकर वो धन्य हुए हैं। काफी संख्या में यहाँ भक्त मौजूद हैं। इस बीच हमारे सामने, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अहमदाबाद से आई मूल अमृतसर की निवासी अंजलि जी। वो रथ यात्रा दर्शन के लिए आई हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो अंजलि जी, स्वागत है आपका जगन्नाथपुरी में। आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है?
2: ये खूबसूरत नज़ारा आज तक मैंने कभी देखा नहीं था। इतना बड़ा त्योहार की तरह इसको मनाया जाना मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये देख पाऊंगी। जो इन पलों का मैं अनुभव कर रही हूँ वो मैं बता नहीं सकती शब्दों में कि इतना प्यारा अनुभव, इतना सुंदर अनुभव कैसे मुझे मिला मुझे नहीं पता। लेकिन इस समय जो मैं अनुभव महसूस कर रही हूँ वो मेरे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हर भक्त अपने अपनी जगह से जुड़ा हुआ है और अपनी अपनी भक्ति में इतना लीन है कि उसको अपनी ना बारिश की परवाह है ना

0: परवाह है, ना किसी भी चीज की परवाह है, और वो वहीं पे खड़ा हुआ है भगवान के दर्शनों के लिए। इतना इतना इतना उत्सुक है कि मेरे पास शब्द नहीं है। हर इतने लाखों लोगों में सब में इतना प्यार भावना भगवान के प्रति जो मैंने देखे, मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं है।
1: धन्यवाद अंजलि जी।
2: यह रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक भगवान बलभद्र जी का रथ खींचा जा चुका था और देवी सुभद्रा जी के रथ को खींचने की तैयारियां चल रही थी। अभी आप सुन रहे थे आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में आयोजित हुई रथ यात्रा पर समेकित रेडियो रिपोर्ट। आलेख एवं वाचन स्वर प्रकाश चंद्र दवे, प्रस्तुति सहयोग अक्षय कुमार सेठी, प्रस्तुतकर्ता थे विनय कुमार सामंतराय। आकाशवाणी के कटक केंद्र के सौजन्य से प्राप्त यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 8:30 होने को हैं, आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और साथियों की आवाज़ों में वीर जारा फिल्म से लिया गया ये देशभक्ति गीत आप सुन रहे थे। फना फिल्म से लिया गया ये देशभक्ति गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं महालक्ष्मी।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 8:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू। हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। अमरीका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
2: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण

0: वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं आईसीएआर कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। यह ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र शासित प्रदेश दमन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब लंबी सड़क या रेल यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार जल्द ही नमो एयरपोर्ट से देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने की योजना पहले से ही चल रही है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज कहा कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के अगले चरण का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और 4 करोड़ लोगों को विमान यात्रा में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में कार्यशाला में श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय कर रही है।
5: एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको हमें डायनेमिक फेयर प्राइसिंग के तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो एयरलाइंस को वो डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा हमें देनी चाहिए, जो भारत में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कई जगहों पे अगर ऐसा लगता है कि फेयर हद से ज्यादा हो रहे हैं तो हमने ये पाबंदी लगाया कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के एक वर्षीय प्लैटिनम जयंती समारोह में ये बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुकेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दिया था और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देश भर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
6: ये मामला उत्तर प्रदेश ATS द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमीयतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रुपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जांच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे।
0: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और फेरा पहरा की पवित्र रथ में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खींचने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खींचने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया है। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्सव के बाकी दिनों के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
3: इस बीच गुजरात, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवीं या छठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
7: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। वहीं अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 रुपए पर बंद हुआ।
3: अमरीका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं। अंडर 23

0: वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने स्वर्ण और वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। अंडर 19 में आदित्य और शुभम राजपूत ने रजत पदक हासिल किए। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 8 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तथा 22 जुलाई तक राजस्थान में भी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 21 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में और अगले 2 दिनों तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में न जाने की सलाह दी है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हुई। हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. India achieves major milestone bringing over 1 billion citizens under social protection framework. Prime Minister Narendra Modi to flag off country's first hydrogen-powered train from Jind Railway Station in Haryana tomorrow. Direct commercial flight begins between Daman and New Delhi, marking new era of air connectivity. World-renowned Rath Yatra of Lord Jagannath in Odisha's Puri draws lakhs of devotees. U.S. expands strikes into northern Iran, disables ship trying to break naval blockade, Tehran retaliates. 2 Indian men boxers clinch gold while 3 bag silver at Asian Under 19 and Under 23 championships in Jakarta. And in men's cricket, second ODI between India and host England underway in Cardiff. And now the news in detail. India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandaviya said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare, and food assistance to millions. These initiatives have played a crucial role in improving livelihoods and reducing poverty across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station tomorrow during his visit to Haryana. Designed, engineered, and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With the introduction of this train, India joins the select group of countries that have operational hydrogen-powered trains. These include Germany, Japan, China, and the US. The train has been designed to run at a speed of 110 km per hour, but on this section it will operate at a maximum speed of 75 km per hour. More from our correspondent.
2: India's hydrogen train features a 10-coach configuration, making it among the longest hydrogen-powered passenger trains developed so far. It is powered by 3,200 horsepower propulsion system, making it one of the most powerful hydrogen-powered train sets in operation. The

श्रोताओं, एक ही शीर्षक के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं कलाकार अभिनेता संजीव कुमार पर फिल्माए कुछ चुनिंदा गीत। महान अभिनेता संजीव कुमार, जिनका बचपन का नाम यानी मूल नाम हरि भाई जरीवाला था, उनका जन्म 9 जुलाई 1938 को सूरत में हुआ था।

फिल्मों में बतौर अभिनेता काम करने का सपना देखने वाले हरि भाई भारतीय फिल्म उद्योग में आकर संजीव कुमार हो गए। अपने जीवन के शुरुआती दौर में पहले वे रंगमंच से जुड़े, परंतु बाद में उन्होंने फिल्म वाले की एक्टिंग स्कूल में दाखिला ले लिया। इसी दौरान 1960 में उन्हें फिल्माले बैनर की फिल्म हम हिंदुस्तानी में एक छोटी सी भूमिका निभाने का मौका मिल गया।

आप सुन रहे हैं अभिनेता संजीव कुमार पर फिल्माए कुछ चुनिंदा गीत। संजीव कुमार ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1960 में हम हिंदुस्तानी फिल्म से की थी। उन्होंने मात्र 2 मिनट की छोटी सी भूमिका उसमें की थी। 1962 में राजश्री प्रोडक्शन की आरती के लिए उन्होंने स्क्रीन टेस्ट दिया था, जिसमें वे पास नहीं हो पाए थे। 1968 में प्रदर्शित फिल्म शिकार में वे पुलिस ऑफिसर की भूमिका में दिखाई दिए थे। ये फिल्म पूरी तरह अभिनेता धर्मेंद्र पर केंद्रित थी, फिर भी संजीव कुमार धर्मेंद्र जैसे अभिनेता की उपस्थिति में भी अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे थे। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला था। फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार अर्जुन पंडित के लिए उन्हें 1977 में मिला था और 1976 में फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार उन्हें आंधी फिल्म के लिए मिला था। तो आइए सुनते हैं इसी फिल्म का ये गीत।

अनामिका फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में, जो कि अभिनेता संजीव कुमार पर फिल्माया गया था। अब हम आपको सुनवा रहे हैं आंधी फिल्म का ये गीत। आपको बता दें कि इस गीत में संजीव कुमार ने इस गीत को अपनी आवाज़ भी दी थी।

संजीव कुमार आजीवन कुंवारे रहे और मात्र 47 वर्ष की आयु में सन 1985 में हृदय गति रुक जाने से उनकी मृत्यु हो गई थी। 1960 से 1984 तक पूरे 25 साल तक वे लगातार फिल्मों में सक्रिय रहे थे। उन्हें उनके शिष्ट व्यवहार व विशिष्ट अभिनय शैली के लिए फिल्म जगत में हमेशा याद किया जाएगा।

अभी आप सुन रहे थे अभिनेता संजीव कुमार पर फिल्म आए कुछ चुनिंदा गीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्मी और गैर फिल्मी गजलें।

मुझे इस कदर शौक था तुझसे मिलने का, मुझे इस कदर शौक था तुझसे मिलने का, तेरा लहजा देखकर मैंने अपनी तमन्ना ही छोड़ दी।

गमन फिल्म से ली गई ये गज़ल अभी आप सुन रहे थे सुरेश बाड़ेकर की आवाज़ में। अगली गज़ल हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम अली की आवाज़ में। जहन में जहर भर के लफ्ज मीठे इस्तेमाल करते हैं, जहन में जहर भर के लफ्ज मीठे इस्तेमाल करते हैं, बन के राजदार कुछ लोग यहाँ जज्बातों का कारोबार करते हैं।

फिल्मी और गैर फिल्मी गजलों का ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे, रंगे गजल। और आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 10 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं हिमाचली गीत व लोकगीत। इंद्रजीत की आवाज़ में हम सुनवा रहे हैं आपको ये पहला लोक।

शेर सिंह की आवाज़ में ये लोकगीत आप सुन रहे थे। आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं हिमाचली गीत और लोकगीत।

0: हिमाचली गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं करनैल राणा की आवाज में ये लोकगीत।
1: तेरा लौंग पाई के मेरा नक दुखदा, मिंजो नथ कढ़ाई दे जिंद जान सोनिया।

प्रदीप परदेसी की आवाज़ में गाए इस लोकगीत के साथ ही हमारा आज का हिमाचली लोकगीतों का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम है चित्रपट संगीत।

पतिता फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज़ों में। आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से समय आप सुन रहे हैं, पुरानी फिल्मों से गीत कार्यक्रम है चित्रपट संगीत। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ नर्मदा शर्मा। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पारस मणि का ये गीत।

मिलके बिछड़ना दस्तूर है ज़िंदगी का, मिलके बिछड़ना दस्तूर है ज़िंदगी का, यही एक किस्सा मशहूर है ज़िंदगी का, बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है ज़िंदगी का।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे बड़े दिल वाला फिल्म का ये गीत। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़।

श्रोता जॉन एलिया साहब का एक शेर है, क्या खूबसूरत लिखा है, कहा है कि अधूरे चांद से फरियाद तो करता होगा, अधूरे चांद से फरियाद तो करता होगा, वो मुझको ज़्यादा नहीं मगर थोड़ा तो याद करता होगा, और दिन में मशरूफ सही लेकिन, दिन में मशरूफ सही लेकिन, फुर्सत के कुछ लम्हे मेरी याद में बर्बाद तो करता होगा।

सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं, और सुना है कि दिन को उसे तितलियां सताती हैं, रात को जुगनू ठहर के देखते हैं।

0: श्रोता लता मंगेशकर की आवाज में गाए रजिया सुल्तान फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। नर्मदा को अनुमति दीजिए। नमस्कार। रात्रि के 11 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। समाचार के साथ मैं वैष्णवी।
1: भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। NTA के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से संपर्क किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हुई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजारप्पू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। ये ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की और फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक संदेश में श्री मोदी ने कहा कि कतर के फादर अमीर की स्थायी विरासत दोनों देशों को अपनी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सके। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने को लिए डटे हुए थे।
2: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी डीजे और फेरा पहरा की पवित्र रथ में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खींचने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खींचने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
1: देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandaviya said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare, and food assistance to millions. These initiatives have played a crucial role in improving livelihoods and reducing poverty across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station tomorrow during his visit to Haryana. Designed, engineered, and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With the introduction of this train, India joins the select group of countries that have operational hydrogen-powered trains. These include Germany, Japan, China, and the United States. The train has been designed to run at a speed of 110 km per hour, but on this section, it will operate at a maximum speed of 75 km per hour. More from our correspondent.
4: India's hydrogen train features a 10 coach configuration, making it among the longest hydrogen-powered passenger trains developed so far. It is powered by 3,200 horsepower propulsion system, making it one of the most powerful hydrogen-powered train sets in operation. The train is powered by hydrogen fuel cell technology, which converts hydrogen into electricity to propel the train. The process produces only water vapor as a byproduct, resulting in zero carbon emissions during operation, supporting India's transition to sustainable transport. The train is equipped with multi-layer safety systems capable of detecting hydrogen leaks, heat, flames, and smoke. Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
3: Mr. Modi will also launch various development projects worth around 14,700 crore rupees in Jind. He will then travel to Chandigarh, where he will unveil several development projects worth over 6,600 crore rupees. The Prime Minister will thereafter visit Jalandhar in Punjab, where he will launch multiple development projects worth over 5,470 crore rupees. Prime Minister Narendra Modi today held a conversation with the Amir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, and conveyed his condolences on the passing of Father Amir, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. In a social media post, Mr. Modi said that the Father Amir of Qatar's enduring legacy will continue to guide the two countries as they further strengthen their strategic partnership. He also recalled Father Amir's deep affection for India, his warmth towards the Indian community in Qatar, and his steadfast commitment to India-Qatar relations. The National Testing Agency, NTA, has declared results of NEET UG 2026 re-exam. Over 11 lakh candidates have qualified for admission to undergraduate medical, dental, Ayush, and allied programs. Scorecards of all candidates are available on the official website neet.nta.nic.in. NTA said that the result has been declared in time so that the medical admission and counselling calendar for candidates stays on track. A total of close to 20 lakh candidates appeared for re-exam this year at 5,440 centres in 551 cities in India and 14 cities abroad. The grand annual Rath Yatra of Lord Jagannath is drawing lakhs of devotees across the country. While the epicenter of the festival is the holy city of Puri in Odisha, the chariot festival is celebrated with